एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 34 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना।

0: चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपेनिए के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वक्त तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल, लता मंगेशकर, लक्ष्मी शंकर, मोहम्मद रफी और साथियों को। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: इस्लाम क्या है, किसी ने हजरत मोहम्मद साहब से पूछा। उन्होंने कहा, संयम और

0: पालन। और तब उसने पूछा कि मनुष्य में सर्वोत्कृष्ट क्या है। उन्होंने कहा भेजा है
1: पैगंबर ने कहा।
0: किसी ने पूछा इस्लाम की आज्ञा क्या है। ये कि तू कहे कि मैंने सर्वोच्च अल्लाह की दास्ता स्वीकार की है और मैं उसका ही हूँ। यह कि तू नमाज यानी प्रार्थना कायम कर और ज़कात दान दे। ए अल्लाह के रसूल, मुझे इस्लाम के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो मेरे लिए काफ़ी हो और मुझे तुम्हारे बाद किसी से इसके बारे में पूछना न पड़े। रसूल ने कहा तू कह कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और फिर उस पर कायम रहे। एक आदमी ने पूछा ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम का सर्वोत्कृष्ट अंग कौन सा है। उन्होंने कहा कि ये कि तू भूखों को खाना खिला और तू जिन्हें जानता है और जिन्हें नहीं जानता उन सबको सलाम कर। एक अधिकार इस्लाम में गैर कानूनी है। जो भी बुरे काम करने वाले हैं उनका साथ छोड़ दे। किसी ने पूछा इस्लाम क्या है। पैगंबर ने जवाब दिया जुबान की मिठास और मेहमान नवाजी। सच्चा इंसान वो है जिसकी वाणी और हाथों में मानवता सुरक्षित होती है। वो उन सभी बातों से परहेज करता है जिनको अल्लाह ने मना किया है। मृत्यु इंसान के लिए एक नियामत है। अपने मृतकों का स्मरण कर तथा उनकी प्रशंसा कर और उनकी निंदा करने से बच। अगर तुम कर सकते हो तो अपने दिल में सुबह से रात तक और रात से सुबह तक किसी के प्रति दुर्भावना न रखो। उन्होंने कहा ऐ मेरे बेटो, अल्लाह की शरीयतों अर्थात विधानों में से एक ये है कि जो उनकी शरीयतों से प्रेम करता है वो वस्तुतः अल्लाह से ही प्रेम करता है। अल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन वे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, दुराचरण करते हैं और जो बिना वजह ही किसी भी आदमी का खून बहा देते हैं। हजरत मोहम्मद साहब से पूछा गया कि सबसे अच्छा ईमान क्या है। उन्होंने कहा उनसे प्रेम करना जो अल्लाह से प्रेम करते हैं और उनसे नफरत करना जो अल्लाह से नफरत करते हैं और अपनी ज़ुबान से अल्लाह का नाम लेते रहना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा सभी मनुष्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम अपने लिए चाहते हो और वो न करो जैसा कि तुम अपने लिए नहीं चाहते। ज़कात दान देना एक इंसानी फ़र्ज है। जिसके पास ऐसा करने की कुव्वत क्षमता नहीं है उसे एक अच्छा काम करना चाहिए या फिर एक बुराई से बचना चाहिए, यही उसकी ज़कात होगी। जो इंसान एक अल्लाह और एक आखिरत भविष्यत जीवन पर ईमान लाता है उसे मेहमान का साक्षात्कार सत्कार करना चाहिए। जब भी तुम बोलो तो सच बोलो, जब तुम वचन देते हो तो उसे पूरा भी करो। अपने दायित्व का निर्वाह करो, व्यभिचार न करो, पवित्र बनो, बुरे विचारों को मन में मत लाओ। अपने हाथ को प्रहार करने से तथा उस चीज़ का ग्रहण करने से जो अवैध और बुरी है बचाओ। अल्लाह के सच्चे खिदमतकार भी हैं जिन्हें देखते ही अल्लाह की सुध आ जाती है और अल्लाह के सबसे बुरे सेवक भी हैं जिनके साथ शरारत करने की कहानियां जुड़ी हैं और जो दोस्तों को अलग करते हैं तथा भले लोगों की कमियां ढूंढते हैं। जो एक अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाता है उसको अच्छा बोलना चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए। जो एक अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाता है उसको अपने पड़ोसियों को हानि नहीं करनी चाहिए। भूखे को खाना दो, बीमारों की देखभाल करो और अगर कोई अनुचित रूप से बंदी बनाया गया है तो उसे मुक्ति करवाने में सहायता करो। आफत के मारे व्यक्ति की सहायता करना ही एक महत्वपूर्ण कार्य है, भले ही वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का क्यों ना हो।
2: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हजरत मोहम्मद साहब के विचार। आलेख और वाचन यतीन्द्र चतुर्वेदी का था। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मग्न हैं। वेद सम्मत विधियों तथा कुल की रीति के अनुसार वे अर्घ्य पावड़े देती नवविवाहित जोड़ियों को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुईं। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं, और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भली भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरितमानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में परोया था शोभना राव और साथियों ने। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कुछ दिन बाद यानी 6:50 पर हमारे श्रोता खेती की बातें कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का विषय रहेगा बायो पेस्टिसाइड्स और वार्ताकार होंगे KL वर्मा। मुझे हमारे श्रोता आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर।

मुझे हमारे श्रोता आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का, और 7:18 का समय रहेगा प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें हम आकाशवाणी लखनऊ से अनुप्रसारित करेंगे।

31 मिनट पर आप आनंद लेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी का। ब्रज माधुरी कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता सुनेंगे ब्रज की माटी तोहे प्रणाम, राधा रमन वृंदावन, ओबी आलेख और सहयोग होगा रश्मि शर्मा का, प्रस्तुत करता होंगे ओपी सिंह और सुन सकेंगे कुछ ब्रज लोकगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि, मैं कुछ चित्रपट संगीत के नगमे, और 9:00 आप सुनेंगे हिंदी वार्ता, इस्लाम की शिक्षाएं और आज के सामाजिक संदर्भ, वार्ताकार होंगे मोहम्मद अशफाक समर, भेंट करता होंगे ओपी सिंह। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबो हवा, विषय रहेगा संतुलित पर्यावरण संतुलित पोषण, आलेख और वाचन डॉक्टर पंकज वर्मा का होगा। पर हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, और 12:00 का समय रहेगा व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS का। बारह बजकर 30 मिनट पर हमारे श्रोता सुनेंगे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में, आज कलाकार होंगी रीता शाक्य, संगत कलाकार बांसुरी पर लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम पर ब्रिभु शर्मा, ढोलक पर योगेश शर्मा और परकशन पर कृष्ण कुमार शर्मा रहेंगे। 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा वनिता लोक, आज की चर्चा का विषय रहेगा ईद ए मिलाद 12 वफात, साथ ही मदर टेरेसा जयंती विषय पर आप सुनेंगे चर्चा। कार्यक्रम में वार्ता होगी त्याग एवं सेवा का प्रतीक मदर टेरेसा। और 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: भाइयों, अब तक आप ट्राइकोडर्मा और विवेरिया वैश्याना जैविक रसायनों के बारे में भलीभांति जानते हैं। अब इन इसके अलावा भी और जैसे हमारा बायो पेस्टिसाइड या बायो एजेंट्स जो है तैयार किए गए हैं, सूडोमोनास फ्लोरेंसिस, ये नया बायो एजेंट है जो हमारी गवर्नमेंट की प्रयोगशाला मुरादाबाद में तैयार किया गया है। इस ये जो जैविक है ये जीवाणु से बना है और ये चना की फसल के साथ साथ में टमाटर और अन्य फसलों में भी उपयोगी पाया गया है। ये जीवाणु पौधे में लगने वाले 3 रोग कारकों को रोकने में सक्षम है। इससे सबसे पहले जो इसका जो प्रयोग किया जाता है बीजोपचार, इसमें 1.25 लीटर पानी में 115 ग्राम गुड़ तथा 55 ग्राम चीनी को गर्म करके चिपचिपा घोल तैयार करने के उपरांत इसमें 500 ग्राम सूडोमोनास

0: को डाल दें और गाढ़ा घोल तैयार कर लें। ये घोल 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। बीज में घोल अच्छी तरह से मिलाने के बाद छाया में सुखाकर ही बुवाई करें। इसके अलावा पौधों की जड़ों का उपचार भी इससे किया जा सकता है। इसके लिए 500 ग्राम सूखी गोबर की खाद को 2.5 लीटर पानी में घोलकर गाढ़ा घोल बनाने के बाद 500 ग्राम सूडोमोनास को डालकर इस गाढ़े घोल में पौधों की जड़ों को डुबाकर उपचारित करने के उपरांत लगाना चाहिए। इस प्रकार से उपचारित अधिकांश सब्जियों वाली फसलों जैसे फूलगोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज और धान की पौध में जड़ों में लगाने से जड़ों से उत्पन्न होने वाले जितनी भी बीमारियां हैं उनसे इसकी मतलब इनकी रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा इसका भूमि का भी शोधन इससे किया जा सकता है। इसके लिए 800 ग्राम सूडोमोनास की मात्रा को लेकर 10 से 15 किलोग्राम पिसी हुई बालू हो या मिट्टी हो रेत जैसा उसमें मिला के प्रति हेक्टर बुवाई से पूर्व जैसे हम खाद छिड़कते हैं उसी हिसाब से अगर इसका प्रयोग करें तो इससे भूमि का भी शोधन किया जा सकता है। इसके अलावा और भी बायोएजेंट्स तैयार हो रहे हैं जिनमें प्रमुख रूप से दो नाम है, मेटाराजियम, ये भी बायोपेस्टिसाइड है जो दीमक नियंत्रण के काम में आता है और इसका प्रयोग भी बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे बेबेरिया वैसियाना का, यानी 2 किलो मेटाराजियम लेके 20-25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद हो या न हो तो सूखे कंडे हो उनको फोड़ के बना लें आप और उसमें पानी के छींटे देने के बाद और उसको उसमें रख दें 10-15 दिन छाई में रखें आप। इसके बाद उसको खेत में प्रयोग करते हैं। ध्यान ये रखें कि जितने भी बायो एजेंट्स हैं ट्राइकोडर्मा सबसे मजबूत होता है तो दीमक नाशक या अन्य जो रसायन है इनको पहले प्रयोग करें, ट्राइकोडर्मा को सबसे बाद में प्रयोग करें। इसके अलावा एक और बायो एजेंट्स है उसको वर्टिसिलियम है, ये अब तक तो जमीन के अंदर वाले कीड़ों के लिए था लेकिन ये ऊपर जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं जैसे जैसिड एफिड ये पाउडर फॉर्म में है और इसका 1 किलोग्राम को 300-400 लीटर पानी में घोल के कीड़ों के ऊपर इसका छिड़कने से इसका कंट्रोल किया जा सकता है। ध्यान ये रखें कि बायो पेस्टिसाइड और बायो एजेंट का जो भी प्रयोग करें आप शाम को 4 बजे के बाद उपरांत ही इसका छिड़काव करें, अन्यथा इसका जो फफूंदी या जो बैक्टीरिया है उनके नष्ट होने की संभावना होती है।
1: अभी आप कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, विषय था बायो पेस्टिसाइड्स, वार्ताकार थे KL वर्मा। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: अभिनंदन का एहसास।
1: और आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये पहला नगमा। पहला गीत हमने लिया है फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से, स्वर है मोहम्मद रफी का।
2: अकेले अकेले।

लता मंगेशकर, भूपेंद्र और साथियों के गाए फिल्म जुएल थीप के इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, इस बुधवार यानी कि आज छब्बीस को शाम 6:50 से 30 मिनट अवधि के हेलो प्रज ग्रामीण कार्यक्रम में आज का विषय है खरीफ की खड़ी फसलों में देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह, कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, खरीफ की खड़ी फसलों जैसे धान, बाजरा, मक्का, कपास, दलहनी एवं तिलहनी फसलों में लगने वाले रोग एवं कीड़ों से बचाव के उपाय और खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं खाद उर्वरक की व्यवस्था पर जैसे मुद्दों पर पूछिए सवाल हमारे स्टूडियो के उपस्थित रहेंगे अमर सिंह, कृषि वैज्ञानिक। हमारे टेलीफोन नंबर 0565 कोड लगाएं और 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय होगा मंगलवार। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से डील करेंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। 6 माह में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी प्रदेश सरकार। मिशन रोजगार के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है ईद ए मिलादुन नबी। लखनऊ सहित कई जिलों में निकाला जाएगा जुलूस ए मोहम्मदी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री

0: योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें एक निर्णय 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का है। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं यूपी रोडवेज की सामान्य बसों में वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड दिखाकर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। जल्दी ही इनके लिए विशेष स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि प्रतिदिन करीब 88,000 से अधिक महिलाएं इस सुविधा का लाभ ले सकेंगी। इस निःशुल्क बस यात्रा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से करेंगे। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन में किया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जाएगा।
1: गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के संबंध में 6 लेन विस्तारित है, अब तो 8 लेन। आज मंत्रिपरिषद ने इसको सहमति प्रदान की है। ये 10,761 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार होगा। इसमें खासतौर से जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश से हरिद्वार तक जाने के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय मार्ग NH-34 मेरठ बिजनौर हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग की सुविधा भी उपलब्ध है। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण हो जाने से बिजनौर हरिद्वार से सीधे जुड़ जाएगा और गंगा एक्सप्रेस वे के माध्यम से इसका सुलभ संपर्क प्रदेश की राजधानी से भी होगा।
0: मंत्रिपरिषद ने 7,968 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 25 लाख टैबलेट खरीद के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण नियमावली 2014 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इसके अंतर्गत देखभाल न करने वाले या अत्याचार करने वाले बच्चों को अब वृद्ध माता पिता अपनी संपत्ति से आसानी से बेदखल कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में इंटर्नशिप करने वाले MBBS के छात्रों का स्टाइपेंड 12,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सरकार के इस निर्णय से सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत करीब 4,000 इंटर्न चिकित्सकों को लाभ मिलेगा। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। वर्ष 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली UPI ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की एक दशक लंबी सफलता को सराहनीय बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपने UPI अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि UPI की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। UPI से लेनदेन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मिशन रोजगार के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए चयनित 3,446 प्राविधिक सहायक और मंडी परिषद में 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार अगले 6 माह में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भर के नौजवानों की दुनिया भर में मांग है।
2: आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इसराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहाँ भेजे, हम भी अपने यहाँ नौकरी। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। आज दुनिया मांग रही है यूपी के नौजवानों। 17 के पहले तो ये स्थिति नहीं थी।
0: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता का ही नहीं बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने का सामर्थ्य रखता है।

0: चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी, हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख क्विंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से, यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है।
1: प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को योजना के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि योजना के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल द्वारा अवैध वसूली, फर्जी बिलिंग और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। अपने लखनऊ दौरे के अंतिम दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बूथ स्तरीय अधिकारियों से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने की अपील की।
2: आधारशिला हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है। भारत के सभी बूथ लेवल ऑफिसर अपनी कर्मठता से जिस तरीके से कार्य करते हैं इसीलिए उनके साथ संवाद स्थापित करना और इतना अच्छा वो काम करते हैं और सुझावों को भी लेना, इसी काम के लिए लखनऊ आए थे।
1: प्रदेश भर में आज ईद ए मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। ये हजरत मोहम्मद साहब की यौमे पैदाइश का दिन है। इस अवसर पर लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला जाएगा। इसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार राज्य में 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए 1,618 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। अब तक 14,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई स्थानों पर गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ने और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। 6 माह में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी प्रदेश सरकार। मिशन रोजगार के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है ईद ए मिलादुन नबी। लखनऊ सहित कई जिलों में निकाला जाएगा जुलूस ए मोहम्मदी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुबह

0: सुभाष चंद्र बोस।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

ये माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोतान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वंदे ब्रज वसुंधरा, ब्रज की या पावन धरा को नमन करें, वंदन करें। जय जय श्री राधा रमन, जय जय श्री नवल किशोर, जय जय श्री चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्ण कन्हैया की ब्रज भूमि और ब्रज में सो आनंद कहूँ हिंडोला है, कहूँ मल्हार है, वृंदावन झूलत गिरवर धारी। वृंदावन ब्रजमंडल में झूलत किरवर धारी, सावन मास सरस बन बरसे तैसी यह भूमि हरियाली। फूले कुसुम सुभग यमुना तट, पवन बहत सुखकारी, निरखी निरखी सुख देत छोटी का श्री विश्वान दुलारी। तादुर मोर पपैया कोयल, शब्द करत मनोहारी, और गावत राग मल्हार भामिनी, पहरे झूमक सारी। बाजत ताल मृदंग बांसुरी, नाचत देकर तारी, मदन मोहन राधावर ऊपर, गोविंद तन मनवारी। ब्रजमंडल झूलत गिरवर धारी, ब्रज की ब्रजांगना, कोपी रसिक समस्त ब्रजवासी या श्रावण के महीना में खूब आनंद ले रहे हैं। आपको आनंद दिवा में ब्रज की माटी तो ही प्रणाम। राधा रमन मंदिर वृंदावन, वो भी आलेख और प्रस्तुति सहयोग है रश्मि शर्मा को, या के प्रस्तुत करता है ओपी सिंह।

जय श्री कृष्णा। तो श्रोताओ, ब्रज की माटी तो ही प्रणाम कार्यक्रम के आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं श्री वृंदावन धाम। और आज हम बात करेंगे श्री राधा रमण जी के मंदिर के संदर्भ में। तो आओ चलें श्री वृंदावन धाम।

वृंदावन स्थित श्री राधा रमन मंदिर भगवान श्री कृष्ण के सप्त देवालय में से एक है। श्री राधा रमन जाको अर्थ है राधा जी को प्रसन्न करवे वारो। यह मंदिर में राधा रानी के संगई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है जो शरीर राम से स्वयं प्रकट।

0: जिस प्रकार से एक माँ अपने बालक के साथ लाड़ लड़ाती है, उसी प्रकार से हम भी राधा रमण जी के साथ में इसी प्रकार लाड़ लड़ाते हैं, प्रेम करते हैं।
1: छोटे बच्चे का हम ध्यान रखते हैं कि नहीं, घर में परिवार में छोटा बालक हो तो कैसे उसका खान पीन रखना चाहिए, कैसे उसको भोजन देना चाहिए, कैसे बालक बालक ही होगा तो होता है, बालक को बालक की तरह से होगा।
2: राधा रमण मंदिर को वृंदावन के ठाकुर के सप्त देवालय में से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव धर्म के अनुयायियों के बीच अपनी विशेष महत्ता रखते हैं।
3: वृंदावन में जो श्री राधा रमण मंदिर है, ये ब्रज के जो सप्त देवालय कहे गए हैं, जो सबसे प्राचीन मंदिर है उनमें से एक है, जो और इसके जो गोस्वामी रहे हमारे सर्वप्रथम वो रहे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के एकमात्र शिष्य थे। तो उनकी आज्ञा से गंडकी नदी से वो शालिग्राम जी को लेकर आए थे। तो वो शालिग्राम जी एक दिन उनकी व्याकुलता के कारण वो श्री राधा रमण जी के विग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। तो स्वयं प्रकट ठाकुर हैं श्री राधा रमण मंदिर के, जो हमारे ठाकुर जी हैं राधा रमण जी, ये स्वयं प्रकट है और करीब 500 वर्ष पुराना, लगभग 500 वर्ष पुराना ये मंदिर है। जब से वृंदावन है तब से सप्त देवालय हैं, षड गोस्वामी स्थापित किए, षड गोस्वामियों में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी रहे और वही उन्हीं के परिवार समझ लीजिए, पूरा राधा रमण परिकर जो है, सारे गोस्वामी जो हैं, जो सेवाएं थी राधा रमण मंदिर के, वो उन्हीं की परंपरा में है।
2: 1542 में स्थापित होने के बाद यह मंदिर को तैयार किया गया, लेकिन बाद में 1826 में शाह बिहारी लाल जी द्वारा या बहुत जीर्णोद्धार कराया गया
3: जी। ये एक्चुअली पुराना मंदिर तो पहले प्रकट स्थल तो अलग है, जिसे डोल के रूप में पूजा जाता है, वहाँ पे आज भी वो मंदिर दर्शन होते हैं वहाँ पर। फिर जो जहाँ हमारी रसोई है, फिर वहाँ स्थापित हुआ था पुराने समय में, करीब 100-150 वर्ष पुराना ये मंदिर है। नया जो बना है अभी, जो इस समय स्थापित है, ये काफी बाद में बना, ये पहले तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उसी तरह से सेवा पूजा होती थी। अब जब ये मंदिर स्थापित हुआ तो ठाकुर जी को यहाँ विराजित कराया गया, क्योंकि धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। आज आप वृंदावन में देखिए कितने भक्त हैं, कार्तिक मास जो चल रहा है इसमें देखिए पूरा परिसर भी छोटा पड़ जाता है, इतने दर्शनार्थी और भक्त यहाँ आते हैं। और ये शैली तो देखिए, जितने भी पुराने मंदिर आप देखेंगे, चाहे दादा दामोदर देख लीजिए, चाहे श्याम सुंदर देख लीजिए, चाहे राधा रमण देख लीजिए, ये सब अलग अलग, गोविंद देव जी हुआ, मदन मोहन जी हुआ, मदन मोहन जी के मीनार है जो, ये सब लाल पत्थर की बनी हुई है, गोविंद जी लाल पत्थर का बना हुआ है पूरा। तो कुछ कुछ इसमें राजस्थानी शैली का थोड़ा सा मिश्रण है, और उनमें जो कारीगरी है बेल बूटों के माध्यम से जो पत्थर पे कारीगरी की गई है, वो सब उसी शैली को चिन्हित।
2: 500 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा श्री राधा रमण जी स्थापित करे गए है। गोपाल भट्ट जी 30 वर्ष की अवस्था में श्री वृंदावन धाम आए और चैतन्य महाप्रभु के वे शिष्य हैं। एक दिन विनय ने स्वप्न में देखी कि भगवान विनय नेपाल जाए के उनके दर्शन करने को निर्देश दे रहे हैं। गोपाल भट्ट स्वामी नेपाल गए और वहां विनय ने गंडकी नदी में स्नान करो, और जब विनय अपना जलपात्र नदी में डूब

खोलो तो देखो कि उनके पास कई शालिग्राम उनके पात्र में प्रवेश कर गए हैं। तत्पश्चात बिन ने उन शालिग्रामन को नदी में उन्हें डारवे को प्रयास करो, लेकिन वे शालिग्राम पात्र में पुनः प्रवेश कर गए। या प्रकार से 12 शालिग्राम शिला उन्हें मिली जिनको वे अपने संग ले आए। श्री यमुना जी के समीप ही वास करवे लगे और बिन शालिग्रामन की पूजा सेवा करने लगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में ये इच्छा जागृत हुई कि जा प्रकार से मंदिर में ठाकुर जी की सेवा पूजा करी जाए है, ठाकुर जी को नए नए श्रृंगार धारण कराए जाए हैं, बिन के पास भी ऐसी कोई ठाकुर जी की प्रतिमा होती तो वे ठाकुर जी को श्रृंगार करते। और यही भाव से पूर्णिमा के दिन वे ठाकुर जी को स्मरण करते करते रोने लगे और उनकी अश्रुधारा बह उठी। रोते रोते कब बिन की आंख लग गई और जब बिन की आंख खुली तो प्रातःकाल उन्हें ऐसी अनुभूति भई कि काई ने उनको आवाज दी है। और जब वे यमुना जी में स्नान करके आए और अपने शालिग्राम की टोकरी खोल के देखी तो वहां में शालिग्राम की केवल 11 शिला ही और एक शालिग्राम की शिला से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते भय मूर्ति के दर्शन बिन्कु भय।

0: मूल रूप दे यह उन शिलान में थे, एक ही जो स्वयं प्रकट है के भगवान श्री कृष्ण की सजीव मूर्ति बन गई, आज जिनको हम राधा रमन के नाम से जाने हैं।
1: छोटे से बालक की जिस तरह से सेवा होती है वही राधा रमन जी का स्वरूप है, और चाहे रसोई सेवा हो या ठाकुर जी की सेवा हो, वो सब गोस्वामी ही करते हैं, किसी बाहर के व्यक्ति का प्रवेश उसमें नहीं है। जो सब आचार्य हैं यहाँ के वही करते हैं, और अष्टयाम सेवा है, सुबह मंगला से लेकर रात को शयन आरती तक सारी सेवाएं उनकी बहुत ही पारंपरिक रूप से की जाती हैं। सभी के अलग अलग नियम हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भी आज्ञा नहीं है कि किसी को हम बता सकें या कह सकें, तो वो पूरी नियमावली के अनुसार की बाकायदा ट्रेनिंग कह लीजिए कि गोस्वामीगण ही अपने जो आने वाले बालक हैं या जो भी आचार्य हैं उनको दी जाती है उनके द्वारा, और वो फिर उस सेवा को पारंपरिक रूप से करते हैं। तो जैसे सबसे पहले मान लीजिए मंगला आरती है, उसके बाद फिर धूप आरती है, श्रृंगार आरती है, राजभोग है, उसके बाद फिर ठाकुर जी शयन में चले जाते हैं दिन में, फिर संध्या को धूप आरती होती है, संध्या आरती होती है, उसके बाद फिर ओलाई होती है, भोग भोग होता है, दूध भोग आता है, उसके बाद शयन आरती है। तो ये सारी आरतियाँ प्रतिदिन नियमित रूप से चली आ रही हैं सबसे, और वही पूजा पद्धति है, और पूरे नियम से पूरे जिस तरह से की जानी चाहिए जैसी आज 500 वर्ष पहले होती थी उसी तरह से आज भी उसी परंपरा के अनुसार ठाकुर जी की पूरी सेवा या आरती या जो भी आप राग सेवा है, ठाकुर जी की प्रसादी सेवा है या श्रृंगार सेवा है या आरती है, जो भी है वो उसी तरह पारंपरिक रूप से की जाती है।
2: जिस प्रकार से प्रातःकाल बच्चे को उठाया जाता है उसी प्रकार से हम भी भगवान को जगाते हैं, और जगाने के पश्चात उनका दांतुन कराते हैं और फिर उनको स्नान इत्यादि कराया जाता है।
3: इसलिए हमारा भाव यही होता है कि बाल गोपाल के दर्शन हो रहे हमको।
2: तो बाल भाव से मुख्यतः माधुर्य प्रधान सेवा यहाँ पर ठाकुर जी की है। यहाँ पर भगवान को भगवान नहीं समझा जाता, भगवान नहीं कहा जाता, यहाँ पर ठाकुर जी कहा जाता है। ठाकुर जी यानी कि एक प्रेममयी शब्द है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके असली नाम से नहीं, उसके किसी दूसरे नाम से, जिसको हम कहें कि पैट नेम से पुकारते हैं, उसी प्रकार से ठाकुर जी यहाँ का या श्री जी यहाँ का एक पैट नेम है, अति से भगवान से प्रेम करते हैं। तो ये अपने भाव है, गोस्वामी लोग भी भगवान के साथ में उसी प्रेम से सेवा करते हैं, और जो भक्त आते हैं वो उसी प्रकार से भगवान से ठाकुर जी के

0: राधा रमन मंदिर के समीप ही वह स्थान भी है जय दौल के नाम से जाना जाए है, जहां गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भगवान की यह प्रतिमा प्राप्त भई।
1: यहां पर ही राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ था आज से लगभग 470 साल पहले।

आज से लगभग 470 साल पहले, और ऐसा कहते हैं यही वो स्थान है जहाँ पर प्रकट हुए थे भगवान। तो ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं छोटा सा मंदिर के रूप में यहाँ पर बना हुआ है। इसी पेड़ के नीचे कुटिया बनाकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी निवास किया करते थे, और ऐसा कहते हैं कि यहीं पर ही झोपड़ी बनाकर वो रहते थे, और यहाँ निकट से ही जमुना नदी

0: बार बार किसी के मन में चतुर्दशी के दिन मन में भाव हुआ, जैसे प्रहलाद के वसीभूत होकर नरसिंह भी प्रकट हो गए, ऐसे मेरे प्रभु भी प्रकट हो जाए सारे नंबर। तो द्वितीय दूसरे दिन ही वो प्रकट हो गए, इनको नरसिंह रूप भी माना जाता है।
1: गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ऊपर कृपा करके राधा रमण जी शालिग्राम शिला से प्रकट हुए हैं। तो ये एक दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य भी है कि शालिग्राम शिला से कोई मूर्ति नहीं बन सकती है और ये साक्षात शालिग्राम शिला से प्रकट हुए हैं। तो ये एक उसकी विविधता है और ये कहिए आश्चर्य है। और जो भाव प्रधान में अगर देखा जाए तो इतने बारीक मूर्ति और कोई नहीं है कि जिसमें ठाकुर जी की उंगलियों के भी दर्शन हो रहे हों, जिसमें ठाकुर जी के नाखूनों के भी दर्शन हो रहे हों।
2: प्रातःकाल से रात्रि तक ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा के दर्शन भक्तन को कराए जाए हैं और ठाकुर जी को 56 भोग भी समय समय पे निवेदित करे जाए हैं। यह मंदिर की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे श्री गोपाल भट्ट जी ने ठाकुर जी के भोग प्रसादी के काजे जो अग्नि प्रज्वलित करी वह मंत्रण के द्वारा करी, वही अग्नि को आज तक प्रयोग में लाया जाए है। यानी या मंदिर में दिया सलाई को प्रयोग नाए हुए हैं, जो अग्नि वास समय से प्रज्वलित करी गई थी वही अग्नि को पुनः पुनः प्रयोग किया जाए है। ठाकुर जी की रसोई हो या ठाकुर जी की आरती, सभी में यही अग्नि प्रज्वलित करी जाए है।
1: ये राधारमण मंदिर का प्राचीनतम रसोई है जहाँ पर ठाकुर जी का सारा प्रसाद बनता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 200 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन ये जो मंदिर की रसोई है, ये मंदिर की रसोई जब से ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ तभी से यहाँ पर ये बनी हुई है। इस रसोई में 500 वर्ष से अखंड अग्नि जल रही है, जिस अग्नि में ही सारा का सारा प्रसाद बनता है।
3: ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में आए तो उनकी लीला का आस्वादन करने के लिए यहाँ पर सारे के सारे देवता भी पधारे, और कोई वृक्ष में जा छुपा, कोई पशु बन गया, कोई पक्षी बन गया, तो छिप छिप कर भगवान श्री कृष्ण की लीला का आस्वादन और आनंद प्राप्त करते थे। तो इसी प्रकार से अग्निदेव के मन में भी ये भाव जागृत हुआ कि मैं भी श्री राधा रमण जी की सेवा में सम्मिलित हूँ, इसलिए इस अग्नि के रूप में साक्षात अग्निदेव ही आकर यहाँ पर विराजित हो गए हैं।
1: मंदिर में किसी भी प्रकार के गैस का प्रयोग नहीं होता है, लकड़ी पर ही सारा प्रसाद बनता है। प्रातः काल और सायंकाल भगवान का भोग लगता है। प्रातः काल का जो प्रसाद है वो गोस्वामी लोग ही बनाते हैं, जिसको हम कच्चा प्रसाद कहते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी।
0: ठाकुर जी का राजभोग में दाल हुई, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, दही बड़े, चावल, खीर, मीठा भात, मीठा फुलका, फुलके आदि पदार्थ भोग लगता है 56 भोग का, जो अखंड अग्नि से बनता है, जो गोस्वामी लोग ही प्रसाद बनाते हैं, उसमें कोई बाहर के मसाले का प्रयोग नहीं होता है।
4: यहाँ पर राधा रमण के रसोई में 56 भोग रोज ही भोग लगता है, छोटे छोटी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, एक बार में पूरा 56 भोग नहीं लगता। सुबह से लेकर रात्रि तक जितने भी भोग लगते हैं उन भोगों में थोड़ा थोड़ा 56 भोग का अंश मिला दिया जाता है।
5: विशेष उत्सवों पर विशेष भोग की व्यवस्था अलग है, जैसे होली पर हमारे जलेबी का विशेष भोग होता है, दीपावली पर हमारे यहाँ गुजिया, और उसके अलावा बालू चाहिए।

0: जी प्रसाद पाते हैं। वृंदावन में एकमात्र राधा रमण जी का ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर ठाकुर जी के प्रसाद के लिए अलग से एक कक्ष बना हुआ है जिसको हम भोग मंडी के नाम से भी कहते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी का भोग लाया जाता है और एक चांदी के थाल में सारा का सारा जो भी प्रसाद रसोई में बनता है वो यहाँ पर लाकर रख दिया जाता है और फिर उसके पश्चात गोस्वामी जी यहाँ पर राधा रमण जी को लेकर आते हैं। 24 शालिग्राम जी विराजित होते हैं और राधा रानी विराजित होती हैं और फिर उसके पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी यहाँ पर विराजित होते हैं।
1: ठाकुर जी को उसारने के बाद राधा रानी का भोग बहुत है। उसके बाद राधा रानी का उसारने के बाद गोसाई जी महाराज चार दिन खाते हैं और उसके बीच में ठाकुर जी को बीच में भाग जब ठाकुर जी को उसारेंगे तब एक तुलसी के पत्ते और ठंडी से चंदन लगा के उनको दातुन कराते हैं और हाथ धुलाते हैं। वही सब कुछ राधा रानी के साथ राधा रानी को भी हम उसी तरह से दातुन कराते हैं। फिर गोसाई जी महाराज के महाराज को हम सिर्फ बिना चंदन के दातुन कराते हैं तुलसी के पत्ते से और ठंडे से।
2: राधा रमन मंदिर में यूं तो पूरे वर्ष भर विशेष रूप से सभी त्योहार धूमधाम के संग मनाए जाए हैं, किंतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राम नवमी, चंदन यात्रा, झूलन यात्रा, बलराम पूर्णिमा, राधा अष्टमी, कार्तिक माह, गौर पूर्णिमा इत्यादि यहाँ के विशेष उत्सव हैं।
3: ये शालिग्राम जी से अगर हम कोई प्रतिमा बनाना चाहें तो वो संभव नहीं, क्योंकि शालिग्राम जी को कार्व नहीं कर सकते। आप उसमें छेनियां तो नहीं चलाएंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन कार्व जैसे हम मार्बल से मूर्ति बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, शालिग्राम जी से इसीलिए स्वयं प्रकट मूर्ति है। और सबसे बड़ी चीज जो ठाकुर जी के जो भंगिमा है या उनके नए नक्श कह लीजिए या उनका पूरा आकार कह लीजिए, उसमें हाथों की लकीरें तक हैं, पलकें भौहें तक बनी हुई हैं। आप ध्यान से दर्शन करेंगे तो पूरा ही सजीव स्वरूप है ठाकुर जी का। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कहा जाता है ठाकुर जी के विषय में जैसे आप मत लेकर ठाकुर जी के दर्शन करते हैं ठाकुर जी वैसा ही दर्शन आपको देते हैं। आप कभी भी देखिएगा ठाकुर जी के कई फोटो देख लीजिएगा पिक्चर्स में, वो कभी एक से नहीं होंगे, सब में अलग अलग अलग अलग उनके एक्सप्रेशंस होंगे, अलग अलग भाव होंगे। कभी वो हंसते हुए भी दिखाई देंगे, कभी वो नाराज भी दिखाई देंगे, कभी जैसा आपका मन होगा, जैसे आप मन लेकर जाएंगे वैसा ही आपको दर्शन होगा। तो ये एक बहुत विलक्षण बात है। ठाकुर जी के दंतावली के भी दर्शन हो जाते हैं कभी कभी, यदि आप सौभाग्यशाली हैं तो कई बार आपको उनके दंतावली के भी दर्शन होते हैं। ये आज के कलयुग में बहुत विचित्र बात है कि एक स्वयं प्रकट जो हमारी प्रतिमा है, जो हमारे विराजमान है ठाकुर जी, उनमें इतनी असमानताएं हैं, इतने अलग अलग रूप हैं उनके। प्रतिमा एक ही है लेकिन स्वरूप अलग अलग है। कभी भी गौर से देखिएगा या उनके पिक्चर्स को देखिएगा या अपनी जैसे आप देखते हैं उनके दर्शन करते हैं तो आपको आपका मन नहीं भरेगा उनके दर्शन करने से। इतना सुंदर स्वरूप है और बहुत छोटा स्वरूप है, 12 अंगुल का स्वरूप है यदि आप देखें, लेकिन एक एक भंगिमा उनकी अंग भंगिमा देखेंगे तो एक एक आकार बिल्कुल बालक के स्वरूप का है। जितना कोमल बालक का शरीर होता है उतना ही कोमल श्री ठाकुर जी का शरीर है।

अब भैया आपने आनंद लियो, ब्रज की माटी तो है प्रणाम राधा रमन मंदिर को, और ओबी आलेख को सहयोग हो रश्मि शर्मा को, प्रस्तुत करता है ओपी सिंह। राधा रमन की झांकी कछु ऐसी ही है, आपको आनंद लियो, दर्शन करो।

छवि देखी मैंने राधा रमन की, ब्रजेंद्र तिवारी के स्वर में गाए या ब्रज लोकगीत के संग ही आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुए है। आप सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य

0: सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृहमंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉक यार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
3: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये 6वीं बैठक थी। ई श्रम पोर्टल के को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

0: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में

0: तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद ए मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिव्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 30,000 करोड़ रुपीज एट प्रगति मीटिंग। Union Home Minister Amit Shah sets one-year deadline for 100% implementation of 3 new criminal laws. Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agreed to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Milad-un-Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today. Keralites across the globe celebrating Thiruvonam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly

उदित नारायण, अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म कुछ कुछ होता है मैं, और आइए सुनते हैं कुमार सानू लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है दुश्मन।

खान के गाए फिल्म प्यार किया तो डरना क्या किस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीतांजलि अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी वार्ता, इस्लाम की शिक्षाएं और आज के सामाजिक संदर्भ। वार्ताकार है मोहम्मद अशफाक समर, आपसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह।

जीवन में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको सामने रख करके हम जीवन जीते हैं। कई बार जीविका का प्रश्न होता है, कई बार विचार का प्रश्न होता है, कई बार जीवन की दुश्वारियां हमारे सामने होती हैं, और इन्हीं सब संदर्भों से निकल करके समय समय पर कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी चीजें निकल के आती हैं जिनको हम आगे चल करके दीन कह सकते हैं, ईमान की बात कह सकते हैं। और एक चूंकि विचार और सोच की विविधता ही है कि समय समय पर इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे विचारक हुए, चिंतक हुए, जिन्होंने जो सोचा और उस पर आगे चल करके लोगों ने एक ऐसा संप्रदाय, पंथ या वो बनाया जो उनकी विचारधारा को मेल खाता था, जिस पर चल करके वो अपना जीवन का सुकून ढूंढते थे। तो इस्लाम का जो धर्म है वो भी पैगंबर मोहम्मद साहब की सोच के बाद, उनके जीने के तरीके के बाद निकल करके आया, और उसको मानने वाले जो लोग हैं वो सब हम जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय के भाई हैं। क्या है इस्लाम और क्या इसकी शिक्षाएं और आज के संदर्भ में उसकी क्या कुछ जरूरत है, ये आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस मुद्दे की बात में मोहम्मद अशफाक समर भाई हमारे साथ हैं, जो शायर हैं, कवि हैं, लेकिन

0: ऐसे से शिक्षक भी हैं, यानी शिक्षा देने और लेने का काम भी करते हैं। तो एक शायर और एक शिक्षक मोहम्मद अशफाक समर भाई का हम स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं
1: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: जनाब।
0: तो जो एक हमारी और आपकी बातचीत को सुन रहे जो सामान्य व्यक्ति है, अगर हम उसकी तरफ से आपसे जानना चाहें कि इस्लाम धर्म जो है, जो दीद है, जो उसका ईमान है, वो क्या है, एक आम आदमी क्या मान के चले कि इस्लाम धर्म की जो शिक्षा है, कैसे वो माने कि ये धर्म इस्लाम धर्म होता है उसमें।
1: जनाब, इस्लाम जो धर्म है ये हमेशा से भाईचारे को कायम रखने वाला धर्म है। मोहम्मद साहब ने जो शिक्षाएं दी हैं वो यही हैं कि किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ कोई गलत काम मत करो, यहां तक कि आपके साथ भी जितने भी गलत काम हुए आप सबने सबको माफ कर दिया। और ये कहा कि अब अगर ये लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं तो इनकी नस्लें आकर समझेगी। मैं एक आपको वाकया बताऊं
0: जी
1: कि अरब का एक शहर है ताइफ, जहां पर आपने सदाए हक की आवाज लगाई, आपने कहा कि लोगों बुराई से हटो और भलाई की तरफ आ जाओ।
0: जी
1: तो इस बात पर जब कोई अच्छाई की तरफ चलता है, अच्छाई की कोई कोशिश करता है, तो लाजिम सी बात है उसके सामने बहुत मुश्किलें आती हैं, दुश्वारियां आती हैं। मोहम्मद साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ कि लोगों ने उनसे बुरा भला कहा, आपको पत्थर तक मारे, आप यहां तक के लहू लुहान तक हो गए।
0: जी
1: आपके जो साथी थे वो आए, वो कहें कि आप जैसा हुक्म करें हम इनके साथ ऐसा बर्ताव करें। बहुत सारी और भी बातें हुई, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं इनको माफ करता हूं।
0: जी
1: ये एक भाईचारे की बेहतरीन मिसाल है। ये मजहब वो सिखाता है कि तुम कितना भी कोई गुनहगार हो उसको माफ कर दो। अब माफ करोगे तो भाईचारा बन के रहेगा, और भाईचारा बनेगा तो मोहब्बत बढ़ेगी।
0: जी
1: लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज को कुछ उल्टा कर दिया है।
0: जी यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस्लाम को किसी नजरिए से देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, तो वो भाईचारे की बुनियाद है, या इस्लाम कहें कि उसका दूसरा नाम एक भाईचारा है, आपस में मिलजुल करके
1: जी जी जी
0: रहना है उसमें।
1: भाईचारा, बिल्कुल सही बात आपने कही कि भाईचारा तो है ही। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी शिक्षाएं दी हैं कि अपने साथी का, अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। अगर तुम घर में कोई ऐसी चीज लाए हो खाने के लिए कि तुम्हारा पड़ोसी को मयस्सर नहीं है, वो नहीं खा सकता है, तो आपने कहा है कि उनके छिलकों को भी छुपा के रखो, ताकि उसके बच्चे उनको देख के उनसे वो ना जिद ना करें
0: जी,
1: कि हमारे पास ये खाने को नहीं है, हमारे पास खाने को ये नहीं है।
0: यानी अब दूसरा जो संदेश निकल के आता है वो ये है कि भाईचारा हो लेकिन असमानता भी नहीं हो। अगर किसी
1: हाँ
0: कारण से, किसी परिस्थिति बस कहीं थोड़ा सा अंतर दिखता है, तो उसको भी वो नजरअंदाज करने की बात कर रहे हैं,
1: जी
0: समाज में
1: जी जी
0: समानता की भी बात कर रहे हैं वो।
1: बिल्कुल समानता की बात कर रहे हैं। और इसीलिए जो इस्लाम में हर साल 2.5% जो निकाला जाता है गरीबों के लिए, जिसको जकात कहते हैं।
0: जी
1: मैं आपको बता दूं कि ये हर जो पैसे वाला है मुसलमान, उसको 2.5% उन गरीबों को देने का वो है कि जो कि उनसे बहुत नीचे हैं, जो गरीब हैं, जो अपनी रोजी रोटी खुद नहीं कमा सकते, जैसे कि बेवा हैं या कोई माजूर हैं, हाथ पैर से ऐसे हैं कि उनके वो कमाकर अपनी जीविका नहीं चला सकते। तो ये सख्त आदेश है, सख्त हुक्म है कि वो 2.5% जो अपने आपने निकाला है अपनी
0: आमदनी से
1: आमदनी में से,
0: जी
1: उनको उन पर खर्च करो जिससे उनकी जीविका भी सही चल सके।
0: जी दूसरा जैसे जिनके पास अपने धंधे से, अपनी जायदाद से, अपने कमाने के तरीकों से इतना पैसा हो जाता है कि वो ज्यादा है, तो वहां अगर मान लो वो इंसानियत के नाम पर, समाज के नाम पर किसी जरूरतमंद को अगर देते हैं तो शायद ब्याज भी लेना गुनाह माना जाता
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: क्या।
1: हाँ ब्याज बिल्कुल लेना गुनाह है। किसी को, किसी का हमने काम चलाया, कोई उसको 1,000, 2,000, 5,000, 1 लाख रुपए अगर दे दिया, तो वो उसने अपनी गरीबी के छिपाने के लिए या अपनी किसी जरूरत के तहत उसने वो पैसे लिए आपसे, आप उसका नाजायज फायदा लेकर उसको सूद वसूल करते हैं, तो ये कतन हराम है। इस्लाम में इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है।
0: जी, तो ये मतलब एक बुनियादी बातें हैं कि एक तरफ वो कह रहे हैं भाई भाईचारा होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, अगर किसी जरूरतमंद की जरूरत पड़ती है उसकी मदद भी करनी चाहिए
1: मदद
0: आपको,
1: करनी चाहिए।
0: और अपनी जरूरत से अगर ज्यादा है तो उसको समाज के कामों में भी लगाना
1: जी जी
0: है
1: जी
0: उसमें।
1: बिल्कुल
0: आज के संदर्भों में जब हम बात करते हैं, किन्हीं कारणों से कुछ ऐसी बुनियादी बातें होती हैं कि जहां ये कहा जाता है कि मतलब ये कहें कि दीन को थोड़ा सा कुछ लोगों के काम से उसमें वहाँ गलत संदेश जाता है। तो ये जो

0: गलत संदेश है, इसमें इस्लाम को जो जानने वाले मानने वाले और ईमान पे अपना यकीन रखने वाले लोग हैं, वो उनका क्या उत्तरदायित्व बनता है कि वो इस बात को कैसे समाज के और भाई लोगों के साथ इसको बांटे और समझे और समझाए इस बात को?
1: जी, ऐसा है कि जो आजकल बुराइयां जमाने में फैली हुई हैं, यानी एक जमाना था हम देखते थे कि एक एक विशेष समुदाय को इस नजरों से देखा जाता था कि वो टेररिस्ट जा रहा है, एक आतंकवादी जा रहा है, लेकिन अब उसका कुछ कम हो गया है, लेकिन अब मुस्लिम को खास तौर से जिसके दाढ़ी और टोपी है उसको ये देखा जाता है कि ये टेररिस्ट जा रहा है, ये फला जा रहा है। ये जो ऊपर जो बैठे हुए हैं जो इस चीज को ज्यादा फैला रहे हैं, ये उनकी गुमराही है, उनसे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम की इस्लाम कभी भी ये नहीं सिखाता कि किसी का खून खराब किया जाए, किसी शख्स का बेवजह खून बहाया जाए। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है। इस्लाम हमेशा अमन और अमान का पैगाम देता है, भाईचारा कायम रखने का पैगाम देता है। हर यहाँ पर जब भी ऐसी कोई हादसा दुर्घटना वो होती है तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो हमारे मुफ्तियान हैं, जो मौलाना हैं, जो हैं, जो समझ रखते हैं इस चीज की, वो उसका खंडन करते हैं।
0: जी, जी, जी।
1: वो उसकी जो है मजम्मत करते हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: जी, जी।
1: इंसानियत को इंसानियत से प्यार होना चाहिए और यही इस्लाम सिखाता है।
0: जी जी। तो ऐसे इस्लाम में जो इतने अच्छे संदेश हैं, इतनी अच्छी बातें हैं और उसके मानने और जानने वाले लोग इतना ईमान उस पर रखते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी और आपकी जिम्मेदारी बहुत कुछ बढ़ जाती है कि समाज में अगर कुछ ऐसी बातें जाती हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, तो उसका खड़े होकर के मुकाबला करें, डट करके उनकी उनका खंडन करें, जैसे आपने कहा कि जो जानकार लोग हमें समय समय पर करते हैं। भारतीयता की अगर हम बात करें तो यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की बात हमेशा होती रही है, अमन की बात होती रही है, तो ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति का उसका जो नजरिया है उसको आप कैसे, क्योंकि आप शिक्षक भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो शिक्षा के माध्यम से या छोटी छोटी जो आने वाली नस्लें हैं उनको इस बात को कैसे हम रखेंगे कि भाई इसका जो गलत मायने है वो नहीं निकालना चाहिए और सच्ची बात यह है, तो आप तो शिक्षक भी हैं, कैसे शिक्षा के माध्यम से इसको फैलाया जा सकता है? इसमें
1: जो हमारा अब तक खास तौर से मुस्लिम समुदाय का जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है वो शिक्षा है, कि बच्चे दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच बच्चे होते हैं, मजदूर किस्म का आदमी होता है और वो अपने बच्चों को पढ़ाने पर ज्यादा गौर नहीं देता।
0: जी जी जी।
1: हमने एक तहरीक चलाई इसी तरीके की कि जो बच्चे जो गरीब हैं वो सरकारी स्कूलों में दाखिला लें और जो कुछ ज्यादा खर्च कर सकते हैं वो और जो जिसको बेहतर समझे उस स्कूलों
0: में
1: एडमिशन लें। तो हमने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे उनके जो वालदेन हैं उनको समझाया है कि देखो हम कुछ कह रहे हैं वो कुछ समझ रहे हैं, असल में अनलिटरेट जो व्यक्ति होता है
0: जी, जी।
1: उसके सामने आप कुछ कहो वो कुछ समझता है, उसका अर्थ कुछ और निकालता है।
0: जी जी। समझ का दायरा थोड़ा सीमित होता है।
1: जी, समझ का दायरा सीमित होता है, वो उसको और दूसरे तरीके से नहीं समझ पाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तालीम दी जाए। जब समुदाय में तालीम का प्रचार प्रसार होगा तो ये जो कुरीतियां हैं, जो ये ना समझी है, वो निश्चित ही दूर हो जाएगी।
0: जी जी।
1: और गोष्ठियां भी हम लोग करते हैं, उनको बिठा के समझाते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसका हमें रिजल्ट भी कुछ अच्छा अच्छा नजर आ रहा है।
0: जी,
1: और
0: जी। जी, मतलब आपका मानना यह है कि जो तालीम है वो ही एकमात्र बुनियादी तरीका हो सकता है, जो चाहे वो उसकी समझ के दायरे को बढ़ाने की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे उसको जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर हम उसको आगे लेना ले जाना चाहते हैं तो वो तालीम ही हो सकती है और उसका प्रचार प्रसार ही लोगों को आगे ले जाएगा। ये आप कहना, तो ये जब इस तरह की बातें रखते हैं तो क्या कोई खास तरह का कोई विरोध कोई समाज से या
1: नहीं? नहीं, कभी कभी नहीं हुआ ऐसा विरोध।
0: जी जी। मतलब लोग आज इस बात को समझ रहे हैं कि शिक्षा का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है और अशफाक भाई जैसे लोग समाज में पढ़ लिख करके ही आगे आए हैं, तो ऐसे लोग जब हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें अपने आप छूट जाएंगी।
1: बिल्कुल, जो बिगाड़ होंगे वो खत्म हो जाएंगे और लोगों में समझ का विकास होगा, लोग समझेंगे कि हमको क्या जिंदगी में करना चाहिए। ये जो अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी है वो जिंदगी ऐसे ही कोई बर्बाद करने के लिए थोड़ा ही दी है ना।
0: जी जी।
1: इसको इंसानियत के साथ इंसानियत में काम लाएं, इसको जो है सही कामों में सर्फ करें, यही इस्लाम भी यही सिखाता है।
0: और ये जो ईद का जो पैगाम है शायद मैं समझता हूँ ये भी यही कहता है कि
1: हाँ, ईद का बिल्कुल
0: अमन और भाईचारा हमारा

0: बना रहना
1: बिल्कुल
0: चाहिए
1: बिल्कुल
0: उसमें।
1: बिल्कुल
0: यहाँ कहीं बुनियादी फर्क आता है कि एक दीवान जो एक इसकी सामान्य जो वो है तालीम है, एक दीन की तालीम है, तो कहीं मैं समझता हूँ अगर दोनों को एक साथ लेके चलें तो कोई बुनियादी फर्क तो है नहीं,
1: नहीं
0: एक
1: कुछ
0: दूसरे के
1: नहीं,
0: कोई वो तो है
1: नहीं
0: नहीं,
1: कुछ
0: दोनों को
1: नहीं,
0: एक साथ लेके चला जा
1: बिल्कुल खूब
0: सकता
1: चला जा सकता है। और अब चल रहे हैं, जो मदरसे पहले अरबी और उर्दू पढ़ाया करते थे,
0: है।
1: सिर्फ फारसी पढ़ाया करते थे, उन मदरसों में आज हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस सबकी तालीम दी जा रही है। ये जो मॉडर्न एजुकेशन है वो अब मदरसों में शुरू हो चुकी है।
0: जी। और मैं समझता हूँ कि इसका जो मिला जुला स्वरूप होगा, मिला जुला जो परिणाम होगा, वही शायद हम सबको आगे लेके
1: हाँ बिल्कुल
0: जाएगा।
1: बिल्कुल, लेके
0: तो
1: जाएगा
0: कुछ
1: आगे।
0: और जो सुनने वाले हमारे कुछ कहना चाहें कि
1: जी
0: आपसे
1: हाँ,
0: भाई
1: मैं यही कहना चाहूंगा अपने साथियों से कि जितना हो सके बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दिलाएं, जिससे कि बच्चे भी आगे चलकर के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। और जब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो एक मैं कह रहा हूं कि अगर तालीम जब बच्चा लेगा तो बड़ा होकर अगर मजदूरी भी करेगा तो कायदे से करेगा,
0: जी। और जीवन में कायदा और
1: और
0: अनुशासन आ जाए
1: अनुशासन और कायदा आ जाए तो
0: तो
1: फिर
0: बहुत
1: बात
0: बड़ी
1: बनी
0: बात
1: रहती
0: है।
1: है।
0: तो इस चलते चलते एक शिक्षक समर की बातें तो लोगों ने सुनी, कुछ शायर समर भी कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं कि जो अमन की, ईमान की और दीन की बात मिलजुल के अगर जाती है तो शायद कुछ अच्छा हो देश के लिए, समाज के लिए।
1: भाईचारे पर मैं 4 लाइनें
0: जी
1: कहूंगा
0: बिल्कुल।
1: कि काशी है मेरी आस्था, काबा है मेरी शान,
0: वाह वाह
1: और गीता है मेरी जान, तो कुरान मेरा ईमान, के हिंदू के घर कुरान हो मुसलमान के गीता, हिंदू के घर कुरान हो मुसलमान के गीता, होगा तभी अनेकता को एकता का ज्ञान,
0: वाह वाह
1: होगा
0: वाह,
1: तभी अनेकता को एकता का ज्ञान।
0: बहुत बहुत तो धन्यवाद अशफाक भाई समर
1: जी शुक्रिया सर, बहुत
0: जी,
1: बहुत शुक्रिया।
0: आपने ये जो बात, जो संदेश एक तालीम के बारे में, ईमान के बारे में, दीन के बारे में और इस जमहूरियत के बारे में कि मिलजुल कर अगर हम शायद रहें तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि हमको आगे बढ़ने से रोक सके। मैं समझता हूँ हमारे सुनने वालों को भी अच्छा लगा होगा और आप आए और जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता, इस्लाम की शिक्षाएं और आज के सामाजिक संदर्भ। वार्ताकार मोहम्मद अशफाक समर से भेंट कर रहे थे ओपी सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।
3: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चंदौली और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल, आलेख और स्वर है मनोज त्रिपाठी का।
4: गत दिनों चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने पर तटवर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने नियंताबाद विकास खंड के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कुंडा खुर्द, सुल्तानीपुर, सहजौर और कैली सहित तटीय इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद कर उनका हाल जाना और प्रशासन की ओर से उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने नदियों से हो रहे कटान पर चिंता जताई। इस पर जिलाधिकारी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए अधिशासी अभियंता बंदी से टेलीफोन पर वार्ता कर तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही उप जिलाधिकारी PDDU नगर को एक विशेष जांच कमेटी गठित कर कटान प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय सर्वेक्षण कराने और रोकथाम की ठोस योजना तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को हिदायत दी कि बाढ़ से पूर्व सभी तैयारियां दुरुस्त कर लें, प्रभावित लोगों के लिए भोजन, पेयजल और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पहले से ही सुनिश्चित करें। इसके अलावा मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने तथा उनके चारे पानी का समुचित प्रबंध करने के लिए भी निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी PDDU नगर, खंड विकास अधिकारी नियंताबाद समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बाढ़ की तैयारी को लेकर अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने विस्तार से जानकारी दी कि
5: नदी के जलस्तर को हम लोग सतत उस पर निगरानी रखे हुए हैं। पर डे 2 टाइम हमारी रिपोर्ट आती है और लगातार हम लोग वॉच कर रहे हैं कि जलस्तर का किस लेवल तक पहुंचा है। पूरी तरह सचेत है और हमारी तैयारी है। जितने भी हमारे टेंडर्स होने चाहिए थे वो सब हमने कर लिए हैं। जो भी बाढ़ के दृष्टिगत जन सामान्य को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक होता है उस सभी

0: टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
1: चंदौली में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। राष्ट्रीय गान के उपरांत सभागार में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को अंगवस्त्र एवं पुष्प देकर सम्मानित किया। जनपद में स्वतंत्रता दिवस का उल्लास हर तरफ देखने को मिला। स्कूली छात्रों और युवाओं की टोली के देशभक्ति नारे से पूरा जनपद गुंजायमान रहा। इसके साथ ही पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक, जनपद न्यायालय में जिला जज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल में DRM के साथ ही समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों एवं शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सलामी दी गई। जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र के मारुपुर के नदेसर गांव में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमर शहीद चंदन राय के घर पर 70 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण बतौर मुख्य अतिथि सूबे के श्रम एवं सेवा नियोजन विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सीमा की रक्षा करने वाले जवानों के कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। कैबिनेट मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई व शुभकामना देते हुए लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के उद्बोधन का जिक्र करते हुए युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में जुड़ जाने की अपील की। कैबिनेट मंत्री ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ कर यात्रा में शामिल होकर युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया। तिरंगा यात्रा में युवाओं ने देशभक्ति के नारे लगाकर लोगों में जोश भर दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने जनपद के अमर शहीदों के परिजनों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश विश्व पटल पर मजबूत ताकत के रूप में उभरा है। विगत दिनों राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने चंदौली के चहनिया विकास खंड में स्थित महालक्ष्मी मरौड़ी देवी धाम के सुंदरीकरण का शिलान्यास वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से किया, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत 192.58 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रस्तावित परियोजना में मंदिर परिसर में बहुउद्देशीय हॉल, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, सुलभ प्रसाधन, पेयजल व्यवस्था, साइनेज, यात्री बेंच, लैंडस्केपिंग, सोलर सिस्टम, बोरिंग के साथ ही अन्य आवश्यक विकास कार्य कराए जाएंगे। राज्यसभा सांसद ने बताया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि
2: ये जो 1,92.58 लाख रुपए धन आवंटित हुआ है यहाँ के सुंदरीकरण के लिए, वो उसमें बहुउद्देशीय हॉल से लेकर सोलर सिस्टम, बेंच की व्यवस्था, सुंदरीकरण और सुलभ प्रसाधन और अन्य कई चीजें इसमें शामिल है। मुझे उम्मीद है कि काम को होने के बाद न सिर्फ यहाँ इस गांव वासियों को, न सिर्फ चंदौली के लोगों को, बल्कि जो आसपास के जिले के लोग आते हैं उनको बड़ा ही यहाँ सुविधा मिलेगी, बड़ा ही लाभ मिलेगा।
3: चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार का।
4: सावन माह में ललितपुर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रंगा नजर आ रहा है। जिले के शिव मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन और धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। पाली के नीलकंठेश्वर भगवान मंदिर, तालबेहट के हजारिया देव मंदिर, चंडी माता मंदिर और तुमन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त जल अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं कांवड़ यात्री पवित्र जल लेकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं। ललितपुर में चाइल्ड हेल्प लाइन की तत्परता से 1.5 साल की बच्ची को उसके परिजनों तक सकुशल पहुंचाया गया। बच्ची 18 अगस्त को पनारी रोड के पास मिली थी। सूचना पर चाइल्ड हेल्प लाइन PRB पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात बच्ची को परिजनों की तलाश पूरी हुई और उसे सुरक्षित परिजनों के सपोर्ट कर दिया गया। जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक में शहरिया और गरीब परिवारों के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सरकारी योजना का लाभ पात्र लोगों तक धरातल पर पहुंचे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को घर घर जाकर पात्र बच्चों और गर्भवती महिलाओं को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए। मेहरौनी क्षेत्र में खराब प्रगति पर संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। कृषि विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत बुकिंग कराने वाले किसानों के लिए ई लॉटरी 21 अगस्त को होगी। जिला स्तरीय ई लॉटरी दोपहर 12 बजे विकास भवन सभागार में आयोजित की जाएगी। लक्ष्य से अधिक बुकिंग वाले कृषि यंत्रों के लिए ई लॉटरी के जरिए लाभार्थी किसानों का चयन होगा। बारिश के बीच शहर में जल भराव की समस्या को लेकर नगर पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सिविल लाइन आजादपुरा, तालाबपुरा और लक्ष्मीपुरा समेत कई इलाकों का निरीक्षण किया। नालों पर अतिक्रमण और

0: में गोबर, पॉलीथिन व घरेलू कचरा डाले जाने से जल निकासी बाधित मिली। संबंधित लोगों से अभिलेख मांगे गए। प्रशासन का उद्देश्य जल भराव की समस्या कम करना और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। जिलाधिकारी की जानकारी दी।
1: काफी सारे सड़कें मरम्मत हो गई है और इसको युद्ध स्तर पे पूरी सूची बनवा ली गई है कि सड़कें कहाँ कहाँ पे पाइपलाइन बिछने के बाद अभी मेंटेनेंस बाकी है, तो काफी तेजी से काम चल रहा है। जो बचे हुए हैं उसको भी जल्दी से जल्दी काम पूरा करा।
0: शिक्षा विभाग को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स और जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। परिषदीय विद्यालयों को 19 मूलभूत सुविधाओं से 100% संतृप्त करने के निर्देश दिए गए। बारिश के मद्देनजर स्कूलों के संपर्क मार्ग, परिसर साफ सफाई और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने पर जोर दिया गया। साथ ही 6 से 14 वर्ष तक के किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं रहने के निर्देश दिए गए। विद्यालयों में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। आपदा के समय प्राथमिक सहायता, आपातकालीन स्थिति से निपटने और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्राथमिक उपचार के बारे में बताया। अधिकारियों ने नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल कराने पर जोर दिया। ललितपुर रेलवे स्टेशन पर GRPO RPF की संयुक्त टीम ने यात्रियों के मोबाइल चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से सैम सैमसंग और वीवो कंपनी के 2 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल चोरी करता था और उन्हें बेचने की फिराक में था। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उधर आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी की जन सुनवाई जारी है। कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के साथ ही फॉलो और मॉनिटरिंग के निर्देश दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ललितपुर में सावन की भक्ति के साथ प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हैं। बच्चों की सुरक्षा, पोषण और शिक्षा से लेकर आपदा प्रबंधन तक प्रशासन सक्रिय है। वहीं बारिश के दौरान जलभराव की समस्या के समाधान, किसानों को कृषि नियंत्रणों का लाभ दिलाने और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी कार्रवाई जारी है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।

संतुलित आहार के जो अभिन्न अंग हैं वो है हमारे खाद्य पदार्थ, सब्जियां, दूध वगैरह, उन जिन सबका हम सेवन करते हैं। लेकिन आजकल पर्यावरण दूषित होने की वजह से वो आहार संतुलित नहीं हो पाता है। उसकी वजह अत्यधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल, उसकी वजह से सब्जियों में, खाद्य पदार्थों में बहुत सारी मिलावट हो जाती है, जिसकी वजह से वो आहार पूरी तरह पोषित ना कर उसके साथ में बहुत सारी बीमारियां भी हमारे शरीर में अंदर आ जाती हैं। ठीक इसी तरह स्वच्छ पानी की भी आजकल बहुत कमी हो गई है। चूंकि पर्यावरण को हमने ही गंदा किया है, इसलिए वही दूषित पानी हमें उसका प्रतिफल के रूप में मिलता है, जिसकी वजह से हजारों बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो अगर हमें संतुलित आहार चाहिए तो हमें सबसे पहले हमारे पर्यावरण को संतुलित करना पड़ेगा, जिसका तरीका है कि हम अपनी आबोहवा को स्वच्छ रखें, जितना हो सके पानी को स्वच्छ रखें, पानी को बचा के रखें, उसका अत्यधिक उसको वेस्ट ना करें, मिट्टी को गंदा ना करें, प्लास्टिक जैसी चीजों का इस्तेमाल जितना हो सके उसे कम करें या बंद करें, कीटनाशकों के इस्तेमाल पर भी रोकथाम लगनी चाहिए, ताकि जो हम आहार ग्रहण कर रहे हैं उसमें वो सब जहर रूप रासायनिक पदार्थ हमारे सब्जियों में, अनाज में, दालों में मिलकर हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं। संतुलित आहार की अगर हम बात करते हैं तो संतुलित आहार का अभिन्न अंग है स्थूल पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। स्थूल पोषक तत्व में हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, और सूक्ष्म पोषक तत्व में हमारे सम्मिलित हैं विटामिन्स, मिनरल और स्वच्छ पानी और कुछ मात्रा में फाइबर। इन सब का संतुलित सम्मिलित रूप ही हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। हमको दिन भर में 5 से 12 मात्रा अनाज चाहिए, 1 से 3 मात्रा दालें चाहिए, 3 से 4 मात्रा सब्जियों की चाहिए, 3 से 4 मात्रा फलों की चाहिए।

एक से दो मात्रा बीज की या तेल की चाहिए और एक से दो मात्रा दूध या दूध से उत्पन्न पदार्थों की चाहिए। अगर संतुलित आहार पर ध्यान दें तो इनमें से अधिकतर पोषक तत्व हमें हमारी धरती माँ या यूं कहें कि पर्यावरण मिट्टी से मिलते हैं। चूंकि मिट्टी को दूषित होने की वजह से वही विटामिन और मिनरल्स की कमी मिट्टी में अगर होती है तो वही कमी आपके शरीर में आ जाती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा जहाँ पे ये फसलें बोई जा रही हैं वो पर्यावरण कैसा है, क्योंकि अगर मिट्टी ही सही नहीं है तो उससे उत्पन्न खाद्य पदार्थ में भी वो कमी होगी और फिर वही कमी आपके शरीर में भी आएगी। विटामिन्स और मिनरल्स की अगर हम बात करें तो विटामिन दो तरह के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल या एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल होते हैं हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वाटर सोल्यूबल जो होते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन की अलग अलग तरह की मात्रा हमें दिन भर में अलग अलग पदार्थों से मिलती है। इसी के अलावा मिनरल्स जो होते हैं हमारे मेटल्स, जिंक है, सेलेनियम है, मोलिब्डेनम है, इन सब की हमें बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन आजकल पर्यावरण दूषित होने की वजह से जो धातु नुकसानदायक है उसकी मात्रा हमारे खाने में ज्यादा होती है, जैसे लेड की मात्रा ज्यादा होती है, प्लम्बम या मरकरी की मात्रा ज्यादा होती है और जो आवश्यक तत्व होने चाहिए उनकी मात्रा कम हो जाती है। जिस गति से जंगलों का नाश हो रहा है उसके साथ साथ आने वाले पानी के बहाव के साथ जो उसके पोषक तत्व हैं वो भी बहकर सागर में मिल जाते हैं। उस वजह से जो फसल पैदा होती है उस फसल में उपयोगी और आवश्यक तत्वों की धीरे धीरे कमी होने लगती है और फिर वही कमी खाद्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में होती है और जो हजारों तरह की नई बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखें जिस गति से आजकल डायबिटीज, मोटापा और अस्थमा की जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं, उसकी मुख्य वजह यही है कि उनसे उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों में भी जो आवश्यक तत्व होने चाहिए सूक्ष्म रूप में उन सब की कमी है और जो जहरीले तत्व हैं अनजाने में हमारे को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए अगर आप देखें तो एक संतुलित आहार के लिए एक संतुलित वातावरण का होना या पर्यावरण का होना अत्यंत आवश्यक है।

आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम आबोहवा। विषय था संतुलित पर्यावरण, संतुलित पोषण। आलेख और वाचन डॉक्टर पंकज वर्मा का था। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

शिक्षा, सूचना, मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, जब दिन की शुरुआत अच्छी अच्छी बातों के साथ, सकारात्मक बातों के साथ की जाए तो निश्चित रूप से इसका हमारे जीवन पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे आचरण पर बड़ा सकारात्मक असर होता है।

सकता है और हमें जीवन को एक नए ढंग से एक सकारात्मक सोच के साथ जीने की प्रेरणा भी मिलती है। तो हम भी कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे ही सुविचार के साथ करना चाहेंगे और हमारा आज का सुविचार है कि छोटे प्रयास बड़े परिणाम। मित्रों, अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए बहुत बड़े काम करने होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम के साथ होती है। एक एक बूंद मिलकर सागर बनाती है, एक एक ईंट से एक भव्य भवन बनकर तैयार हो जाता है और एक एक दिन की मेहनत से किसी व्यक्ति को उसकी मंजिल हासिल हो जाती है। यदि एक विद्यार्थी प्रतिदिन केवल एक घंटा मन लगाकर पढ़ाई करे तो वर्ष के अंत तक उसका ज्ञान कितना बढ़ जाएगा, यानी उसका ज्ञान कोष बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वो अपनी परीक्षाओं में सफलता की ओर अग्रसर होता है। इसकी कल्पना हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे छोटे प्रयास ही नहीं करें तो हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। यदि कोई व्यक्ति रोज सिर्फ आधा घंटा व्यायाम करे तो उसके स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है, उसका शरीर धीरे धीरे सुडौल और ताकतवर होता जाता है। यदि हम प्रतिदिन एक पौधे को पानी दें और उसकी देखभाल करें तो वही पौधा कुछ वर्षों बाद घना पेड़ बनकर छाया देता है, फल देता है और स्वच्छ हवा देता है। जीवन में छोटे छोटे से अच्छे कार्यों से एक बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, सड़क पर कचरा ना फैलाना, पानी और बिजली की बचत करना या फिर ट्रैफिक नियमों का पालन करना और अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, ये सब छोटे प्रयास हैं, लेकिन इनका प्रभाव हमारे पूरे परिवार पर, हमारे पूरे समाज पर पड़ता है। और इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू हुए हैं। किसी ने एक विचार रखा, किसी ने पहला कदम उठाया और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, परिणाम स्वरूप समाज में नई सोच और नई दिशा का जन्म हुआ। मित्रों, याद रखिए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों का ही परिणाम होती है। इसलिए यदि कभी आपको लगे कि आपका प्रयास बहुत छोटा है तो निराश मत होइए, हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल की ओर निकट ले जा रहा है। छोटे छोटे कदमों से ही लंबी लंबी यात्राएं पूरी होती हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है और छोटे प्रयास ही एक दिन बड़े परिणाम बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं। तो इसलिए आप अपने छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, आप ज़रूर अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे।

0: दोस्तों, जीवन में अपने लक्ष्य तक, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य भी काफ़ी आवश्यक है। और अच्छा स्वास्थ्य हमारे खान पान से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए खाता है, पीता है, और स्वस्थ व निरोगी रहने के लिए शुद्ध और मिलावट रहित खान पान उतना ही आवश्यक है। लेकिन जब कभी तीज त्यौहार आते हैं तो बाजार में खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है, और जब इनकी मांग बढ़ती है तो इनमें मिलावट की संभावनाएं भी रहती हैं। इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं, कार्यवाही की जाती है, और मिलावट के मामले भी सामने आते हैं। लेकिन इसमें आम उपभोक्ता की, आम नागरिकों की जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। आज इसी विषय को लेकर हमारे साथ हैं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग मथुरा से सहायक आयुक्त श्री जतिन कुमार सिंह जी।
1: सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम ब्रज दर्पण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।
2: जी नमस्कार, सभी श्रोताओं और आप सभी आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि त्योहारों पे थोड़ी मिलावट की आशंका बढ़ जाती है, जिसके प्रति खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग मथुरा बिल्कुल सतर्क है और एकदम पैनी निगरानी बनाए हुए हैं। और हमारे द्वारा टीमों को गठित कर दिया गया है, जो कि विभिन्न बाजारों में और कस्बों में जाकर निरीक्षण करेंगी, और दुकानों का निरीक्षण में अगर कहीं भी कोई संदिग्ध एक्टिविटी हमें मिलती है तो उस पर हमारी टीम द्वारा सैंपल सीजर और आगे अगर कुछ केमिकल पाए जाते हैं तो उसके आधार पर उस पर BNS की धाराओं में हम कार्रवाई भी की जाएगी। और जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, पिछले कुछ दिनों से विभाग द्वारा बहुत ही अच्छी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें हम लोगों ने पनीर की डेयरियों पे, पेड़ों पे, सॉस पे कार्रवाई की, और जिसमें हमने करीब 5,04,000 किलो पनीर, 10,000 लीटर दूध और 900 किलो पीड़ा, जो अनुमानित कुल लगभग 40 लाख रुपए थी, उसको नष्ट भी कराया गया था। और कई डेयरियों पे हमें कुछ अपमिश्रक जैसे टीनोपाल, रानीपाल और कोई वाइटनिंग एजेंट मिला, रंग कार्ड, सेफोलाइट, तो जहाँ हमें जो ऐसे हानिकारक केमिकल हमें जहाँ मिले थे तो वहाँ पे BNS की धाराओं में, सुसंगत धाराओं में उन पर प्राथमिकता भी दर्ज कराई। अभी तक हम लोग 4 लोगों पे, डेयरी वालों पे, हम FIR भी दर्ज करा चुके हैं। और जो भी जहाँ जैसे ये केमिकल पाए गए और जो दूध और दूध पदार्थ को जैसे कि है कि हमारे एक्ट में उसको अपने मूल रूप में बेचने के लिए हमारे यहाँ अलाउड है। और अभी एक 15 अगस्त को हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा एक आदेश भी पारित किया गया है, अगर दूध और दूध पदार्थ जैसे आपका पनीर, खोया, घी, उसको अगर मूल रूप के

0: अलावा उसमें किसी प्रकार की विजातीय वसा या कोई हानिकारक केमिकल, आपका सोयाबीन और भी ऐसे एमल्सीफायर सर्फेक्टेंट मिला के अगर उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है उसके मूल रूप से और उसको आम जनमानस के लिए अगर बिक्री की जा रही है तो उसमें बड़े कड़े नियम बनाए गए हैं। अगर कोई ऐसी डेयरी फर्म अगर ऐसा करता पाया जाता है तो वहाँ पे नमूना तो संग्रहण किया जाएगा, उसके अलावा जो भी हुआ उसका माल होगा सीज किया जाएगा, जो विनष्टीकरण होगा वो किया जाएगा और उनमें BNS की धाराओं में FIR भी की जाएगी अगर कोई केमिकल की वहाँ हमें मौके पर पाया जाता है। तो एक यहाँ मथुरा जनपद के जितने डेयरी संचालक हैं जो कि पनीर खोया का निर्माण करते हैं तो उनसे एक अनुरोध है कि वो जो दूध और दूध पदार्थ बनाए उसको अपने मूल रूप में बनाए, उसमें किसी प्रकार की विजातीय वसा कोई केमिकल उसका प्रयोग कदापि ना करें, क्योंकि अगर ऐसा प्रयोग करेंगे और मौके पर अगर निरीक्षण में पाया जाता है तो फिर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह यहाँ मथुरा के जो हमारे ब्रजवासी के आम जनमानस से हमारी एक अपील भी है कि अगर आपके आसपास आपको ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधियों के बारे में अगर जानकारी होती है या सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत आप हमें चाहे फ़ोन करके चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सूचना दे सकते हैं और जो सूचना हमें प्राप्त होगी वो गुप्त रखी जाएगी और हम लोग उसका कहीं डिस्क्लोज नहीं होगा और जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त है और उन पर हम लोग कठोर कार्रवाई कर सकेंगे।
1: जैसा कि आपने बताया कि जो दुग्ध पदार्थों में टिनोपाल जैसी जिनका इस्तेमाल विशेषकर कपड़ों की धुलाई आदि में होता है, इस तरह के जो हानिकारक जो केमिकल मिल रहे हैं तो इसका बहुत विपरीत असर पड़ता है लोगों के स्वास्थ्य पर। जहां इन खाद्य पदार्थ बच्चे भी सेवन करते हैं, बड़े लोग भी सेवन करते हैं, जिनकी वजह से वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, तो इस तरह के अपराध को आप किस तरह से देखते हैं?
0: जी, ये बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध है जो कि जनता के स्वास्थ्य के साथ ऐसे केमिकल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना के कार्रवाई की जा रही है। उन पे विभाग द्वारा नष्टीकरण जब्तीकरण के अलावा उन पे BNS की धाराओं में उस पे FIR करा के और उनको जेल भेजा जा रहा है और ऐसे जो केमिकल का प्रयोग करके बना रहे हैं उन पे कहीं भी कोई रिहायत नहीं दी जा रही विभाग की तरफ से, कड़ी कार्रवाई उन पे हो।
1: अभी हाल ही में जो राया में दूध का जो टैंकर पकड़ा गया और छाता में जो काफ़ी मात्रा में जो पनीर पकड़ा गया, ये दो बड़ी कार्रवाई की गई, तो इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: जी, जैसे कि हमने बताया कि हमें इनपुट प्राप्त होते हैं कहीं से कि कहीं ऐसा कोई डेयरी चल रही है, कहीं चोरी छुपे जो कि गलत काम कर रहे हैं, तो ग्राम नगला उटावर को मैं टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ बाहर से दो चार दिन से अभी कोई डेयरी संचालन किया जा रहा है जो कि उसकी गतिविधियां संदिग्ध है। टीम वहां मौके पर पहुंची और मौके पर जब वहां पहुंचे तो वहां देख के वहां पाया गया कि परिसर में स्किम मिल पाउडर, रिफाइंड केमिकल जो टिनोपाल, रानीपाल, आपके सेफोलाइट, सोयाबीन, इनका प्रयोग करके पनीर का निर्माण किया जा रहा था। तो टीम ने तुरंत मौके पर पनीर का संचालन बंद कराया और वहां जो जितने भी वहां खाद पदार्थ और अपमिश्रक थे सबका नमूना संग्रहण कर जाँच हेतु तुरंत प्रयोगशाला प्रेषित किए गए। वहाँ जो दूध था 3000 लीटर उसको नष्ट कराया गया, जो पनीर था कम से कम 500 किलोग्राम लगभग उसको JCB के माध्यम से गड्ढा खुदवा के उसको पूरा नष्ट कराया गया और जितने जो स्किम मिल पाउडर, सोयाबीन, रिफाइंड थे उन सबको सीज कर दिया गया और जो वहाँ डेयरी संचालक था जो कि मूलतः पलवल हतीन का रहने वाला था उसके खिलाफ शेरगढ़ थाने में प्राथमिकता दर्ज कराई गई।
1: जैसा कि अब तीज त्यौहार आ रहे हैं तो मिठाइयों की बिक्री काफ़ी बढ़ जाती है और ख़ास करके अब रक्षाबंधन आ रहा है तो घेवर बाज़ार में बहुत बिक रहा है, इसको लेकर भी नज़र रखी जा रही है?
0: जी, जैसे आगामी पर्व हैं, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, उसके लिए विभाग अपनी तैयारी कर चुका है, इनपुट जुटाया जा रहा है, अभी सूचना प्राप्त की जा रही है कि जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामग्री यूज़ करके जो लोग बनाते हैं या जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे पूरी नज़र बनी हुई है और जो भी मथुरा शहर के जनपद के विभिन्न कस्बे हैं, गोवर्धन है, बरसाना है, वृंदावन है, मावन है, राया है, माट है, सब जगह टीमें जाएंगी और वहाँ जा जा के वहाँ दुकानें, गोदाम सबका निरीक्षण किया जाएगा और कोई संदिग्ध हमें वहाँ अगर कोई आपत्तिजनक चीज़ें पाई जाती हैं तो नमूना भरने के साथ साथ जो वहाँ और कठोर कार्रवाई भी होती है वो उन पे की जाएगी। जैसा कि अभी कल भी हम लोग, हमारी टीम मौके पे रास्ते में चेकिंग कर रही थी तो एक दूध का टैंकर हमें मिला जिसको चेक किया गया तो वो अपने दस्तावेज दूध के क्रय विक्रय के नहीं दे पाया, संडे होने पे

0: जब उसके दूध को खुलवा के चेक किया गया तो उसमें लगा कि गुणवत्ता सही नहीं है। फिर वहाँ बगल में एक डेयरी पे जाके उसकी दूध की चेकिंग करवा गई तो उसमें पुष्टि हुई कि उसमें स्टार्च की पुष्टि हुई और SNF और फैट भी कम था। जब हमें ये पुख्ता हो गया कि दूध में गुणवत्ता सही नहीं है, मानकों के अनुसार नहीं है, तो टीम द्वारा वहाँ सैंपल लेने के उपरांत जो 2000 लीटर दूध था उसको वहाँ नष्ट करा दिया गया।
1: जब इस तरह की खबरें आम जनमानस में जाती

0: जब इस तरह की खबरें आम जनमानस में जाती हैं तो लोगों के मन में एक चिंता उत्पन्न होती है कि आखिर हम कैसे पहचाने कि कौन से खाद्य पदार्थ सही हैं। अधिकांश लोग डेयरी उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं दूध के रूप में, पनीर के रूप में, मावे के रूप में, तो कैसे इन खाद्य पदार्थों की पहचान कर सकते हैं?
1: जी, इसके लिए ये है कि आम जनमानस से हम ये अपील करेंगे कि जो आप प्रतिष्ठित दुकानदार हैं, जो विभाग के लाइसेंस लिए हैं, जो आपको बिल पे सामान देते हैं, तो आप उनसे ज़्यादा क्रय करें। और जो पैकेजिंग के दही है, पनीर है, प्रोडक्ट हैं, दूध हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं। उसमें आप पैकेजिंग देख सकते हैं कि वो कब निर्माण हुआ है, कहाँ से निर्माण हुआ है, उस पर वो कितना फैट का है, कितने SNF का है। ये सब चीज़ें ग्राहक जागरूक होकर खरीद सकता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रथम दृष्टियाँ आप उसकी जांच जैसे कर सकते हैं, जैसे अभी इस समय खोए का ज़्यादा डिमांड रहती है, तो खोए में बहुत जगह स्टार्च मिलावट की जा सकती है। तो स्टार्च का आप जो अगर आम ग्राहक है उसको ही जांच कर सकता है। एक उसमें सिंपल टेस्ट होता है कि आप टिंचर आयोडीन या आयोडीन आपको कहीं मिल जाती है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आप उसमें स्टार्च की कुछ बूंदें डालेंगे तो जो असली खोया हुआ तो नीला रहेगा, लेकिन जो जिसमें मिलावट होगी स्टार्च की वो गहरा एकदम बैगनी टाइप और काला रंग का होने लग जाएगा। तो वो संकेत देता है कि इसमें खोए में मिलावट है। ऐसे ही आप दूध के लिए भी आप जब चेक करते हैं तो दूध में पानी की मिलावट है कि क्रीम खिंचा हुआ है, तो उसको आप कांच के सतह पे रखेंगे बूंद को, तो अगर वो प्योर दूध होगा तो पीछे अपने एक टेल छोड़ जाएगा, लेकिन अगर उसमें मिलावट है पानी की या उसमें फैट कम है तो वो बूंद बहुत जल्दी लुढ़क जाएगी और वो कोई पीछे अपनी कोई टेल नहीं छोड़ेगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि इसमें कहीं फैट के साथ छेड़छाड़ की गई या पानी मिलाया गया। तो ये कुछ त्वरित टेस्ट है जिससे हम लोग जान सकते हैं, और बाकी जो डिटेल एनालिसिस के लिए तो लैब से हम लोगों को पुष्टि करानी होती है।
0: आम जनमानस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, आम जनमानस के लिए यही संदेश है कि विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और विभाग की ये मंशा है कि गुणवत्तापूर्ण सुरक्षित खाद्य पदार्थ पब्लिक को उपलब्ध हो। और कहीं भी अगर आपको संदेह होता है कि कोई गतिविधियाँ हो रही हैं, कोई गलत काम हो रहा है, तो विभाग को आप जरूर सूचित करिए। और ये भी अपील रहेगी कि ज़्यादातर आप जो सामान लें वो बिल पे लें और देख परख के लें, उसको चेक करके लें, पैकेजिंग को अच्छे से देख लें, उस पर सारे वहाँ जो पैकेजिंग के वो मानक नियम पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तभी आप उसको सामान को खरीदें।
0: उसमें ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति सस्ते खाद्य पदार्थ अगर बेच रहा है तो मिलावट की आशंका हो सकती है।
1: इसमें आपने जो बताया तो इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि एक सीधा सा चीज़ है कि इस समय जो दूध की रेट है वो 60 से 70 रुपए लीटर के करीब है गांव और शहरों को मिला के, और एक किलो पनीर या खोया बनाने में अनुमानित 4-5 लीटर की हमें आवश्यकता होती है। और फिर जब वो बनाता है तो उसका ईंधन लगता है, लेबर लगता है, ट्रांसपोर्ट लगता है, तो वो कॉस्ट जोड़ के आपको 350 के करीब भी कोई भी होगा उससे नीचे वो देगा तो उसको वो नहीं दे पाएगा। और कोई आपको अगर कोई पनीर 200 रुपये 250 रुपये या खोया दे रहा है तो संभवतः उसके साथ मिलावट या छेड़छाड़ की गई होगी। तो इसका भी ग्राहक जागरूक होकर चीज़ें इसको समझ सकते हैं कि सस्ते के चक्कर में जाना ना पड़े, अच्छी और गुणवत्ता का खरीदें।
0: श्रोताओं, हमारे साथ रहे खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से सहायक आयुक्त श्री जतिन कुमार सिंह जी। और जैसा कि बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न तरह के अभियान चलाकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन आम जनमानस को भी इसमें कुछ बातों का ध्यान रखते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपने हमारे श्रोताओं के साथ ये जानकारी साझा की और उनको जागरूक भी किया, इसके लिए धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।

0: जैसा कि आज बारह वफात यानी मिलादुन नबी का पावन पर्व है और इसको इस्लाम धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, इस पर्व का अपना क्या महत्व है और इसके पीछे क्या इतिहास है, इस बारे में हम जानते हैं शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा के सचिव श्री तनवीर अहमद जी से। सबसे पहले आपको बारह वफात की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: शुक्रिया बहुत बहुत। ईद मिलादुन नबी की सभी देशवासियों को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का पैदाइश का दिन है और ये इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से रबी उल अव्वल जो हमारा माह है चंद्रमा के हिसाब से 12 तारीख को मनाया जाता है। 12वें दिन ये रबी उल अव्वल जैसे हिंदी में जनवरी फरवरी होता है, ऐसे हमारे यहाँ इस्लामी कैलेंडर मुहर्रम से पहला महीना शुरू होता है तो ये तीसरा महीना रबीउल अव्वल कहलाता है। इसकी 12वीं तारीख जो होती है चांद की, उस तारीख को 12वीं शरीफ मनाया जाता है। करीब 570 ईस्वी पूर्व आपकी पैदाइश हुई और एक इस्लाम में हमारे ये आखिरी पैगंबर हुए। सच्चाई, ईमानदारी और भाईचारे का रास्ता उन्होंने दिखाने का काम किया और लोगों को जुड़ने का काम किया, इस्लाम की अच्छाइयों को बताने का भी काम किया और बुराइयों को मिटाने का काम किया। कुरान पाक भी अल्लाह ताला ने उन पर नाजिल किया और एक अच्छा मिसाल और मैं पेश करना चाहता हूँ कि जब वो वहाँ गलियों से निकला करते थे तो एक ख्वातीन जो है महिला हैं उनको उनसे कुछ पता नहीं क्यों नाराजगी रहा करती थी और वह जानबूझकर अक्सर ऊपर से कूड़ा डालती थी जिससे कुछ कूड़ा उनके ऊपर भी आ जाता था, लेकिन वो बड़ी शांत भाव से बहुत सुकून के साथ निकल जाते थे, उन्होंने कभी भी उनका विरोध नहीं किया। लगातार जब 4-5 दिन वो महिला नहीं दिखी, उन्होंने कूड़ा नहीं डाला तो उन्हें बड़ी फिक्र हुई। उन्होंने लोगों से पूछा भी क्या बात है, क्यों ये महिला कहाँ है। उन्होंने कहा वो बहुत बीमार है, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो वो उनको देखने पहुँचे, उनका हालचाल लगाने पहुँचे, उनकी हक में दुआ की कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं। तो उसके बाद उनको महिला वो बहुत ही अफसोस भी हुआ अपने करने पर। तो उसका ये संदेश जाता है कि अगर कोई आपके साथ बुराई भी करता है, कोई आपका अच्छाई का मार्ग रोकने का प्रयास करता है, आप सदैव उसकी भलाई के लिए लगे रहें और अपने अच्छाई के मार्ग से ना हटें और अच्छाई का मार्ग ना छोड़ें। आज के इस पावन पर्व पर आज के इस बहुत बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में सभी मुस्लिम समाज के लोग और भी समाज के लोग भी इसमें शामिल होते रहे हैं। पर्व में रोशनियां करते हैं अपने घरों में, पकवान बनते हैं, गरीबों में तवरुक बांटा जाता है, सुबह से ही भंडारे और प्रसादों का आयोजन हो रहा है। तो लोग खुशी खुशी इस पर्व को, इस त्यौहार को मनाते हैं। रोशनियां होती हैं, झंडे वगैरह लगाए जाते हैं, नए नए लिबास कपड़े पहने जाते हैं और कुरान पाक की तलावत की जाती है और उनके बताए हुए और उनके जो संस्मरण हैं, उनके जो काम हैं उनको भी जनता को बताया जाता है और नाते कलाम, एक मुशायरा नाते कलाम धार्मिक टाइप के होता है, मस्जिदों में और जगह जगह उनकी खूबियों को बताया जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा दिन है और दोनों ही दिन है। आज आज के दिन उनकी पैदाइश है और 12वें ही दिन आज की तारीख में उनकी वफात है। वफात का मतलब इस दुनिया से पर्दा कर गए और इंतकाल फरमा गए इस दुनिया से। तो एक ही दिन जो 12वें शरीफ का दिन है, ईद मिलादुन नबी, आज के दिन पैदाइश भी है 12 वफात को और 12 वफात को उनका इंतकाल भी है। तो ऐसे जिन्होंने इस्लाम को ऊंचाइयों पर ले गए, धर्म का काम तो उन्होंने किया ही क्या, लेकिन लोगों को, भाई से भाई को, पड़ोस से पड़ोसी को, दिल से दिल को मिलाने का काम किया लोगों

0: वो सच्चाई के मार्ग पर ले आने का काम किया और भाईचारा और प्रेम का जो संदेश दिया वो आज पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया के लोग उसको अपना रहे हैं।
1: आज इस विशेष अवसर पर क्या शाही ईदगाह मस्जिद में कुछ विशेष आयोजन किए जा रहे हैं?
0: हाँ, शाही मस्जिद ईदगाह जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह सजाई गई है, चौराहों पर भी बहुत भव्य सजावट है और नमाज तो अदा की जाती है, नमाज के साथ साथ नाते कलाम जो हमारे विद्वान मौलाना हैं, इमाम साहब हैं और तमाम लोग जो दीन धर्म के लोग हैं और आम जनमानस बड़ी संख्या में आ रहा है और उनके जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब का जो पैदाइश का दिन है उनके रोशनी डालने काम कर रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग को बताने काम कर रहे हैं और उनकी शान में जो भी नाते कलाम की तलावत होती है वो सब बड़े रूप में बड़ी शक्ल में की जा रही है। आप देख रहे हैं जो है जश्न का माहौल है, जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, तवर्रुक बांटा जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग जुलूस के रूप में भी यहाँ निकल रहे हैं, नए नए लिबास पहने हुए हैं लोग, तो ये बड़े जश्न का माहौल है आज। तो ये हमारे लिए बड़े फख्र की बड़े गर्व की बात है कि आज हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगम्बर मोहम्मद साहब का पैदाइश का दिन मना रहे हैं और एक बार पुनः अपनी तरफ से और सभी समाज की तरफ से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और यही उम्मीद यही कामना कि हम सब भाईचारे से रहें, आपसी मेल भावना से रहें, हिंदुस्तान में अमन चैन कायम रहे और जो उनके बताए हुए मार्ग हैं, जो उनके बताए हुए निर्देश हैं, जो उपदेश हैं उन पर सच्चाई से चलने का काम करें।
2: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमने उठा लिया है अखबार और साझा कर लेते हैं कुछ खास खबरों को आपके साथ। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर कान्हा की नगरी भक्ति संगीत और संस्कृति के रंग में सरोवर नजर आएगी। इस दौरान ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा 2 से 4 सितंबर के मध्य पांचजन्य प्रेक्षागृह में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें कन्हैया मित्तल समेत कई प्रख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। और इसी के साथ एक और खबर है, जनपद में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क रोजगार योजना के तहत लोक निर्माण विभाग यानी PWD की 31 सड़कों के नवनिर्माण को सोमवार को स्वीकृति मिल गई है। और अब बात कर लें आज के दिन विशेष की, तो श्रोताओं आज की तिथि 26 अगस्त इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज ही के दिन सन 1920 में अमेरिका में 19वां संशोधन लागू हुआ था। ये संविधान संशोधन था जिसके तहत अमेरिका में महिलाओं को मतदान करने का कानूनी अधिकार मिला था। और आज ही के दिन सन 1955 में इतिहास में पहली बार किसी टेनिस मैच जो कि US और ऑस्ट्रेलिया के बीच डेविस कप था, इसका टेलीविजन पर रंगीन प्रसारण किया गया था। और आज ही के दिन सन 1910 में मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा का जन्म तत्कालीन ओटोमन साम्राज्य जो अब उत्तर मैसेडोनिया में है वहां उनका जन्म हुआ था। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे फिर किसी नई जानकारी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे जितेंद्र सिंह और कार्यक्रम संयोजन किया ओपी सिंह ने। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म राम लखन में, और आइए सुनते हैं अलका याग्निक को, फिल्म का नाम है जख्म।

सुरेश वाडेकर माल्याधीर को भी आपने सुना फिल्म चांदनी में, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म मैंने प्यार किया में।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म मैंने प्यार किया में, और एक सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, इस बुधवार यानी कि आज दिनांक 26/8/26 को शाम 6:50 से 30 मिनट अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है खरीफ की खड़ी फसलों में देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह, कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, खरीफ की खड़ी फसलों जैसे धान, बाजरा, मक्का, कपास, तलहनी एवं तिलहनी फसलों में लगने वाले रोग एवं कीड़ों से बचाव के उपाय और खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं खाद उर्वरक की व्यवस्था पर जैसे मुद्दों पर पूछिए सवाल हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह, कृषि वैज्ञानिक से। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565 कोड लगाकर 2530135 पर फोन करके अथवा हमारा मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे ही बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय होगा आज शाम 6:50 से 7:20 के मध्य। सूचना समाप्त हुई और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत। गीत का आनंद इस समय आप आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से ले रहे हैं।

कविता सुब्रमण्यम, अलका याग्निक, अमित कुमार और साथियों को अभी आपने सुना कभी खुशी कभी गम में, और सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

सिंह को आपने अभी सुना फिल्म तुम बिन में, और आगे सुनते हैं उदित नारायण अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है दिल चाहता है।

आशा भोसले उदित नारायण और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म लगान में। इसी के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति रश्मि शर्मा की है।

तो आखिर आप भी आ ही गए। तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं आपका इलाज करने आई हूँ, क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, राधे राधे मैम।
0: राधे राधे जी, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैम मैं नगला चंद्रवान दीनदयाल धाम से लव कुमार बोल रहा हूँ मैम।
0: स्वागत है लव कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: मैम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। और अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैम अभी मैं स्टडी करता हूँ।
0: कौन सी पढ़ाई कर रहे
1: हैं? पेपर द्वारा पुलिस के फॉर्म निकलेंगे, मैम इस बार डाला था उसमें थोड़े नंबर कम रह गए थे।
0: जी
1: अब दोबारा UPSI और यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं मैम।
0: बहुत बढ़िया। तो फिर सुबह दौड़ वौड़ लगाते हैं कि नहीं?
1: जी मैम सुबह हम आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं मैम।
0: हाँ, क्योंकि मैंने कई बार अक्सर कर सुबह के समय कभी जब कहीं आना जाना होता है बहुत ज़्यादा जल्दी, तो देखती हूँ कई बार युवाओं को सड़क के किनारे, किसी बम्बे के किनारे, कहीं गांव की पगडंडियों पर दौड़ लगाते हुए, तो बड़ा अच्छा लगता है। जी तो चलिए आज जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। और पसंद बताइए।
1: मैम पसंद है सत्यम शिवम सुंदरम, सावन का। अच्छा।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, परिचय दे दीजिए जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र सांवरिया गांव खैरावर तहसील कुम्हेर जिला डीग राजस्थान से।
0: कैसे हैं सांवरिया जी?
1: हम बिल्कुल सब कुशल मंगल हैं। आप बताइए, आप कैसी हैं?
0: हम बिल्कुल बढ़िया हैं। और आप ये बताइए कि आपके यहाँ से जटेरी धाम कितना दूर पड़ता है?
1: अरे बिल्कुल पास नहीं है, डीग के पास नहीं है जटेरी धाम। हम डीग के जा रहे हैं दक्षिण में, और वो उत्तर में, वाम में, उत्तर में बिल्कुल डीग से।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: अच्छा रास्ता और सही रास्ता, कैसे सुविधाजनक रास्ता जो हो, क्योंकि रास्ते तो मुझे लगता है एक दो जगह से हम पहुंच सकते हैं वहाँ, लेकिन आप कौन सा रास्ता सजेस्ट करेंगे?
1: डीग आना पड़ेगा,
0: दीग से?
1: और डीग से आपको जाना पड़ेगा। कैथवाड़ा वाली सड़क है ये,
0: कौन सी?
1: कामा वाली सड़क से जाती है। कामा जाओगे, कामा वाली सड़क से है, और ये जटेरी धाम के लिए जाती है। वहां से कामा
0: अच्छा, तो का
1: वाली रोड में से मुड़ती है जटेरी धाम के लिए।
0: जी, एक रास्ता खोह होते हुए भी है
1: हाँ
0: शायद?
1: वही है बस, खो खो पसोपा और जटेरी धाम वही है।
0: अच्छा, तो डीग से कितना डिस्टेंस है?
1: ये मानो आप 15-20 किलोमीटर मानो।
0: जी, तो आपका जाना होता है कि नहीं?
1: हम जाते हैं, हमारी है कहाँ, इधर हमारी जत्री हो है, वहीं हम जाते रहते हैं इधर।
0: जी, तो चलिए, बहुत, हालांकि दर्शन हमने भी किए हैं, लेकिन बहुत
1: हाँ
0: सुंदर जो है वो,
1: जगह है,
0: हाँ,
1: जगह है।
0: जगह है, तो वहाँ पर मैं समझती हूँ जिन जिनको सौभाग्य मिले जरूर दर्शन करने जाना चाहिए।
1: हाँ
0: और
1: जाते हैं हम तो।
0: जी, तो चलिए बता दीजिए अब अपनी पसंद का गीत भी।
1: और गाना सुनवाइए आप, हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से। सबका कहना है 1,000 रुपये भी देना है।
0: ठीक है। हेलो आकाशवाणी।
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए जी।
1: जी, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से। मैं
0: कैसे हैं प्रेम भाई?
1: बहुत अच्छा हूँ दीदी, आप कैसे हो?
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया एकदम। और कैसा मौसम है आपके यहाँ?
1: जी मौसम काफी अच्छा है, सुहाना मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है,
0: चलिए,
1: और पिछले हफ्ते काफी अच्छी बारिश हुई थी, अभी इंतजार है और बारिश का।
0: बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा सुबह बरसात हुई और
1: हाँ
0: थोड़ी सी
1: जी
0: राहत हमें भी मिली, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि बारिश इधर भी आएगी और हम भी बारिश का आनंद लेंगे। और आनंद तो आप भी लेंगे अपनी पसंद के गीत का। तो चलिए बता दीजिए क्या सुनना चाहेंगे।
1: जी गीत बताने से पहले बताना चाहूंगा, मैं मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुनता हूँ, और महेंद्र सिंह चौधरी जी है वृंदावन मथुरा के, बहुत ही अच्छे श्रोता है हमारे, उनसे बात होती रहती है, और उनके जरिए हमें मतलब अच्छे अच्छे कार्यक्रम में जुड़ने का मौका भी मिलता है हमें।
0: बिल्कुल।
1: तो मैं सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा, और गाने के बोले 1,000 में मेरी देना है
0: ठीक है,
1: जी।
0: आपने
1: और ये मैं गाना आपके लिए डेडिकेट
0: जी
1: जो है ना, वो सच में 1,000 में है जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम भाई इस प्यार के लिए, और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।
1: जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: नमस्ते। जी
0: नमस्ते। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: योगेश जांगड़े बे मेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: स्वागत है कार्यक्रम में। और एक नया गीत मैं समझती हूँ आज मुझे सुनने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
1: हमारा छत्तीसगढ़ का एक राजकीय गीत है, उसके कुछ लाइन गुनगुना देंगे।
0: जी चलिए सुना दीजिए।
1: अरे पापे के धार महानंदी है अपार, इंद्रावती है पखर तोर पैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जी
0: वाह वाह वाह वाह भाई वाह, मजा आ गया। मतलब अपने प्रदेश का जो आपने जो गीत सुनाया और इसके भाव क्या रहे वो भी बताइए।
1: ये जो अरपा पैरी और महानदी है ना, ये हमारे प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, तो उन पर फिल्माया गया है कि ये सभी नदियां जो छत्तीसगढ़ आए हैं, छत्तीसगढ़ महतारी कहते हैं, उसके पैर फाड़ती है, मतलब जीवनदायिनी है।
0: जी, बहुत सुंदर। मतलब नदियों की भी बात हो गई और अपने प्रदेश की भी बात हो गई और प्रेम की भी बात हो गई, तो बस ये प्रेम बना रहे और रिश्ते यूं ही महकते रहें, चहकते रहें। बता दीजिए अपनी पसंद भी।
1: गीत के बोल हैं, एक प्यार का नगमा है और फिल्म है शोर।
0: ठीक है
1: जी, धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हाँ दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी मैं गांव उसपाड़ से ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। दीदी
0: स्वागत है कार्यक्रम में। वीरेंद्र जी कैसे हैं आप?
1: हाँ बढ़िया है दीदी, आपका आशीर्वाद है, बिहारी जी का आशीर्वाद है। और दीदी आप ठीक हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं?
1: हाँ दीदी थोड़ा परेशानी हो गई थी, तो थोड़ा तकलीफ हो गई, तो घर पे थोड़ा रेस्ट किया है, डॉक्टर की दवाई चल रही है मैडम जी।
0: चलिए, मौसम बदल रहा है इस समय, ख्याल रखिए अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि इन्फेक्शन एक बार परिवार में घुस जाए तो धीरे धीरे सभी चपेट में भी आने लगते हैं। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए।
1: और दीदी हमारी आकाशवाणी टीम ठीक है?
0: बिल्कुल बढ़िया
1: सर जी। वो दीदी सावन का महीना चल रहा है और रक्षाबंधन आने वाला है, तो दीदी हमको रक्षाबंधन का गाना सुनवा दीजिए।
0: बताइए कौन सा सुनेंगे?
1: काजल फिल्म का है दीदी।
0: कौन सा गीत?
1: चंदा रे मेरे भैया से कहना, बहना याद करे, ये गाना है दीदी।
0: ठीक है,

0: हेलो आकाशवाणी
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं राकेश लवानी, अचनेरा, आगरा।
0: जी राकेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? क्या करते हैं राकेश जी?
1: दुकान करते हैं मैडम जी, दुकान
0: हाँ जी,
1: करते हैं मैडम
0: किस
1: जी,
0: चीज की दुकान है आपकी?
1: मोटर पार्ट्स की।
0: अच्छा, और आज क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
1: जी मैडम, आप कौन बोल रही हैं? तो
0: मैं रश्मि शर्मा बोल रही हूँ।
1: आप दोस्ताना फिल्म सुनवा दीजिए,
0: कौन सा गीत सुनेंगे?
1: कितना आसान है।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति थी रश्मि शर्मा की। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साथियों, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। किसान भाइयों, इस बुधवार यानी कि आज दिनांक 26/8/2026 को शाम 6:50 से 30 मिनट की अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है खरीफ की खड़ी फसलों में देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह, कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, खरीफ की खड़ी फसलों जैसे धान, बाजरा, मक्का, कपास, दलहनी एवं तिलहनी फसलों में लगने वाले रोग एवं कीड़ों से बचाव के उपाय और खरपतवार

पर नियंत्रण, सिंचाई एवं खाद उर्वरक की व्यवस्था पर जैसे मुद्दों पर पूछिए सवाल। हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह कृषि वैज्ञानिक से आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2255-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय होगा मंगलवार यानी कि आज शाम 6:50 से संध्या 7:20 तक। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

साथियों, फिल्म संगीत के इस सफर में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

हर दिल में मोहब्बत का उजाला हो जाए, हर चेहरे पर मुस्कान का प्याला हो जाए, नफरत की कोई जगह न रहे, इस जहां में इंसान इंसान के और करीब आ जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम मेरे सभी श्रोता साथियों को उषा पांडे का। और ईद मिलाद उन नवी के इस मुबारक अवसर पर दिली शुभकामनाएं। साथियों, आज 26 अगस्त 2026 को भारत में ईद मिलाद उन नबी का अवसर मनाया जा रहा है। यह दिन पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्म की याद से जुड़ा हुआ है और बहुत से मुसलमान इसे 12 रबीउल अव्वल के रूप में मनाते हैं। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम का मकसद केवल एक धार्मिक अवसर पर चर्चा करना नहीं साथियों, बल्कि उस संदेश को समझना है जो इस अवसर से जुड़ा हुआ है। मोहब्बत, रहमत, इंसानियत, सद्भाव, भाईचारा और अच्छे आचरण का संदेश, क्योंकि किसी भी महान व्यक्तित्व को याद करने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि हम उनके बताए हुए अच्छे रास्ते पर अपने जीवन को चलाएं, अपने जीवन में उनके रास्ते को उतारें। मज़हब हमें इंसानियत से जोड़ता है, नफ़रत की दीवारों से नहीं। इबादत का असली मतलब शायद यही है कि किसी के दिल को दुखाए बिना जीना, किसी दुखी दिल के काम आना। साथियों, इस मुबारक वक्त पर आइए ले चलते हैं आपको संगीत के इस सफर पर।

साथियों, ईद मिलाद उन नबी 12 वफात इस्लाम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है। इसे समझने के लिए इसके नाम और ऐतिहासिक संदर्भ को अलग अलग देखना उपयोगी है। ईद मिलाद उन नबी क्या है? ईद मिलाद उन नबी का अर्थ है पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद और उनके जीवन की शिक्षाओं और आदर्शों को याद करना। इसे मिलाद उन नबी या मौलीद भी कहा जाता है। इस्लामी परंपरा के अनुसार साथियों, हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का में रबी अल अव्वल महीने के 12 तारीख को माना जाता है। हालांकि उनके जन्म की सटीक तारीख को लेकर ऐतिहासिक मतभेद भी मिलते हैं। इसी कारण अलग अलग मुस्लिम समुदायों में इसे मनाने की तारीख और तरीके में अंतर हो सकता है। 12 वफात नाम क्यों? भारत और दक्षिण एशिया में साथियों 12 वफात नाम भी प्रचलित है। इसका संबंध रबी अल अव्वल की 12 तारीख से जोड़ा जाता है। वफात का अर्थ निधन, इंतकाल से है। परंपरागत मान्यता के अनुसार हजरत मोहम्मद का विसाल भी रबी अल अव्वल महीने में हुआ था। इसीलिए इस अवसर को कुछ जगह 12 वफात कहा जाता है, जबकि कई जगह इसे ईद मिलाद उन नबी के नाम से भी जानते हैं। साथियों, इस अवसर पर हजरत मोहम्मद के जीवन और उनकी शिक्षाओं को याद किया जाता है। विशेष रूप से सच्चाई और ईमानदारी, दयालुता और इंसानियत, गरीब और ज़रूरतमंद की मदद, माता पिता का सम्मान, पड़ोसियों के अधिकार, माफ़ करना और क्षमा करना, अमन और भाईचारा, न्याय और समानता, कमज़ोर और बेसहारा लोगों के प्रति संवेदना, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश यह था कि इंसान की अच्छाई केवल उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और दूसरे इंसानों के साथ उसके आचरण में दिखाई देती है। जहां नफ़रत की दीवारें ऊंची होने लगें, वहाँ मोहब्बत का पैगाम और भी ज़रूरी हो जाता है। जहाँ इंसान इंसान से दूर होने लगे, वहाँ इंसानियत की राह दिखाने वाले महापुरुषों को याद करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ईद मिलाद उन नबी केवल एक धार्मिक अवसर के रूप में नहीं साथियों, बल्कि पैगंबर मोहम्मद के जीवन से इंसानियत, करुणा, शांति और सद्भाव की प्रेरणा लेने का अवसर भी माना जाता है।

साथियों, ईद मिलाद उन नबी के इस मुबारक मौके पर, इस पावन अवसर पर हम सिर्फ जश्न न मनाएं, बल्कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की दी हुई उस सीख को भी हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए जो हमें इंसानियत, प्रेम, दया, क्षमा और भाईचारे का रास्ता दिखाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसान की पहचान उसके ऊंचे नीचे होने से नहीं, बल्कि उसके अच्छे आचरण और नेक व्यवहार से होती है। किसी के दिल को ठेस न पहुंचाना, ज़रूरतमंद की मदद करना, पड़ोसी का ख्याल रखना, आपस में प्रेम और सद्भाव बनाए रखना, यही उनकी शिक्षाओं की खूबसूरती है। एक छोटी सी बात, नफ़रतों के दौर में मोहब्बत की बात करते हैं, नफ़रतों के दौर में मोहब्बत की बात करते हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने की बात करते हैं। मज़हब अलग हो सकते हैं, इंसानियत अलग नहीं। आइए मिलकर एक दूसरे के सम्मान की बात करते हैं। ईद मिलाद उन नबी हमें यही संदेश देती है कि हमारे बीच भले ही पूजा पद्धतियाँ, मान्यताएँ अलग अलग हों, लेकिन इंसानियत, प्रेम और भाईचारा हम सबको जोड़ता है। तो आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अपने घर, अपने समाज, अपने देश में प्रेम और सद्भाव की रोशनी फैलाएंगे, मोहब्बत बांटेंगे, नफ़रत मिटाएंगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाएंगे। इसी उम्मीद और दुआ के साथ आप सभी को ईद मिलाद उन नबी की दिली मुबारकबाद। आपसी प्रेम बना रहे, भाईचारा कायम रहे और हमारे समाज में हमेशा इंसानियत की खुशबू यूं ही महकती रहे।

साथियों, फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS।

साथियों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी कोई अपना साथ छोड़ देगा, कभी कोई सपना अधूरा रह जाएगा, कभी रास्ते हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है। हर ठोकर हमें गिराने नहीं आती, कुछ ठोकरें हमें संभलना सिखाती हैं। हर मुश्किल हमें रोकने नहीं आती, कुछ मुश्किलें हमें और मजबूत बनाने आती हैं। इसीलिए जो बीत गया उसे सबक लीजिए, जो आज आपके पास है उसकी कद्र कीजिए, और जो आने वाला कल है उसके लिए उम्मीद रखिए। साथियों, आज एक बार फिर से आपको ईद मिलाद उन नबी यानी 12 वफात के इस मुबारक अवसर पर सभी हमारे साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। साथियों, अब वक्त हो गया है आपके संदेशों की ओर बढ़ने का, यानी उन्हें पढ़ने का, सुनने का और सुनाने का। लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला प्यारा सा गीत।

साथियों, आइए अब पढ़ते हैं आपके संदेश। हमारे पहले फरमाइश करता है 11:45 पर जिन्होंने हमें पहला संदेश भेजा है, हमसे जुड़ चुके हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से आप हमसे जुड़े। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा, ये हमसे जुड़े हैं पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के पीएस हांवकर, निर्मला विशाल हांवकर, मलकापुर महाराष्ट्र के नारायण इंगले, सोपान आशीष मुरहेकर का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमसे जुड़ चुके हैं श्री सुधाकर, राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत जगुताई, कुमार संचित वायाल, प्रथमेश सर्वद, हर्षता सानवी और प्रणाली देशमुख, ये हमसे जुड़े हैं जाफराबाद मराठवाड़ा से। अगला संदेश हमारे पास आया है झज्जर हरियाणा के बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया का। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप हमसे जुड़े हैं मोहाली चंडीगढ़ से, कालका के शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का संदेश भी हमें मिल चुका है। बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, उमेश, प्रमिला वंछोर का संदेश हमें ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुआ। संदेश मिला ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम का। हमारे अगले फरमाइशकर्ता विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश युद्धव कड़वासरा और अमर सिंह खाती हैं, ये हमसे जुड़े हैं जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। संदेश मिल चुका है सिद्धार्थनगर दरियापुर भावली के गजानन गेले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक शेरी, बडनेर अकोला के अरुणा, बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर का संदेश भी प्राप्त हुआ। अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका दले हमसे जुड़े कुम्हार गली श्री रामपुर से, पुनावले पुणे के अजय सोनवने, करिश्मा, अविका, विशाखा सोनवने का संदेश भी मिला।

0: अगला संदेश प्राप्त हुआ है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू पप्पी और तमन्ना भाटिया का, स्टेशन रोड जमशेदपुर से। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके श्राव्या का संदेश हमें मिला। हमसे जुड़े संजय पाटिल, उषा, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीरसागर, संजय कुमार चौहान, नसवाला चौक मलकापुर से हमें संदेश मिला है। ये गंजडुडवारा उत्तर प्रदेश के मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख दानिश, अमन आफरीदी, राधा नामदेव भी हमसे जुड़ चुके हैं। संदेश मिल चुका है राजकुमार गुप्ता, विनीता, रविराज, गौरव कुमार, समस्त मित्रगण राजनगर मधुबनी बिहार से जुड़े हैं। छपरा दालदली बाजार के संजय कुमार गुप्ता, संजीत, सर्वजीत और सुधांशु कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। संदेश मिला उत्तम नगर दिल्ली के कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका और भानु प्रकाश का। ये मैसेज हमारे पास आया है वरवट बकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल दिव्या और जय हागे का। हमारे अगले फरमाइश करता है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली के, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली के तुलसी मस्कीन, बीना आशीष राजा, चैतन्य और मेघा मस्कीन, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधान खुराना भी हमसे जुड़ चुके हैं। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हमसे जुड़े। और अगला संदेश मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, मोहन कारांगले, जिंगाव विदर्भ से बसंत राव भोजने, पीएस हांवकर का संदेश भी मिला। हमसे जुड़ चुके हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार, डिकेश साहू, ये हमसे जुड़े हैं रसेड़ा छत्तीसगढ़ से। फुटानी चौक नरहन स्टेट के लल्लन मिश्रा, नूतन, अमन पारासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित का संदेश भी मिल चुका है। हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका, समस्त रामेकर परिवार हमसे जुड़ा है रहाट गांव कंप अमरावती महाराष्ट्र से। तो साथियों आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर, कार्यक्रम का ये अगला आपका फरमाइशी की।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

साथियों, रूना लैला और भूपेंद्र की जुगलबंदी में अभी आपने सुना फिल्म घरौंदा के इस गीत को। गीत को लिखा गुलजार ने और जयदेव ने दिया संगीत। आइए पढ़ते हैं आपके संदेश। रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, मेघा राशि, माधुरी किरण हमसे जुड़ चुके हैं, जिला किशनगंज बिहार से। संदेश मिला अनीता, पुष्पा श्रीवास, छन्नूलाल श्रीवास, अंजू, योगिता, रंजन साहू, हेमंत, नामदेव, धर्मदास वाधवानी का। ये हमसे जुड़े हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। टैगोर गार्डन नई दिल्ली के रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी छावड़ा का संदेश भी हमें मिल चुका है। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका, वाणी थांदी का संदेश हमें मिला है गांव टोरोवाल, जिला नवांशहर, पंजाब से। हमसे जुड़ चुके हैं अपना संदेश भेजकर कलानौर के नरेंद्र शर्मा, किरण और नितिन मयंक शर्मा। पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी, पूरा खुशदिल परिवार हमसे जुड़ा चकला बाजार समाना शहर पंजाब से। अगला संदेश अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश, नियति, बेनीपट्टी, मधुबनी बिहार से आप हमसे जुड़े। राहुल मनवर, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल, बेबी प्रियांशी, शाहू नगर यवतमाल से हमसे जुड़े। हमसे जुड़ चुके हैं जलालाबाद वेस्ट के सुरेश, गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। जोन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस, डिकेस्ट्रो जनकपुरी, सहारनपुर से हमें संदेश भेज रहे हैं। संदेश प्राप्त हुआ नागचुन रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा के अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे का। भाटापारा छत्तीसगढ़ के सोहन जोशी और पायल जोशी भी हमसे जुड़ चुके हैं। संदेश मिल चुका है निखिल कांगड़ा, तन्वी वोट, अंकित कांगड़ा, बविता सीताराम कांगड़ा का, सीताराम कांगड़ा।

द्वारा हमसे जुड़े हैं एकता कॉलोनी रोहतक से। अगला संदेश चंडीगढ़ के सतीश अनेजा विमला अनेजा का हमें मिल चुका है। हमारे अगले फरमाइशकर्ता ऑरेंज सिटी रेडियो लिसनर क्लब काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से हमसे जुड़ चुके हैं प्रकाश रंभाड़े भारती जानवी वैष्णवी और हर्षैल रंभाड़े। सिद्धार्थ गोंडाने अर्चना ताई हीरा मड़ शेंडे जी प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमसे जुड़े हैं ये राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से। अजय सोनवने करिश्मा अविका साईशा कोयते वस्ती पुनावले से और श्री गणेश अविकाट श्री रामपुर से डी अशोक कुमार अविका जीविका सोनू कुमार और अर्चना कुम्हार का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं कर्नाटका स्टेट चिन्ना तिरुपति से श्यामला प्रकाश अश्विनी आनंद मानवित ये संदेश प्राप्त हो चुका है हमें कृष्ण मेहरा कोमल मेहरा किरण कपिल कुनाल मेहरा का दादरी गेट भिमानी से। हमसे जुड़ चुके हैं सौरभ निषाद प्रकाश बल्लू तरुण श्रीनिका और श्रीनिजा। साथियों आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत जिसे हमने फिल्म लाल पत्थर से लिया है। आवाज दी है किशोर कुमार ने गीत को लिखा देव कोहली ने और संगीत शंकर जयकिशन का है।

फातेमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र के नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद शाहिद गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर सबिहा मिखाइल और जैना मुजावर का संदेश हमें मिल चुका है। हमसे जुड़ चुके हैं हमारे अगले फरमाइशकर्ता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के आप हैं हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा श्रीमती मनोहर बाई बागरी प्रभुलाल बागरी पूरा बागरी मोहल्ला जिला झालवाड़ा राजस्थान से आप हमसे जुड़े। अगला संदेश हमारे पास आया है अस्तुपुरा जिला माऊ के मजहर अली अंसारी रजिया बेगम अंसारी मोहम्मद सादिक बहादुरगंज गाजीपुर के आजाद अली अनवर और रिजवाना परवीन भी हमसे जुड़े साथ ही हमसे जुड़ चुके हैं अब्दुल्ला आजाद। संदेश प्राप्त हुआ सौगा मगर लोड छत्तीसगढ़ के फनेश कुमार चंदन सावित्री मोहित देवी का गजेंद्र कुमार हेयांश कुमार चंदन का आप हमसे जुड़ चुके हैं कुम्हार गली कोलगांव के पांडु चंदन उषा चंदन राड़ी चंदन प्रतीक्षा अभिषेक सार्थक प्रथमेश संतोष पांडुरंग कुम्हार। अगला संदेश लच्छनपुर छत्तीसगढ़ के विश्वनाथ साहू पंकज साहू तिरुपति और कुंती साहू का हमें प्राप्त हो चुका है। अगले फरमाइश करता है राजेश सेन सुरेखा शुभम अक्षय छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से आप हमसे जुड़े। कल्याण मुंबई के किशोर हिवराले सुजाता प्रतीक हिवराले का संदेश भी हमें मिला। खरसावां झारखंड से सुकरा नायक मंजू नायक जलेश्वर गौरव और साथी हमसे जुड़े संदेश मिल चुका है। हमें शोभापुर मेरठ कैंट के दिग्दर्शन और कविता गौड़ का धनौरी तेरी वाला के निसार सलमानी नौशाद बेबी आलिया और आयान बाबू भी हमसे जुड़े। अगला संदेश हैदराबाद वनस्थलीपुरम साईनगर से दोरनाला बालाजी श्रीमती रेणुका बद्री हरिणी लोकेश साई कृपा और दस्तगिरी संध्या का प्राप्त हुआ। रामदुलारी प्रजापति राम शरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला शशिकांता बुड़गान छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े। राधेश्याम यादव श्रीमती प्रभा यादव शालिनी कामेश भारती यादव का संदेश भी हमें मिल चुका है। आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत। साथियों फिल्म का नाम

साथियों, अब वक्त हो गया है आपसे अनुमति लेने का, कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। चलते चलते बस यही कहेंगे, दिलों में प्यार रहे, जुबां पर मिठास रहे, हर चेहरे पर मुस्कान और हर दिल में विश्वास रहे। नफरत की कोई जगह न हो इस जहां में, बस इंसानियत का उजाला हर इंसान के साथ रहे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी की हर मुश्किल से कुछ सीख कर आगे बढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई बात, एक नए गीत और आपके संदेशों के साथ। दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए, नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज की कलाकार हैं रीता शाक्य, संगत कलाकार बांसुरी पर लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं ब्रजभूषण शर्मा, ढोलक पर संगत दी है योगेश शर्मा ने और परकशन कृष्ण कुमार शर्मा का।

0: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
1: दूसरा कोई मैच है क्या?
0: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
1: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
0: पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
2: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
4: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
5: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रजलोक गीत के अंतर्गत कलाकार रीता शाकी के गाए हुए कुछ ब्रजलोक गीतों को। संगत कलाकार बांसुरी पर लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम पर संगत दी है ब्रजभूषण शर्मा ने, ढोलक पर संगत योगेश शर्मा की और परकशन कृष्ण कुमार शर्मा का। तो आइए आनंद लेते हैं रीता शाकी के द्वारा गाए हुए इस ब्रजलोक गीत का।

कार्यक्रम ब्रजलोकगीत अब यहीं समाप्त होता है। आज के कलाकार थे रीता शाक्य, संगत कलाकार बांसुरी पर लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम पर संगत दिया ब्रजभूषण शर्मा ने, ढोलक पर संगत दी योगेश शर्मा ने और परकशन थी कृष्ण कुमार शर्मा की। हम आकाशवाणी के

0: थोड़ा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस समय अपराह्न के 1 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थान बना चुका है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में परिवर्तन संरचनात्मक है और तेजी से होते शहरीकरण, मध्यम वर्गीय का स्तर बढ़ने और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का इसमें अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नए अवसर सृजित कर रही हैं। वित्त मंत्री ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं में भारत के डिजिटल तंत्र का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उच्च अधिकारियों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पायलटों और चालक दल के सदस्यों के शरीर में मनोसक्रिय पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने वाला मोकाडोप टेस्ट सिस्टम और नागर विमानन आवश्यकताओं CAR में जरूरी बदलावों पर चर्चा हो रही है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक और एयरलाइन ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। अब तक इसके 2,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस संक्रमण से होने वाली बीमारी और मौतों की निगरानी कर रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। नॉर्वे में कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की जा रही ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन किया। नॉर्वे की संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता और हिंसा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAEC के साथ एकजुटता दिखाते हुए इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को खत्म करने की मांग की। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. Harish ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया। भारत ने नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में किए गए उल्लेखों का इल्लोखे को खारिज कर दिया है। भारत ने इन्हें राजनीति से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण बताया। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ICERD के तहत भारत की 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद समिति की रिपोर्ट को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इसमें रचनात्मक ढंग से भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए भारत और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल यूक्रेन के 35वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूक्रेन के नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले में चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं। श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली

0: महामारी 503 बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी कि अपराह्न 1:10 पर श्रोता साथी सुन सकेंगे समवेत स्वरों में देशगान। बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक अपराह्न 1:15 पर, जिसमें होगी चर्चा ईद ए मिलाद विषय पर। साथ में आप सुनेंगे चर्चा, विषय हो गया मदर टेरेसा जयंती। वार्ता के अंतर्गत त्याग एवं सेवा का प्रतीक मदर टेरेसा। वार्ताकार होंगी निर्मला। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी अंतिम गौतम। अपराह्न 1:45 पर श्रोता साथी आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे अपराह्न 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:30 पर युवा साथियों के दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी के साथ, जिसमें आज की बात के अंतर्गत मदर टेरेसा जयंती एवं मिलाद उन नबी मोहम्मद साहब का जन्मदिन विषय पर होगी चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे व्यक्तिगत विकास वार्ता युवा कलाकार नीलम अग्रवाल से अक्षमा सक्सेना की बातचीत के द्वारा।

संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में ब्रज काव्य सुधा के अंतर्गत अटल राम चतुर्वेदी द्वारा आप सुनेंगे ब्रज काव्य सुधा। भक्ति परक फिल्म संगीत संध्या वंदन संध्या 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा। संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण, विषय होगा खरीफ की खड़ी फसलों में देखभाल। वार्ताकार विशेषज्ञ होंगे कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर अमर सिंह। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे मृणालिनी दीक्षित एवं दीपक गोस्वामी। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी संध्या 7:31 पर आप सुन सकेंगे। फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे आप रात्रि 8:00। चित्रपट संगीत सुहाने तराने रात्रि 9:15 पर पेश किया जाएगा। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। कलाकार होंगी विदुषी कमल केलकर। विदुषी कमल केलकर का ख्याल गायन राग देवगंधार धनाश्री पर आप सुन सकेंगे। तबला पर संगत देंगे कन्हैयालाल भट्ट। वायलिन पर संगत होगी बसंत तिमोही की।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। किसान भाइयों, इस बुधवार यानी कि आज दिनांक 26/8/2026 को शाम 6:50 से हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है खरीफ की खड़ी फसलों में देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह, कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, खरीफ की खड़ी फसलों में जैसे धान, बाजरा

मक्का, कपास, दलहनी एवं तिलहनी फसलों में लगने वाले रोग एवं कीड़ों से बचाव के उपाय और खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं खाद उर्वरक की व्यवस्था पर जैसे मुद्दों पर पूछिए सवाल, हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह कृषि वैज्ञानिक से। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय होगा मंगलवार शाम 6:50 से 7:20 की अवधि तक। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनितालोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं अंतिम गौतम।

वनिता लोक कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज है 26 तारीख और आज 26 तारीख को हम मना रहे हैं 12 वफात अर्थात ईद अ मिलाद उन नबी। बहनों, 12 वफात या ईद अ मिलाद उन नबी अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन और उनके वफात की याद में मनाया जाने वाला प्रमुख मुस्लिम त्यौहार है। मैनू पैगंबर हजरत मोहम्मद इस्लाम धर्म के संस्थापक और अल्लाह के अंतिम पैगंबर थे। 12 वफात का विस्तृत रूप से हम अर्थ जाने तो 12 का अर्थ होता है इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रवी उल अव्वल की 12वीं तारीख को दर्शाता है और वफात का अर्थ होता है इंतकाल। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म भी इसी 12 तारीख को हुआ था और 63 वर्ष की आयु में इसी दिन उनका इंतकाल भी हुआ था। दुनिया को अलविदा कहने से पहले वे 12 दिन तक बीमार भी रहे थे। इस त्यौहार के इतिहास की बात करें तो इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत 11वीं शताब्दी में मिस्र के फातिमी वंश के सुल्तानों के समय हुई थी। इसका पहला बड़ा सार्वजनिक आयोजन जो हुआ था वो 1207 में मुस्लिम जनरल गोकबोरी द्वारा शुरू किया गया था। सुन्नी समुदाय इसे रवी उल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाते हैं तो वहीं शिया समुदाय के लोग इसे 17वीं तारीख को मनाते हैं। मैनू 12 वफात ईद और मिलाद उन नबी का जो दिन है इस दिन मुसलमान भाई बहन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन और उनकी याद में इसे विशेष इबादत करते हैं, जुलूस निकालते हैं और दान पुण्य करते हैं। इस दिन लोग मस्जिदों में जाते हैं, मस्जिदों को सजाया जाता है, घरों में कुरान शरीफ की लिलावत करते हैं और पैगंबर से दुआ करते हैं। कई जगहों पर बहनों शान के साथ जुलूस निकाले जाते हैं जिसमें इस्लामी झंडे लहराए जाते हैं। मस्जिदें, घर और गलियां रंग बिरंगी रोशनी, झालरों और झंडों से सजाई जाती है और बहनों जगह जगह दान दावतें होती हैं, अर्थात गरीबों और ज़रूरतमंदों को खाना, शरबत व मिठाइयाँ बांटी जाती हैं तथा लंगर का आयोजन भी किया जाता है। मस्जिदों और सम्मेलनों में पैगंबर मोहम्मद के जीवन व उनके उपदेशों एवं उनके चरित्रों पर चर्चा की जाती है। तो बहनों ये है 12 वफात का त्यौहार जो लोग खुशी मनाते हैं, उल्लास मनाते हैं और जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं।

0: बहनों, गरीबों की जो मसीहा हैं वो हैं मदर टेरेसा। उन्होंने अनाथों, बीमारों की मदद की, उनकी सेवा की और अपना पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1950 में कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की तथा कुछ रोगियों व असाध्य रोगों से पीड़ित लावारिस लोगों के लिए आश्रय स्थल भी बनवाए। उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए मदद के लिए। उन्होंने एक संस्था की स्थापना की। वही उनका जो निर्मल हृदय था वह लावारिस और अंतिम सांस ले रहे रोगियों के लिए भी आश्रय उन्होंने खोला ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन और मृत्यु पा सकें। कुछ रोगियों की सेवा के लिए उन्होंने पुनर्वास बनाए और पुनर्वास के लिए शांति नगर जैसी बस्तियों का निर्माण करवाया। अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारे अनाथालय खोले जहाँ के बेसहारा और अनाथ बच्चे अपना जीवन यापन कर सकें। तो ऐसी थी हमारी मदर टेरेसा। और उनकी अधिक जानकारी के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए लीजिए, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी ही वार्ता, त्याग एवं सेवा का प्रतीक मदर टेरेसा। वार्ताकार हैं निर्मला शर्मा।
1: मदर टेरेसा यह वो नाम है जिसे भारत का बच्चा बच्चा जानता है। मदर टेरेसा ऐसे व्यक्तित्व की धनी थी जिन्होंने दुखी और पीड़ित व्यक्तियों की सेवा साधना में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था, जिसके लिए उन्हें विश्व का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार शांति और सद्भावना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया। ममता महिमा, गरीबों की मसीहा, विश्व जननी और कहीं तो मदर मैरी जैसे अनेक उपनामों से पुकारी जाने वाली मदर टेरेसा का जीवन मानव सभ्यता के इतिहास में एक ऐसा अध्याय बनकर उभरा जिसका उदाहरण और कहीं देखने को नहीं मिलता है। यह सच है कि मदर ने अपना संपूर्ण जीवन भारत में ही रहकर दीन दुखियों की सेवा करने में बिताया और वह भारत नागरिक भी थी, किंतु वह जन्म से ही भारत की नागरिक नहीं थी। भारत की पवित्र भूमि और भारत के लोगों के साथ उनके असीम प्रगाढ़ और अटूट संबंधों को देखकर यह अविश्वसनीय लग सकता है, किंतु यह सच है कि उनका जन्म भारत से हजारों मील दूर एडियाट्रिक सागर के पार स्थित युगोस्लाविया के स्कोपजे शहर में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को एक अल्बेनियाई परिवार में हुआ था। मदर टेरेसा का बचपन से नाम एग्नेस गोंजा बोनास्क्यू था। बचपन की यह एग्नेस आगे चलकर टेरेसा और फिर मदर टेरेसा, ममता महिमा, गरीबों की मसीहा, विश्व जननी, मदर मैरी, संत आदि अनगिनत नामों से जानी जाती हैं।

मदर टेरेसा के पिता का नाम निकोला बोयाजू था, जो एक मेहनतकश और ईमानदार अल्बेनियाई किसान थे। हालांकि बाद में उन्होंने कृषि का धंधा छोड़कर भवन निर्माण के कार्य से जुड़ चुके थे। मदर टेरेसा की माता का नाम ट्राना बोयाज था, जो एक कुशल गृहिणी थी। मदर अपने माता पिता की चौथी संतान थी। मदर टेरेसा के दो बहन और एक भाई थे, जो इनसे बड़े थे। मदर टेरेसा ने जब पहली बार मानवता की सेवा की और आकर्षित हुई, उस समय उनकी आयु 12 से 13 वर्ष की होगी। सरकारी स्कूल में पढ़ते समय वह सोडालिटी की बाल सदस्य बन गई। सोडालिटी मानव सेवा को समर्पित ईसाई संस्था का एक अंग थी, जिसका प्रमुख कार्य लोगों, विशेषकर विद्यार्थियों को स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के रूप में तैयार करना था। उन दिनों यूगोस्लाविया के बहुत से जेसुइट ईसाई धर्म के प्रचारक और कार्यकर्ता भारत में कर्सियांग और कोलकाता में रहकर सेवा कार्यों में जुटे थे। ये जेसुइट लोग समय समय पर अपने अनुभव और कार्यों के विषय में लोरेटा संप्रदाय के मुख्यालय में अपना पत्र भेजते रहते थे। इन पत्रों को सोडाली के सदस्यों को नियमित रूप से पढ़ाया जाता था। उन्हीं दिनों यूगोस्लाविया के जेसुइट लोगों ने कोलकाता आर्काडाइसिस योजना पर काम करने के लिए 30 दिसंबर 1925 को जेसुइटों का एक दल कोलकाता भेजा। इस दल में कर्सियांग गए एक जेसुइट ने कोलकाता के दीन दुखियों की दशा और उस संबंध में किए जा रहे जेसुइटों के कार्यों का वर्णन बड़े ही भावात्मक ढंग से सविस्तार लिखकर भेजा। यही वह पत्र था जिसका वृत्तांत पढ़कर सुनकर मात्र 15 साल की स्कूली छात्रा मदर का मन कोलकाता जाने के लिए मचल उठा। उन्हें लगा जैसे हजारों मील दूर के दुखियों और पीड़ितों की करुण पुकार उनके मन मस्तिष्क में गूंजने लगी। जब उन्होंने अपने अध्यापकों को अपनी इस इच्छा से अवगत कराया, तो उनकी भावना का सम्मान करते हुए उन्हें आयरलैंड के लोरेटो मठ की सन्यासियों के संपर्क में भेज दिया गया। इस मठ की सन्यासिनियों और मिशनरियों कार्यकर्ताओं के त्याग और सेवा भावना से पूर्ण जीवन ने मदर को इतना अभिभूत कर दिया कि उन्होंने इस समय अपना पूर्ण मानव जीवन की सेवा को समर्पित करने का निर्णय ले लिया। लोरेटो मठ के सन्यासी जीवन के साथ साथ यदि उस समय मदर के जीवन को किसी ने सर्वाधिक प्रभावित किया, तो वह थी स्पेन की महान संत टेरेसा, जिन्होंने तब से लगभग 400 वर्ष पूर्व धर्मात्मा के चक्रव्यूह में फंसे स्पेन के लोगों को नए जीवन का अमर संदेश दिया था। यह संदेश था अथवा कुछ और कि उन महान संत टेरेसा ने भी जीवन के 18वें साल में सन्यासियों के जीवन को अपनाया था, और मदर टेरेसा ने भी 29 नवंबर 1928 को अपने जीवन के 18वें साल में ही सन्यासी जीवन को अपनाया। अपने आदर्श और संत टेरेसा के पद चिन्हों पर चलने का प्रण करते हुए उन्होंने अपना नाम टेरेसा रख लिया। 10 सितंबर 1946 का वह दिन मदर को सदैव स्मरण रहा, जब ट्रेन द्वारा कोलकाता से दार्जिलिंग जाते समय मदर को लगा जैसे कोई अद्भुत शक्ति उन्हें पुकार रही है। सब कुछ त्याग कर मेरे पीछे चली आओ, बस्ती बस्ती में दरिद्रतम मनुष्य की सेवा करने में मेरी सेवा होगी। मदर ने उसी समय इस आह्वान को अपने अंतर मन की गहराइयों में अनुभव करते हुए निर्णय लिया कि वह अब अपना समस्त जीवन दरिद्र मानव की सेवा में व्यतीत करेंगी। यह प्रण करते ही मदर ने लोरेटो कॉन्वेंट और उनके द्वारा मिल रही सभी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सुंदर और महंगे वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और सफेद साड़ी धारण कर ली, पूरे आस्तीन का सफेद ब्लाउज और गले में टंगा क्रॉस का निशान। कैथोलिक सन्यासियों में मदर पहली महिला थी

जिन्होंने भारतीय पोशाक साड़ी को अपने मिशन की पोशाक के रूप में धारण किया। इस सेवा के मार्ग पर चलने हेतु प्रेम के साथ साथ चिकित्सा और औषधि का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की भी अत्यंत आवश्यकता थी। लोरेटो को अलविदा कहकर मदर ने अपनी वेशभूषा में ही 18 अगस्त 1948 को नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए पटना बिहार की अमेरिकी मेडिकल मिशनरी की वहां 3 महीने की ट्रेनिंग लेकर वे दिसंबर माह में कोलकाता लौट आई और लिटिल सिस्टर्स ऑफ द पुअर संस्था में आकर रहने लगी। अनाथ और पीड़ित बच्चों की सेवा में लगी लिटिल सिस्टर्स ऑफ द पुअर नाम की एक संस्था अत्यंत दयनीय अवस्था में थी, बिल्कुल मदर की तरह। लोरेटो की निश्चिंतता भरा जीवन त्याग कर जब मदर बाहर निकली थी तो जमा पूंजी के नाम पर उनके पास मात्र 5 रुपए थे। मदर के जीवन में सन 1928 का यह दौर बड़ी ही कठिनाइयों भरा रहा। इसी साल मदर टेरेसा को भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई और इसी साल 21 दिसंबर को उन्हें सियाल देह के निकट की मलिन मोती झील बस्ती में पहला स्कूल खोलने की अनुमति भी मिली। इटाली लारेटो के पास मोती झील बस्ती के गंदे और दुर्गंधयुक्त वातावरण के बीच एक उजाड़ जमीन के टुकड़े पर मदर टेरेसा का पहला स्कूल स्थापित हुआ। स्कूल क्या था, बस नाम ही था। न कोई कमरा, न छत, न दीवार, न कुर्सी, न बेंच, न लिखने पढ़ने की सामग्री। मदर एक मजदूर के साथ स्वयं लगकर आसपास की झाड़ियों और गंदगी को साफ किया। बस्ती के 4 से 5 दलित परिवारों के मैले कुचेले बच्चों को बड़े प्रेम के साथ लाई और जमीन पर लकड़ी के अक्षर लिखकर बच्चों को पढ़ाने लगी। मदर ने जिन दिनों यह स्कूल स्थापित किया था, न तो उनके पास सिर छिपाने की कोई जगह थी और न ही पेट की भूख मिटाने को भोजन। बारिश में भीगती और ठंड से कांपती मदर को जहाँ तहाँ से मांगकर कुछ खाना पड़ता था। 1949 में उन्हें थोड़ी राहत मिली जब माइकल गोमेज नामक सहृदय ईसाई व्यक्ति के घर में एक छोटे से कमरे में उन्हें रहने की जगह मिली। मोती झील के स्कूल से घर आते जाते समय मदर को जैसे ही सड़क किनारे पड़ा कोई रोगी अथवा पीड़ित व्यक्ति दिखाई देता, वह उसे अपने साथ ले जाती। माइकल गोमेज ने भी इस मदर के काम में भरपूर सहयोग दिया और अपने मकान तो निराश्रय और दुखी लोगों की पनाह गाह में बदल दिया। सेंट टेरेसा चर्च के फादर ने मदर की सेवा भावना को अनुभव करते हुए उन्हें मेज, कुर्सी, दवाओं के साथ साथ अपनी आउटडोर डिस्पेंसरी का एक कोना दे दिया। माइकल गोमेज का छोटा सा मकान जो मदर टेरेसा की कार्यविधियों का केंद्र था, पीड़ितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बहुत छोटा पड़ गया था। 7 अक्टूबर 1950 को कोलकाता में मदर की मानवता सेवी गतिविधियों की सूचना पाकर और मदर द्वारा भेजे गए मर्म स्पर्शी पत्र के आधार पर 54A आचार्य बसु रोड पर मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना की गई। मदर के मार्गदर्शन में शीघ्र ही इनकी शाखाएं समस्त भारत में फैल गई और निर्मल हृदय, निर्मला शिशु सदन जैसे अनेक मानवता सेवा के संस्थान खुलते चले गए। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग मदर टेरेसा के मार्गदर्शन में चल रहे मिशनरी ऑफ चैरिटीज तथा निर्मला हृदय सहित जैसे अनेक संस्थानों से लोग जुड़ने लगे और मानवता सेवा के इस महान कार्य में आर्थिक योगदान करने लगे। ऐसे लोगों में देश विदेश की अनेक संस्थाएं तो थी ही। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इसमें पीछे नहीं रहे। इस प्रकार सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग मिलने के साथ ही साथ मदर ने अपनी संस्था और उसके कार्यों को देश ही क्या पूरे विदेशों तक फैलाया। 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना से मात्र 12 वर्ष पहले में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के

0: सम्मान से नवाजा गया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद मदर टेरेसा एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व बन चुकी थी। सन 1950 में मिशनरी ऑफ चैरिटीज की एक छोटे से भवन में स्थापना से लेकर आज भारत में कोलकाता, रांची, दिल्ली, झांसी, आगरा, अंबाला, भागलपुर, अमरावती, मुंबई, रायगढ़ सहित पूरे भारत में 161 से भी अधिक प्रतिष्ठान मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के अधीन मानवता की सेवा में लगे हैं। विदेशों में स्विट्जरलैंड, वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, माल्टा, इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, तंजानिया, रोम, जॉर्डन, मेलबर्न आदि सहित 35 देशों में भी मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के संस्थान मानव में लगे हुए हैं। जीवन भर दीन दुखियों की सेवा के लिए देश विदेश से किसी भी कोने से आई एक ही पुकार पर दौड़ी चली आने वाली मदर अपने जीवन के 85 वर्ष पूरे करते काम के इस अत्यधिक बोझ से भीतर ही भीतर थकने लगी थी, किंतु उन्होंने अपने निरंतर बिगड़ते स्वास्थ्य को अपने काम के आगे कुछ नहीं समझा। इसका परिणाम यह हुआ कि सन 1997 के शुरू में ही उनका स्वास्थ्य इस कदर बिगड़ गया कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा और कई महीने एडमिट रहने के बाद 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा का देहांत हो गया। मानवता के इस इतिहास में प्रेम, करुणा, समर्पण और त्याग का एक अनूठा और अमर अध्याय जोड़कर सदा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज मदर हमारे बीच नहीं है, किंतु उनकी संस्थाओं और उनके द्वारा की जा रही मानव सेवा में हम हर क्षण उनकी उपस्थिति अनुभव कर रहे हैं।
1: अभी बहन सुन रही थी ये वार्ता, त्याग एवं सेवा का प्रतीक मदर टेरेसा। वार्ताकार थी निर्मला शर्मा। और बहनों, अब समय है कि हम बात करें कुछ घरेलू टिप्स पर। हर बार की तरह इस बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ घरेलू टिप्स। तो बहनों, घरेलू टिप्स की हमें आपको सबको जरूरत रहती है, तो लीजिए बताते हैं कुछ बातें। निश्चय ही हम भिंडी की सब्जी इस समय जरूर बनाते हैं, और भिंडी की सब्जी कई बार चिपचिपी टाइप की हो जाती है। तो भिंडी की सब्जी में हम थोड़ा सा बेसन डालते रहें और चलाते रहें तो सब्जी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और उसमें चिपचिपाहट भी नहीं रहेगी। मैंने कई बार बर्फ हमें सीसे जैसी बनानी है, तो सीसे जैसी बर्फ चमकदार बनाने के लिए हमें क्या करना है, उबलते हुए पानी को फ्रीजर में रख दें तो जो स्लाइस होंगी वो एकदम सीसे की तरह चमकदार होंगी। चावल बनाते हैं तो चावल चिपके नहीं, इसके लिए हमें नींबू की 2 बूंद डाल सकते हैं तो चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। मैनू हरी सब्जियां जब हम उबालते हैं तो उबालने पर वो काली सी पड़ जाती हैं, ऐसा ना हो तो उसके लिए हरी सब्जियां उबालते समय हम उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दें तो इससे जो हरी सब्जी है उनका रंग रूप वैसा ही रहेगा। मैनू लहसुन को छीलने में सभी को परेशानी होती है, तो लहसुन को हल्का सा तवे पर गर्म कर लें जिससे जो लहसुन की कलियां हैं आसानी से छिल जाएंगी। तो बहनों, ये तो थी आज के हमारे घरेलू टिप्स। तो घड़ी की सुई भी संकेत कर रही है कि हम अपना कार्यक्रम समाप्त करने की बहनों से अनुमति लें। तो बहनों, अनुमति तो हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, पत्र के माध्यम से कर सकते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो बहनों, इसके साथ ही वनिता लोक कार्यक्रम समाप्त करने की अंतिम गौतम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनितालोक। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म बेमिसाल के इस गीत के लिए। संगीत दिया आरडी वर्मन ने और गीत को लिखा आनंद बख्शी ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है धर्मकांटा। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। गीत को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत नौशाद का।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की जुगलबंदी में फिल्म आपकी कसम के गाए हुए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये सफ़र साथियों अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Toronto, Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure.

0: 1000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया, कहा घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
0: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
2: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन
1: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
2: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
0: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
4: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति

0: पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
1: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सुलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEPG और AICE PhD 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दासगुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरुणमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक

0: पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाक पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना ली हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
1: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जानिए में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
1: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह स्तर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं। और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
1: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
1: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गाँव है लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ न शोर है, न ऊंची ऊंची इमारतें और न शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
2: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गाँव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
1: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
2: अजीत जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गाँवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है, यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
1: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ विशेषकर हनले गाँव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है।
2: जी,
1: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
2: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित

0: प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
1: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब हंडले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
0: जी जी जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हंडले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हंडले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
1: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
0: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हंडले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
0: जी,
1: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
0: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं, हंडले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
1: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
0: जी,
1: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं, लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
0: जी,
1: हंडले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है। बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
0: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हंडले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
1: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है, तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
0: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचान

0: माना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
0: आह क्या बात है
2: मैम।
0: हाँ बेटी,
2: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
0: बिल्कुल कहा।
2: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
0: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
2: जी पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
0: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
2: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
1: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: हाँ, जी मैम।
2: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
2: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर।

0: चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी दोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
5: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
6: जी हाँ।
5: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
7: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
6: हाँ, उपाय बताइए।
5: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
8: ग्राम सभा?
7: ठीक है।
8: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है,
5: समझे। और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
6: हाँ हाँ, हम तैयार है, ठीक है।
5: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
9: जी हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
10: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
5: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
11: वो कैसे?
12: क्या गड्ढा बनाना है?
13: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है,
7: फिर इसकी क्या जरूरत है?
11: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
5: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
7: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ बताओ।
13: हाँ हाँ, हमें भी बताओ।
12: हमें भी बताओ।
5: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
7: सिंचाई टैंक?
13: सिंचाई टैंक,
5: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े, इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
12: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
6: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में

जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए किसान भाइयों, इस बुधवार यानी कि आज दिनांक 26/8/2026 को शाम 6:50 से 30 मिनट की अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में इस बार आज का विषय है खरीफ की खड़ी फसलों में देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह, कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, खरीफ की खड़ी फसलों जैसे धान, बाजरा, मक्का, कपास, दलहनी एवं तिलहनी फसलों में लगने वाले रोग एवं कीड़ों से बचाव के उपाय और खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं खाद उर्वरक की व्यवस्था पर मुद्दों पर पूछिए सवाल। हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह, कृषि वैज्ञानिक से। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय होगा मंगलवार यानी कि आज शाम को 6:50 से 7:20 तक सूचना समाप्त हुई।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 5:30 पर हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शाम के 5:30 हो चुके हैं। इस मीटर पर द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को अरविंद कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। युववाणी कार्यक्रम में आज की बात में आज हम स्मरण कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जिनके लिए मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म था, मदर टेरेसा, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 26 अगस्त वर्ष 19

1910 को उस समय के ऑटोमन साम्राज्य के इस कब्जे में हुआ था। उनका मूल नाम था एग्नेस गोंझा बोयाजियो। आगे चलकर उन्होंने अपना जीवन गरीबों, बीमारों, अनाथों और असहायों लोगों को और उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भारत आने के बाद उन्होंने कोलकाता को अपनी कर्मभूमि बनाया। वर्ष 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनका कार्य केवल जरूरतमंदों की सहायता करना नहीं था दोस्तों, बल्कि समाज को ये याद दिलाना भी था कि किसी भी व्यक्ति की गरीबी या बीमारी उसकी मानवीय गरिमा को कम नहीं करती। दोस्तों, मदर टेरेसा का जीवन युवाओं के लिए विशेष प्रेरणा देता है। आज जब सफलता को अक्सर धन, पद और प्रसिद्धि से जोड़ा जाता है, उनका जीवन हमें बताता है कि सफलता का एक दूसरा अर्थ भी है, किसी के जीवन में आशा बन जाना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी अकेले व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बातें करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना या किसी दुखी व्यक्ति का हाथ थाम लेना। ये छोटे छोटे कार्य भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1980 में भारत रत्न प्रदान किया। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान पुरस्कार नहीं, बल्कि वो सेवा भाव था जिसने असंख्य लोगों को प्रभावित किया। युवा साथियों, मदर टेरेसा की जयंती पर आइए हम ये संकल्प लें कि अपने आसपास किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मानवता केवल बड़े कार्यों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी संवेदनशील पहल से जीवित रहती है। आज की बात का संदेश बस इतना, दूसरों के जीवन में थोड़ी सी रोशनी बनिए, शायद किसी के लिए वो पूरी दुनिया हो।

0: हंसराज हंस की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मौसम फिल्म से। ये रचना इरशाद कामिल की रचना थी, संगीत प्रीतम का था। दोस्तों, युववाणी कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं व्यक्तिगत विकास वार्ता। युवा कलाकार नीलम अग्रवाल से बातचीत की है अक्षय सक्सेना ने, आइए आपको सुनवाते हैं।
1: दोस्तों, हम हर बार युवा कलाकारों से भेंट करते हैं और आपके लिए नए नए क्षेत्र में निपुण

0: युवा कलाकारों से मिलवाते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही युवा कलाकार हैं जो पेंटिंग के क्षेत्र में निपुण हैं। तो आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मेरा नाम नीलम अग्रवाल है और मैं बांके बिहारी कॉलोनी वृंदावन में रहती हूँ।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। नीलम जी, आप ये बताइए कि आपने अपनी शैक्षणिक योग्यता में क्या किया हुआ है?
1: मैंने अपनी शैक्षणिक योग्यता में डबल एमकॉम किया हुआ है।
0: जी, तो किस ग्रुप से आपने एमकॉम किया है?
1: मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप से किया हुआ है और मैंने इकोनॉमिक्स ग्रुप से किया हुआ है और मैंने कंप्यूटर का कोर्स भी सीखा हुआ है 1 ईयर का।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है नीलम जी। वैसे तो ये प्रश्न महिलाओं से ज्यादातर नहीं पूछना चाहिए, पर फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, आपकी उम्र क्या है?
1: जी, मेरी उम्र 28 है अभी।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताइए कि आपने कौन सी कला सीखी है, आप कौन सी कला में सबसे ज्यादा निपुण हैं? जैसे आपने संगीत, डांस, पेंटिंग या क्या सीखा हुआ है?
1: मैंने पेंटिंग सीखी हुई है जो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे डांस का भी थोड़ा बहुत शौक है और मैं संगीत भी गुनगुना ही लेती हूँ कभी कभी।
0: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मल्टी टैलेंटेड युवा कलाकार हैं, आपको हर क्षेत्र में अलग अलग रुचि है। तो सबसे ज़्यादा रुचि आपकी पेंटिंग में है ना? तो आप
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: बताइए कि पेंटिंग के क्षेत्र में आपकी ये रुचि किस तरह से उत्पन्न हुई?
1: जी, सच कहूँ तो ये बस यही समझ लीजिए कि गॉड गिफ्ट है, जो कि बचपन से ही था कि पेंटिंग करूँ, किसी चित्र को देखकर कुछ बनाऊँ। जो भी चित्र सामने आता था उसको देखकर मैं बनाने लग जाती थी, तो ये गॉड गिफ्ट ही है। इसमें ये नहीं है कि किसी के कहने पर ही मुझे रुचि हुई है, बस शुरू से रुचि अपने अंदर खुद ही।
0: अच्छा, ये तो बहुत
1: हो
0: अच्छी
1: गई है।
0: बात है कि आपको बचपन से इस क्षेत्र में रुचि है। तो आप ये बताइए, आपने कहीं किसी विद्यालय से या कहीं कोई प्रशिक्षण लेकर किया है, कोई कोर्स किया है, या बस अपनी मर्जी से ऐसे ही पेंटिंग करते हैं?
1: सच कहूँ तो ये है कि बचपन में मैं शुरू शुरू में जो भी चित्र सामने आता था उसको देखकर मैं बनाने लग जाती
0: जी
1: थी, फिर मैंने धीरे धीरे उसका प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया।
0: जी
1: फिर जैसे कि मैंने स्टोन पेंटिंग, निप पेंटिंग और ये ऑयल पेंटिंग है, फोआ पेंटिंग है, इस तरह की पेंटिंग सीखने का फिर मैंने प्रशिक्षण लिया।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने प्रशिक्षण भी लिया है और आपका खुद का भी बहुत ज़्यादा लगाव है पेंटिंग के
1: हाँ
0: क्षेत्र में,
1: जी
0: ये बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताइए कि आप ड्राइंग कला के क्षेत्र में क्या क्या डिज़ाइन और क्या क्या किस तरह के चित्र बना सकती हैं, बताइए।
1: ड्राइंग कला के क्षेत्र में जैसे मैं निप पेंटिंग बना लेती हूँ, स्टोन
0: जी
1: पेंटिंग बना लेती हूँ
0: जी
1: और ये पोहा पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है
0: जी
1: और फैब्रिक पेंटिंग है, इस तरह की
0: जी
1: काफ़ी पेंटिंग वगैरह बना लेती हूँ मैं।
0: अच्छा, तो आप ये बताइए, आप किसी जैसे आजकल होता है ना जीवित आदमी की तस्वीर बनाते हैं या
1: हाँ
0: पशु
1: हाँ
0: पक्षी की या प्राकृतिक दृश्य देखकर हूबहू बना सकती हैं क्या आप?
1: हाँ जी, अगर मैं कोशिश करूँ और पूरी तरीके से उसमें मन लगाऊँ बनाने में तो मैं
0: जी
1: हूबहू बना सकती हूँ।
0: जी बहुत अच्छी बात है। ये तो मतलब कि आपके सामने कोई भी अगर कोई दृश्य हो या कुछ भी हो तो आप उसको एक पेपर पे या किसी भी चीज पर उतार सकती हैं बिल्कुल
1: हाँ,
0: सामने,
1: अगर
0: है
1: मैं
0: ना?
1: कोशिश करूँ तो मैं उसको अच्छी तरीके से बना सकती हूँ और उतार भी सकती हूँ
0: अच्छा, तो
1: उसको।
0: ये बताइए, आप इसके लिए पहले चित्र देखती हैं या उसे अपने सामने रखकर बनाती हैं या फिर बस अपने दिमाग में इमेजिन करके और चित्र बनाती हैं?
1: सबसे पहले तो मैं चित्र को ध्यान से देखती हूँ,
0: जी
1: फिर उसके सामने रखकर फिर मैं बनाती हूँ। अगर मुझे कुछ मतलब उसमें लगता है कि मुझे दोबारा से उसको देखना है या उसको समझना है, तो मैं उसको दोबारा से देखने या समझने की कोशिश करती हूँ फिर बनाने के लिए,
0: जी
1: और
0: बिल्कुल।
1: पूरी तरीके से उसमें मन लगाती हूँ कि ये मुझे चित्र पूरा करना है इस तरीके से।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी
1: अपना
0: बात है
1: मन
0: कि आप
1: मतलब
0: पहले,
1: कहीं और नहीं लगाती हूँ, इधर उधर मन नहीं लगाती अपना।
0: जी मतलब आप एक जगह कंसंट्रेशन बनाती हैं अपना, पूरा
1: हाँ
0: ध्यान लगाती हैं और उसके
1: हाँ
0: बाद वो
1: जी
0: चित्र वैसा का वैसा ही बना सकती हैं।
1: हाँ जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि ड्राइंग कला के अतिरिक्त आप और कौन कौन सी कला जानती हैं, जैसे संगीत, भजन, डांस वगैरह? हमारे श्रोताओं को कोई भजन वगैरह कुछ गाकर सुनाएंगे आप?
1: हाँ वैसे तो मेरी रुचि भजन में भी है, डांस में भी है, सब चीज़ों में थोड़ी थोड़ी रुचि है, अखबारों में लिखने में भी रुचि है मेरी,
0: जी
1: और
0: तो
1: भजन
0: अच्छी
1: गाने की तो फिर
0: चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी आपसे भजन जरूर सुनेंगे नीलम जी। अच्छा, एक
1: हाँ
0: सवाल और बताइए कि ड्राइंग बनाते समय यदि कोई गलती हो जाती है या कोई चित्र ठीक प्रकार से नहीं बनता तो पेंटिंग फिर दोबारा से करती है या उसी को मिटाकर उसी में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके ठीक करती है?
1: हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभी कि कुछ गलती हो जाती है बनाते बनाते, फिर मैं उसको जहाँ से गलती होती है वहीं से उसको मिटा के दोबारा से बना देती हूँ, या फिर अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा ही गलती हुई है फिर मैं उसको पूरे चित्र को हटाकर फिर दोबारा से उसका स्केच दोबारा बनाती हूँ
0: सही
1: फिर।
0: बात है, चाहे उसको ठीक करके बनाए चाहे फिर
1: हाँ
0: दोबारा से बनाए, जो
1: हाँ
0: मेन चीज है वो ये है कि पेंटिंग बहुत ही
1: बहुत
0: खूबसूरत होनी
1: खूबसूरत बननी
0: चाहिए।
1: चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े बनाने के
0: जी
1: लिए और
0: अच्छा,
1: कितना भी मुझे चाहे समय देना पड़े।
0: तो अब आप ये बताइए कि पेंटिंग डिजाइन के क्षेत्र में या पेंटिंग कार्य के लिए कौन कौन सा सामान होता है या कौन कौन से यंत्र होते हैं जिनको जुटाना पड़ता है, जिनके बिना पेंटिंग बनाना पॉसिबल ही नहीं होता?
1: पेंटिंग के लिए तो मेन यही कलर वगैरह हैं और कागज़ हैं,

0: नशे, यही
1: जी
0: सब चीजें मेन होती हैं जो कि हमारे पास जरूर होनी चाहिए। इसके बिना तो पेंटिंग आपकी बन ही नहीं सकती है।
1: जी
0: और जैसे अलग अलग तरीके की जो पेंटिंग होती हैं, जैसे कि निब पेंटिंग है, निब पेंटिंग के
1: जी
0: लिए निब होनी चाहिए,
1: जी
0: कलर होने चाहिए। और जैसे कि ऑयल पेंटिंग है जो कि ग्लास पर बनती है, शीशे पर बनती है, तो
1: जी
0: उसके लिए ऑयल कलर होने चाहिए। इस तरह से स्टोन पेंटिंग है, स्टोन पेंटिंग के लिए स्टोन, छोटे छोटे स्टोन होते हैं, कलर्ड स्टोन आते
1: जी
0: हैं बाजार में, वे होने चाहिए। इस तरीके से जिस प्रकार की हम पेंटिंग बनाते हैं, उस प्रकार की पेंटिंग के लिए उसी प्रकार का हमारे पास सामान होना चाहिए।
1: जी अच्छा, आपने अभी जैसे पहले बात की थी अभी पॉट पेंटिंग के बारे में, तो पॉट पेंटिंग में ये बताइए, जैसे क्ले मिट्टी से पेंटिंग बनती है तो उसके लिए मिट्टी या जैसे आप बता रहे निब वगैरह जो भी जरूरी सामान होता है वो सब इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाता है या फिर कुछ?
0: हाँ, मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं तो मिल ही जाता है मार्केट में।
1: अच्छा, मतलब आप पहले पेंटिंग बनाने से पहले जिस भी तरह की पेंटिंग बनानी है तो जरूरी सामान बाजार से जाके एक लिस्ट बना के फिर सारी
0: हाँ
1: चीजें
0: हाँ
1: परचेज करते हैं पहले, उसके बाद में फिर उसी के
0: हाँ जो भी मुझे
1: अकॉर्डिंग आप
0: पेंटिंग
1: अप्लाई
0: बनानी,
1: करते हैं।
0: हाँ जो भी पेंटिंग मुझे बनानी होती है उसको मैं पहले लिख लेती हूँ कागज में कि मुझे ये सामान चाहिए, और फिर मार्केट से सारा सामान लाने के बाद उसके बाद मैं पेंटिंग बनाना शुरू करती हूँ, जिससे कि मुझे बीच में कोई दिक्कत ना हो कि मुझे ये सामान लेने दोबारा जाना है बीच में ही पेंटिंग अपनी छोड़कर।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, और फिर भी अगर किसी चीज़ की जरूरत हो, एक आध कुछ रह जाए तो बाद में उसको फिर लाया जा सकता है ना,
0: हाँ
1: ऐसी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है।
0: हाँ हाँ
1: अच्छा, अब आप ये बताइए कि इस कला के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई जोखिम होता है या फिर आसानी से बस हो जाता है, कोई किसी तरह का नुकसान वगैरह भी हो सकता है क्या?
0: हाँ ये है कि जब हम पेंटिंग बनाते हैं तब थोड़ा जोखिम का भी डर रहता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा हमारे पास आकर बैठ गया है और उसके कोई कलर उसके हाथ में लग गया, तो फिर इस प्रकार से इन सब जोखिमों का ध्यान देना चाहिए कि या फिर उसकी आँख में कोई कलर ना घुस जाए, या वे बच्चा ब्रश को उठाकर कहीं अपनी आँख में ना दे दे। इसीलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब हम पेंटिंग कर रहे हैं उस समय पर हमारे पास कोई बच्चा तो नहीं बैठा, या
1: जी
0: फिर हमारी जो ब्रश है वे हमारी कहीं आँख में ही ना चला जाए, हमारी नाक में
1: जी
0: ना चला जाए, इन बातों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही, और ये भी कह सकते हैं एक तरह से कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कलर
0: हाँ
1: इस्तेमाल करना
0: जी
1: चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना खराब तरह के कलर या फिर
0: हाँ
1: सस्ते के चक्कर
0: हाँ
1: में
0: ऐसा
1: हम।
0: होता है कि क्या होता है कि सस्ते के चक्कर में कुछ लोग घटिया क्वालिटी के कलर ले आते हैं,
1: जी
0: उससे क्या है कि अगर किसी बच्चे के हाथ पर ही वो कलर लग जाता है तो फिर
1: जी
0: उसकी त्वचा जो है खराब होने का डर रहता है, इसलिए हमें बढ़िया क्वालिटी के कलर ही लाकर पेंटिंग करनी चाहिए।
1: अच्छा, और ये सारे जोखिमों से बचने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम ग्लव्स पहनकर या फिर अपने फेस को किसी चीज से या किसी तरह से पैक करके फिर आराम से पेंटिंग बनाएं, जिससे कि जो भी उसके दुष्प्रभाव होंगे वो हमारे
0: हाँ
1: शरीर पर नहीं होंगे
0: हाँ
1: ना।
0: हाँ ये भी बात सही है, और हम थोड़ा ऑयल भी अपने हाथों पर लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि अगर कोई कलर हमारे हाथ में लग भी जाए तो वो हमारी त्वचा पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल लेकर भी अपने हाथ पर लगा सकते हैं, दोनों हाथों
1: जी
0: पर।
1: हाँ, आपने तो ये बहुत अच्छे टिप्स हमारे श्रोताओं को दिए हैं, आप भी श्रोता इस चीज का ध्यान रखें और हमेशा पेंटिंग बनाते समय ये सारी सावधानियां जो हैं ये बरतें। अच्छा, आप ये बताइए पेंटिंग कला को सीखने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लग जाता है, और इस कला के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भविष्य में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं या फिर नहीं?
0: जी टाइम की तो ये बात है कि अगर हम कंप्यूटर के द्वारा सीखेंगे, पेंटिंग सीखेंगे,
1: जी
0: या हम वेब डिजाइन का कोर्स करेंगे तो वे पूरा 1 ईयर का होता है, लेकिन सीखने के ऊपर है, अगर कोई चाहे तो उसको 6 मंथ में भी पूरा कर सकता है। और जैसे कि स्टोन पेंटिंग है, फैब्रिक पेंटिंग है, निप पेंटिंग है, अगर हम इनको करते हैं तो ये पूरे 10 दिन में हो जाती हैं, लेकिन अगर किसी में ज़्यादा लगन है, ज़्यादा ही उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत है, तो
1: जी
0: वो चाहे तो 5 दिन में भी उसको पूरा कर सकता है,
1: जी
0: इसीलिए
1: बिल्कुल
0: ये तो इंसान के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है कि उसमें
1: जी
0: लगन कितनी है।
1: जी बिल्कुल सही है, मतलब लगन से कोई भी काम जो होता है वो मुश्किल नहीं
0: हाँ
1: होता।
0: जी
1: अगर कोई भी बंदा पूरी मेहनत से पूरी लगन के साथ कोई काम करे या पेंटिंग सीखने की कोशिश करे तो वो बहुत जल्दी ही
0: हाँ
1: उसको
0: जल्दी सीख
1: अपने
0: सकता
1: जीवन
0: है।
1: में शामिल कर सकता है और
0: हाँ जी
1: पेंटिंग बना सकता है,
0: हाँ जी
1: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए युवा श्रोताओं के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी जो पेंटिंग या और कोई कलाएं सीखना चाहते हैं?
0: जी मैं तो युवा श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि वे जो भी कुछ सीखना चाहते हैं, या वे पेंटिंग सीखें, या वे बिजनेस में आगे जा रहे हैं, या फिर वे सर्विस में आगे जा रहे हैं, वे जो भी
1: जी
0: काम करें सब लगन से और मेहनत से करें, वे ये सोच लें कि मुझे ये काम अपना पूरा करना ही है, चाहे इसमें मुझे कितनी भी विपत्ति आए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन सारी बाधाओं को और सारी विपत्तियों को तोड़कर उसे आगे बढ़ने की अगर उसमें हिम्मत होगी तो उस व्यक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता है।
1: जी बहुत अच्छी बात, बहुत सही बात आपने कही है कि अगर मेहनत करने का इंसान के अंदर ध्येय होगा और पूरी लगन के साथ वो कोई भी काम करेगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, तो नीलम जी आप ये बताइए कि बहुत सारी नई नई तरह की पेंटिंग्स भी आती रहती हैं, तो इस टाइम जो ट्रेंड में चल रहा है सबसे ज्यादा

0: आजकल क्या है जो युवाओं को आकर्षित करता है अपनी ओर, किस तरह की नई पेंटिंग आज के समय में प्रचलन में है?
1: नई पेंटिंग में तो ये है कि जैसे पोवा पेंटिंग भी है
0: अच्छा
1: और ये ग्लास पेंटिंग वगैरह हैं, इस तरह की पेंटिंगें होती हैं जो,
0: जी
1: और जैसे कि हम अपने घर में क्या है कि बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए पेंटिंग पर मोती भी लगा सकते हैं,
0: जी
1: और जैसे कि जो प्लास्टिक के ग्लास आते हैं, कलर्ड ग्लास आते हैं, उनसे टेबल लैंप वगैरह भी बनती हैं घर में,
0: हाँ
1: तो इस प्रकार हम बच्चों के मनोरंजन के लिए भी उस पेंटिंग को काफ़ी सुंदर बना सकते हैं आगे के लिए।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये है कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं उन सबको जोड़कर या किसी भी तरह के नए नए क्रिएशन अपने दिमाग में लाकर, और
1: हाँ
0: हम
1: जी,
0: अच्छी अच्छी पेंटिंग्स और सुंदर सुंदर पेंटिंग बना
1: हाँ
0: सकते
1: बना
0: हैं जो
1: सकते
0: लोगों को
1: हैं।
0: अपनी ओर आकर्षित करें। बहुत अच्छी बात है नीलम जी। अच्छा चलिए, आइए चलते चलते आपसे एक छोटा सा भजन गाकर सुन लेते हैं। आप बस दो लाइनें हमारे श्रोताओं को

0: खूब बहुत खूब भजन आपने हमको गाकर सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए इसी के साथ अब इस भेंट वार्ता को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, जो आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को पेंटिंग के बारे में जानकारी दी और इतने सारे अच्छे अच्छे टिप्स दिए। तो श्रोताओं, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे साथ भेंट वार्ता में थी नीलम जी और संचालन कर रही थी मैं अक्षया सक्सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे व्यक्तिगत विकास वार्ता के क्रम में ये साक्षात्कार। युवा कलाकार नीलम अग्रवाल से बातचीत कर रही थी अक्षया सक्सेना। दोस्तों, आज मिलाद उन नबी की एक ऐसा अवसर जिसकी हम बात कर रहे हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म और उनके जीवन संदेश को याद करने का ये दिन अवसर प्रदान करता है। मिलाद उन नबी को मुस्लिम संप्रदाय श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाता है। इस अवसर पर धार्मिक सभाएं, प्रार्थनाएं, नात और सामाजिक सेवाओं से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जीवन और शिक्षाओं में सत्य, दया, करुणा, न्याय, भाईचारे और मानवता को विशेष महत्व दिया गया है। और यही कारण है कि मिलाद उन नबी केवल एक धार्मिक अवसर नहीं बल्कि अपने आचरण पर विचार करने का भी अवसर बन जाता है। आज के युवा समाज में रहते हैं और समाज को दिशा देने की सबसे बड़ी क्षमता भी युवाओं में ही होती है, और ऐसे में इस अवसर का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने व्यवहार में प्रेम, सहिष्णुता और संवेदनशीलता को स्थान दें। अपने आसपास अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। विविधता हमारी शक्ति है। एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना स्वास्थ्य और समावेशी समाज की पहचान है। मिलाद उन नबी का अवसर हमें यह भी याद दिलाता है कि धार्मिक शिक्षाओं का वास्तविक मूल्य तभी है जब वे हमारे व्यवहार में दिखाई दें, जब हम जरूरतमंद की मदद करें, कमजोर के प्रति संवेदनशील रहें और अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई रखें और समाज में शांति और भाईचारे को बढ़ावा दें।

0: ए आर रहमान, जावेद अली और श्रेय घोषाल की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे रॉक स्टार फिल्म का ये गीत। और इसी के साथ युववाणी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अरविंद को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा नंबर है 9779701075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का

0: आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। संस्था ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए CM इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की उम्र तक पढ़ना और लिखना सीख सके। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 का औपचारिक समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए थे और पारी घोषित कर दी थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे ब्रज काव्य सुधा के क्रम में ब्रजभाषा काव्य पाठ। कवि होंगे अटल राम चतुर्वेदी। संध्या 6:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन प्रसारित किया जाएगा। संध्या 6:50 पर किसान श्रोता सुनेंगे हेलो ब्रज ग्रामीण फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय होगा खरीफ की खड़ी फसलों में देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में होंगे डॉक्टर अमर सिंह। संध्या 7:31 पर श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशें फिल्में गीतों का कार्यक्रम शाम सहनी प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 8 बजे, रात्रि 9:15 पर और रात्रि 10 बजे।

रात्रि 8:20 पर देशगान प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रात्रि 9:15 पर चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे विदुषी कमल केलकर का ख्याल गायन। राग होंगे देव गंधार,

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। किसान भाइयों, इस बुधवार यानी आज शाम 6:50 से 30 मिनट अवधि के हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में आज का विषय है खरीफ की खड़ी फसलों में देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर अमर सिंह, कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, खरीफ की खड़ी फसलों जैसे धान, बाजरा, मक्का, कपास, दलहनी एवं तिलहनी फसलों में लगने वाले रोग एवं कीड़ों से बचाव के उपाय और खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई एवं खाद उर्वरक की व्यवस्था पर जैसे मुद्दों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह, कृषि वैज्ञानिक से। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-253-0135 पर फोन करके अथवा व्हाट्सएप नंबर 9412-225575 पर संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का समय होगा मंगलवार यानी आज शाम 6:50 से संध्या 7:20 तक। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में बालकृष्ण बाल की ये देशभक्ति परक रचना, और इसी रचना के साथ ही देशकान का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में ब्रज काव्य सुधा के क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रज भाषा काव्य पाठ। कवि हैं अटल राम चतुर्वेदी।
1: श्रोताओं, या समय सावन को महीना चल रहे हो है। ब्रज में सावन को महत्व या महीना की खास मिष्ठान घीवर फेनी के संगई प्रकृति की अद्भुत छटा कारी कारी घटा चारों तरफ हरियाली के संग और बढ़ जावे। या अवसर पे मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हूँ सावन से संबंधित कछु रचनाएं। सावन को महीना मौसम सुहानो, घेवर के खाए हुए को ढूंढ लो बहानो। व्यंजन अनूठो ये स्वाद में है मधुर बहुत, वर्ष भरे में मात्र याई महा आनो। बहन बेटी आमे घर उनको खवाओ याए, मेहमान कुंभी संग बूरे के खवानो। अटल या घेवर की कहाँ लो बड़ाई करूं, मीठेन में घेवर को जेवर सो जानो। गिर के आओ कारे मेघा अमृत जले बरसाओ,

अटल सुख रे बाग बगीचा ताल तलैया सारे, सबके तन पे वही मरोरी खुजा खुजा सब हारे। बुझे बुझे से सबके मुखड़ा इनकू तुम चमकाओ, घिर के आओ कारे मेघा अमृत जल बरसाओ। मोर पपीहा कोयल देखो सब गुमसुम बैठे हैं, सभी सोच रहे।

अमृत जल बरसाओ, आयो सावन आयो सावन, सुहानो मने भावन, कि मने मुसे कायो है।

बोली सावन बरसो, एक बदरिया हंस के आई बोली सावन बरसो, कारो बदरा छायो ऊपर देख जाए मन तरसो, चमकी चपला गेरे जो बारंबार, कि सावन आयो है आयो सावन सुहानो मने भावन, कि मने मुस्कायो है, मोर पपिया वन मन बोले मीठे गीत सुना में, राह देखती सजनी व्याकुल पर सायन ना आ।

चंदा मुख आचरते चमके देख सजन हर्षावे। चंदा मुख आचरते चमके देख सजन हर्षावे। धरा है रही शीतल मन को ताप बढ़ती जावे। छुपो मठ में

गिर के आई है घटा घने घोर, कि आयो महीना सावन को,

और कि आयो महीना सावन को गिर के आई है घटा घनघोर कि आयो महीना सावन को मोर पपिया सबने मिलके ऐसो शोर मचायो बीच बिजरी चमक रही है जी मेरो घबरायो भागम भाग।

मोर के आयो मैना सावन को। सखी सहेली झूला झूले कजरी गीत सुनामे। सखी सहेली झूला झूले कजरी गीत सुनामे। अटल पीर मेरे मन में जा।

0: फिरते चैन चुरावे आयो भीगो सावन, फिरते चैन चुरावे आयो भीगो सावन, नैनी मतवारी बूंदन को स्वागत करिए। घिरके आमे श्याम घटाएं पर मत डरिए, नैनी मतवारी बूंदन को स्वागत करिए। प्यासो तन मन करे प्रतीक्षा वर्षा आवे, मोर नाच के पंख बिखेरे कोयल गावे, मुरझाए पुष्पन पे फिरते यौवन छावे, छुपे को करे इशारो आप समझिए, नैनी मतवारी बूंदन को स्वागत करिए। चमक रही है चपला देखो हमें डराती, दूर गगन ते ये क्षण क्षण में आती जाती, सन्नाटे हैं दिन में जैसे रात वही है, चकाचौंध है के ना हमते आप बिछड़िए, नैनी मतवारी बूंदन को स्वागत करिए। अटल सुहानो मौसम कछ तो हमें सुनाओ, हरियाली ही हरियाली है मत शर्माओ, खिली वही है डाल डाल और पत्ती पत्ती, करके मन उन्मुक्त आप मेरे संग खिलिए। फिरते चैन चुरावे आयो भींगो सावन, नैनी मतवारी बूंदन को स्वागत करिए। घिरके आमे श्याम घटाएं पर मत डरिए, नैनी मतवारी बूंदन को स्वागत करिए।
1: ब्रज काव्य सुधा के क्रम में अभी आप सुन रहे थे ये ब्रज भाषा काव्य पाठ। कवि थे अटल राम चतुर्वेदी। इसी के साथ ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

之等。हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश है सिम्स एलो डॉक्टर में इस गुरुवार 27 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मोटापे से जुड़ी समस्याएं और समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलवंत सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ चिकित्सक इंटरनल मेडिसिन आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-253-01-35 पर फोन करके अथवा व्हाट्सएप नंबर 94122255 पर संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मोटापा, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, पित्त की पथरी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और सांस फूलना आदि से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है मोटापे से जुड़ी समस्याएं और समाधान। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और यशोदास के स्वर में फिल्म अलग अलग का ये भजन। रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत आरडी बर्मन का। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में फिल्म ब्रजभूमि से ये भजन। रचना और संगीत रविंद्र जैन के हैं।

अनुराधा पौडवाल के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ब्रजभूमि फिल्म की ये भक्ति रचना। रचनाकार थे रविंद्र जैन और संगीत भी रविंद्र जैन का ही था। आइए अब आपको सुनवाते हैं रविंद्र जैन और साथियों के स्वरों में फिल्म गोपाल कृष्ण की ये भक्ति रचना।

अभी आप रविंद्र जैन और साथियों के स्वरों में गोपाल कृष्ण फिल्म से ये भक्ति रचना सुन रहे थे। इसी रचना के साथ ही

भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिमसेलर डॉक्टर में इस गुरुवार 27 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है मोटापे से जुड़ी समस्याएं और समाधान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर कुलवंत सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ चिकित्सक इंटरनल मेडिसिन आकाश सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-253-0135 पर फोन करके अथवा व्हाट्सएप नंबर 9412225575 पर संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में मोटापा, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, पित्त की फतरी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और सांस फूलना आदि से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है मोटापे से जुड़ी समस्याएं और समाधान। सूचना समाप्त हुई।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:50 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण। आज का विषय है करीब की खड़ी फसलों में देखभाल। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अमर सिंह और इनसे बातचीत करेंगे मृणालिनी दीक्षित और दीपक गोस्वामी।

0: हेलो ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को, मृणालिनी बहन,
1: और दीपक गोस्वामी की राम राम।
0: राम राम। दीपक भाई देखो, खेती बाड़ी को कार्यक्रम जब संजापू होवे ना, तो हमारे किसान भैया अपने खेतन ते आए कि बड़ी देर बेसब्री ते इंतजार करें कि आज हमारे काजे एक नई जानकारी कहाँ आ रही
1: और
0: है।
1: आज को कार्यक्रम है भी ऐसा कि जाको हमारे किसान भैया बेसब्री से इंतजार कर।
0: हाँ बिल्कुल। तो भैया आज को हमारा कार्यक्रम है हेलो ब्रज ग्रामीण फोन इन कार्यक्रम, जाको आप बहुत इंतजार करें। खरीफ की खड़ी फसलन में देखभाल और जानकारी देंगे आपको डॉक्टर अमर सिंह। लेकिन भैया देखो, जानकारी लेवे ते पहले आपे फोन करना पड़ेगा। फोन करने के लिए हमारा नंबर है 0565-2530-135। भैया आसानी से फोन मिलाकर हमारे किसान भैया बहन अपने मोबाइल से मिलाकर डॉक्टर साहब से अपनी खरीफ की खड़ी फसलन में होने वाली कोई भी परेशानी को समाधान फोन के जरिए प्राप्त कर सकें। और दीपक भाई, हमारे किसान भैया की समस्याओं को बड़ा ध्यान से सुनियो। और डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका
1: नमस्ते
0: स्वागत है
1: नमस्ते
0: हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्ते मृणाल जी। तो भैया आज को जो कार्यक्रम है अपने आप में विशेष कार्यक्रम है, आप जानो ही हो हेलो ब्रज ग्रामीण। और यह कार्यक्रम को जो उद्देश्य है वो यही है कि आपकी जो समस्या है आप देख रहे हो, जो आपकी खेती में आ रही है, आपके पशुपालन में आ रही है, इनके संबंध में विशेषज्ञ से आपकी समाधान कराया जाए। तो भैया आज को जो विषय है वो है खरीफ की खड़ी फसलन में देखभाल। और आज हमारे संग हैं डॉक्टर अमर सिंह, जो कि सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं कृषि महाविद्यालय कुमेर भरतपुर से। तो आपको डॉक्टर साहब यह कार्यक्रम में स्वागत है।
2: बहुत
1: तो
2: बहुत
1: जो किसान
2: धन्यवाद।
1: भैया जो कार्यक्रम में सुन रहे हैं और वे अगर अपनी समस्या को पूछना चाहें तो हमारा नंबर है, जो मथुरा से बाहर के जो हमारे भैया बहन हैं वे

0: 05 65 लगाए के 25 30 135 या नंबर पे आप संपर्क कर सके। तो डॉक्टर साहब, जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: निश्चित रूप से गोस्वामी जी, ये जो खड़ी फसलों पे, खरीफ की जो खड़ी फसल है, विशेष रूप से हमारे ब्रज प्रदेश के अंदर, चूंकि ये तो बाढ़ वाला एरिया रहा है, तो यहाँ जो खड़ी हुई इस समय जो फसल है विशेष रूप से, क्योंकि कुछ पिछले

0: जो फसल है विशेष रूप से, क्योंकि कुछ पिछले अगर आप 8-10 साल से देखो तो बरसात की कुछ मात्रा कम हो रही है और बाढ़ जैसी स्थितियां तो बहुत ज़्यादा आती नहीं है। तो अभी कुछ जो जो फसल है विशेष रूप से यहाँ पे जो है ब्रज प्रदेश के अंदर, उनमें विशेष रूप से बाजरा है, धान है, कपास है, और चारे के लिए आपका जो है ज्वार की फसल ले रहा है किस काश्तकार, और इसके साथ साथ कुछ ढेंचा की भी फसल ले रहा है। क्योंकि ढेंचा में भी जो है पिछले सालों से ऐसा देखने में आया है कि पहले तो ढेंचा लेके और उसको जोतता था, वो वापस जो है उसको खेत में पलटता था और रबी की फसल लगाता था। लेकिन ढेंचा चूंकि दलहनी फसल है और अभी आजकल चारे के काम भी आ रहा है, तो उस हिसाब से उसको जो है वो उसके रूप में भी जो है प्रयोग में ले रहा है, पशुओं के कंसंट्रेशन के रूप में जो है दाने और चारे के रूप में भी काम में लेता है, इसलिए ढेंचा को भी वो पका रहा है। तो ये जो कुछ फसलें हैं जिनके बारे में कुछ जो क्षेत्र हैं छोटे छोटे छोटे छोटे, उनमें तिल की जैसे फसल है, दलहनी
1: तो डॉक्टर
0: दलह
1: साहब भैया हमसे जुड़ना चाहेंगे।
0: जी
1: हेलो हेलो,
0: हेलो हेलो हाँ हेलो
1: संपर्क शायद भैया से हमारा टूट गया है। तो डॉक्टर साहब, जो विषय हमारा है वो बहुत
0: जी
1: ही महत्वपूर्ण है। वो विषय यही है
0: जी
1: कि हमारे ब्रज क्षेत्र में जो हमारे
0: जी
1: किसान भैया हैं,
0: जी
1: क्योंकि यह समय वर्षा हमारी बहुत ज़्यादा सही स्थिति में ना
0: नहीं
1: आए,
0: है
1: तो
0: नहीं,
1: बिना क्या विशेष ऐसी सावधानी रखनी चाहिए जैसे उनको फसल में लागतों कम लगे और
0: बिल्कुल
1: गुणवत्तापूर्ण फसल हम ले सकें।
0: देखो ये निश्चित रूप से ये तो अभी की समसामयिक फसलों पे हम लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमको किसान भाइयों इस समय खरीफ की फसल के लिए, जो कि भारत सरकार भी चाहती है, आपका स्वास्थ्य भी चाहता है और आपकी मांग भी है, हमको जो है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि अब जो है हमारी पैदावार में की मात्रा में कमी नहीं हो रही, जब जब से ये उर्वरकों का वो आया है समय, तब से जो है निश्चित रूप से हेलो हेलो
1: हाँ
0: तो जब से जो है इस तरह का जो जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, और अब हर आदमी को जो है कम से कम खाने के लिए एक गुणवत्तापूर्ण भोजन चाहिए। चूंकि भारत सरकार की तरफ से भी जो जितने भी माइनर मिलेट थे, मेजर मिलेट थे, जिनको कि हम लोग जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने उनको श्री अन्न के नाम से भी कहा है,
1: जी,
0: और बाजरा तो आप ताज्जुब करोगे कि बाजरे को तो बिल्कुल भारत के अंदर एक श्री अन्न के रूप में वो काम में
1: हेलो
0: ले रहे हैं।
1: हेलो
0: तो उस हिसाब से जो है उसको उसकी खेती में हमको ये करना
1: हेलो,
0: चाहिए कि कम से कम मात्रा में हमको जो है उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए,
1: तो
0: निश्चित
1: डॉक्टर
0: रूप
1: साहब ये
0: से
1: तो बात रही उर्वरक की,
0: उर्वरक कीट
1: लेकिन मुख्यतः
0: हेलो
1: हाँ जी,
0: कीटनाशकों की
1: हाँ जी, किसान भैया हमसे
0: हेलो
1: जुड़े।
0: जी
1: हेलो, हाँ जी, राम राम साहब।
2: राम राम जी। अरे वो क्या,
1: कहाँ से बोल रहे हैं साहब आप?
2: बसई से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी, कहाँ
0: बोल
1: नाम है आपको?
2: हीरा सिंह है हमारा नाम।
1: हाँ, अपना प्रश्न पूछो डॉक्टर साहब, प्रश्न सुनने हैं।
2: मतलब ये कि धान की फसल में सुर्रा लग गो है,
0: धान की फसल में
2: सुर्रा सुर्रा लग गो, पेड़ सूख रहे हैं सर।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये एक बात बताओ, कब की लगाई हुई है, कितने दिन है गे
2: यार करीब ऐसे है 1.5 महीना,
0: हैं? 1.5 महीना करीब
2: डेढ़
0: है गे,
2: महीना मतलब
0: मतलब पत्ती
2: अरे
0: ऐसी झुलसी गई है,
2: है
0: पत्ती इन पे झुलसा को सो झुलसी आ रही है।
2: ना, मतलब वो पेड़ पीड़ो पर रो,
0: हाँ
2: मतलब
0: हाँ
2: मर रहा
0: वो
2: है
0: ही
2: वो।
0: आ रहा हूँ, जो ब्लास्ट है ना, ब्लास्ट जो होता है उसके लिए आपको जो है ट्राई साइक्लोजोल, अब आप कहीं हो तो किसी उस पर लिख लो, एक जो रोग है ये एक्चुअल में, और इस रोग को
2: हाँ
0: एक काम तो ये करो कि अगर उसमें पानी नहीं है अभी खेत के अंदर, तो वामे जो है ना कोई हल्की जो है वो हो सकती है गुड़ाई वगैरह करवा सकते हो, या पानी की मात्रा है उसके अंदर,
2: पानी भर रहा था
0: पानी
2: फसल
0: भर
2: का
0: रहे हो
2: तो।
0: ना,
2: हाँ
0: तो फिर पानी, एक तो देखो पानी इस समय कम की जरूरत है, जब बाली निकले आवे तब से लेके और दाने बने तब तक तो पानी रहना ही चाहिए, इस समय पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एयर का जो आवश्यकता जो है ना, जिससे ऑक्सीजन की होगी, वो उसकी कमी होने से भी कई बार पेड़ों की जो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो दो तीन जो दवाई मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें जो है एक ट्राई साइक्लोजोल 75% का जो है आता है WP का, उसकी 6% की दर से छिड़काव करना खड़ी फसल के ऊपर, जिससे कि
2: अच्छा
0: उसका जो
2: भैया,
0: है एक, मुझे ये लग रहा है कि पानी भरे हुए खेत हैं इस तरह के, नीचे खेत हैं क्या,
2: नीचे
0: धारी पत्तों के
2: बरसात
0: ऊपर धारी हारी सी दिखाई दे रही है,
2: बरसात है वो, है रही है
0: तो
2: रोजाना सर।
0: उसमें जो है जिंक की कमी भी हो सकती है,

0: जिंक जो है ना हमारा, जिंक जो हम लोग जो है, जैसे आपने कई बार देखा होगा जौ पे या गेहूं पे भी आ जाती है उस तरह की पीलापन, तो जिंक सल्फेट भी जो है, आपने जिंक तो डाले नहीं होगा अभी, क्या डाई डाली होगी और यूरिया डाले हुए?
1: मतलब जिंक डालिए, यूरिया मिलाए और खाद डाले हो, खत्ता
0: नहीं, जिंक जिंक कौन सी, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिंक वाला कोई यूरिया जो है कौन सा लिया है आपने जिंक?
1: दयाल को
0: है,
1: दयाल कंपनी,
0: अच्छा दयाल वाला डाला हुआ है, तो जिंक वाला नहीं है ये, केवल आपकी ब्लास्ट ही है, नेक ब्लास्ट जो है जिसको हम पत्ती का ब्लास्ट भी कहते हैं, उसकी वजह से इस तरह का जो है ये आ रहा है इसके ऊपर। इसमें यूरिया वगैरह की ज्यादा दैनिक जरूरत नहीं है, कि पीलापन हो तो यूरिया से इसको रिकवर कर लें, ऐसा नहीं है। इसमें तो आपको ये जो है मैंने दवाई बताई है आपको, ट्राईसाइक्लोजोल, इसका 75 WPC का आपको खरीदना पड़ेगा, और वो 0.6% के हिसाब से, यानी कि 600 लीटर पानी में 600 ग्राम की दर से घोल बना के और छिड़काव करना पड़ेगा। अच्छा, ये व्यवस्था आपको अभी जो है धान के अंदर करनी पड़ेगी।
1: अच्छा,
0: तो हम लोग जो जिक्र कर रहे थे, निश्चित रूप से इस समय जो खरीफ के अंदर जो फसल खड़ी है, उनमें दो ही ऐसे बिंदु हैं जो इस समय किए जा सकते हैं। या तो किसान भाइयों का जो जैसे हम ये कहते हैं भाई, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और जो गोबर खाद वगैरह आपने लगाई है या जिंक लगाई है, वो जो लगा दी, उसके अलावा नाइट्रोजन को हम ये कहते हैं कि उसको आप बचा के रखो, एक बार में मत दो कभी भी, एक बार में दोगे तो निश्चित रूप से उसका नुकसान ही होगा, वो पानी में नीचे चली जाएगी।
2: एक किसान भैया
0: जी, जी
2: हेलो,
3: यस सर,
2: हाँ जी, राम राम सर।
3: सर हमारा एक सवाल था,
2: आप एक काम करो, सवाल तो पूछ लियो लेकिन पहले अपने रेडियो है, अपने मोबाइल है, थोड़ा दूर करो जैसे कि आपकी आवाज साफ आ जाए। जी
3: सर,
0: कौन बोल रहे हैं,
2: कहाँ से बोल रहे हैं भैया आप?
3: हम ग्राम चौहान जिला मथुरा से बोल रहे हैं।
2: हाँ जी, समस्या बताओ अपनी।
3: हमारे धान में काली
0: गिटार लग
2: गई है, काली
0: गिटार लग रही है। अच्छा अच्छा, किसमें?
2: धान में,
3: धान में,
0: तो धान धान पे जो है ना इस समय कौन सी स्टेज पे आ गए धान में, मतलब वो कल्ले छटके बा में कितने दिन है गए यहाँ पे लगाए हुए?
3: वो काट रही है धान को,
0: हैं
3: गिराड़, धान को काट रही है।
2: इनका कहना यह है कि डॉक्टर साहब, गिराड़ इनके धान में जो है नुकसान कर रही
0: नहीं
2: है।
0: वो कितने दिन की फसल हो गई है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इनने जो रोपाई करी है ना, रोपाई है कितने दिन आए गए भाई? एक तो ऐसा है कि वो उसमें बालियां सी निकली आई हो, वो स्थिति आ गई है, या उससे पहले कितने दिन है गए, एक महीना है गो, 20 दिन है गए, 25 दिन है गए?
2: हेलो,
0: ढाई महीना है गए, तो बहुत पहले का जो है निश्चित रूप से उसमें जो है, तो एक तो एक एक थोड़ा सा ये देखो कि उसमें पानी ज्यादा भरा नहीं रहे इस समय, है ना, और एक जो है उसमें अभी जो आप डालोगे ना कीटों के नियंत्रण के लिए, क्योंकि इसमें जो कीट आते हैं वो गिरार वाला जो कीट आप कह रहे हो ना, उसके लिए आपको जो है मोनोक्रोटोफॉस, 1 लीटर मोनोक्रोटोफॉस, गंदी बग है वो, 1 लीटर मोनोक्रोटोफॉस को 500 लीटर पानी में मिला के और छिड़काव करवा में 1 हेक्टर पे। तो कितना धान है आपके पास में?
3: कितना है वो?
0: के बीघे है
3: जी?
0: कितना बीघे है?
2: कितने बीघे है भैया आपका धान, कितने बीघे में? कितने?
3: दो बीघे
0: ना, तो आपको जो है ना करीब 600 मिलीलीटर के करीब जो है आपको लेनी पड़ेगी मोनोक्रोटोफॉस, और उसका जो है घोल बना के छिड़काव करवा में।
2: तो डॉक्टर साहब, ऐसी समस्या तो हमारे और भी
0: नहीं, निश्चित रूप से देखो इस समय जो धान में आने वाले जो कीट हैं, विशेष रूप से जयसिड लगता है एक तो, और थ्रिप्स लगते हैं उसमें, और हॉपर लगता है, गंधी बग लगती है, ये 4-5 तरह के तो कीड़े हैं जो लगेंगे। एक जहां जिंक की कमी है वहां पे खैरा डिजीज भी आएगी, जो पीलापन जहां धान के
2: कैसे पहचानेंगे हमारे किसान,
0: जैसे ही फसल पे अगर पीलापन है और उसने जिंक नहीं दिया है और पीलापन दिख रहा है, तो निश्चित रूप से वो आपका जो है खैरा डिजीज है, जो खैरा डिजीज को जो है कंट्रोल करने के लिए।
2: हेलो
0: जी, हेलो,
2: फोन से संपर्क कट,
0: निश्चित रूप से,
2: तो आप मैं, बता मैं, रहे हैं इसके बारे में, तो या के लिए हमारे किसान भाइयों का करना
0: नहीं, किसान भाइयों को ये देखें कि निश्चित रूप से जैसे उस समय अगर उन्होंने जिंक सल्फेट नहीं डाला, जैसे अभी बात हो रही थी जो पहला फोन कार्यक्रम था कि उन्होंने कहा कि हमने जिंक सल्फेट डाल दिया है, लेकिन अगर जिंक नहीं डाला है तो एक तो जिंक की पूर्ति करें और खड़ी फसल के ऊपर भी जिंक सल्फेट का।

0: हेलो।
1: सर,
0: हाँ जी नमस्कार, बताओ भैया।
1: सर मुझे ये जानना कि जो धान
0: हाँ
1: है
0: बोलो।
1: वो एक कीड़ा काट रहा है। कीड़ा
0: पीला पड़ रहा है, वो समझ गए।
2: कीला कीड़ा काट रहा है, कीड़ा
0: कीड़ा
1: अंदर
0: अभी कीड़े की दवाई,
1: से
0: अभी इनको जो बताई थी कीड़े की, मैं बता रहा हूं कि 1 लीटर मोनोक्रोटोफॉस पांच सौ लीटर पानी में मिला के नहाए और उसको छिड़काव करा मैं कीड़े के लिए। और हाँ ये अगर जो है ना, और ये नहीं हो तो क्लोरीपाइरीफॉस जो है ना आपका, उसको भी आप काम में ले सकते हो। क्लोरीपाइरीफॉस, ये दो दवाई हैं। अगर पीलापन आ रहा है तो दूसरा इलाज है, कीड़े के लिए नहीं है ये। कीड़े के लिए तो आपको कोई कीटनाशी जो मैंने दोनों बताए वही लेने पड़ेंगे आपको।
1: ना
0: मोनोक्रोटोफॉस जी, तो हम जो बात कर रहे थे, निश्चित रूप से इस समय क्या है, धान के ऊपर और कपास दो ऐसी फसल हैं जिन पे कीड़ों का अटैक होगा, क्योंकि कीड़ा हमेशा, जैसे नमी की मात्रा ज्यादा होगी
1: हेलो।
0: वातावरण
2: हाँ
0: में,
2: जी,
0: नमी नमी
2: राम
0: हो
2: राम सर।
0: जी।
2: हेलो हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्कार
0: जी
1: जी।
0: नमस्कार। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर?
1: हाँ जी, मैं जखनगांव से बोल रहा हूँ भाई।
2: अपना शुभ नाम बताओ सर।
1: मेरा नाम महेश है जी।
2: हाँ जी, प्रश्न पूछो, डॉक्टर साहब आपको प्रश्न सुनने हैं, बताओ।
1: अरे डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमने धान करी
0: हाँ
1: और धान हमारा 1 महीना से ज्यादा टाइम का लगा हुआ है,
0: जी
1: तो पहले तो कुछ बारिश नहीं पड़ी।
0: जी
1: बारिश, अब वो बारिश अच्छी हो गई है और पानी भी अच्छा है। अब धान में कुछ थोड़ा सा जोर नहीं है जो अच्छी तरह से होना
0: नहीं,
1: चाहिए, वृद्धि नहीं है,
0: क्या कह रहे हैं, रौनक नहीं है, रो क्या कह रहे हैं,
1: वृद्धि नहीं है, वृद्धि
2: धान में जो
0: जो
2: उत्पादन
0: ग्रोथ
2: है
0: होनी
2: वो।
0: चाहिए वो नहीं है। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये
1: हाँ,
0: बताओ, आपके जैसे उसमें आपने जिंक डाला था क्या, जिंक सल्फेट
1: जिंक जिंक डाल दी।
0: जिंक डाल दिए, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है खड़ी फसल के ऊपर, क्योंकि अभी उसमें जो ग्रोथ आए, ग्रोथ है, ग्रोथ रेगुलेटर को छा रहे हैं आजकल वृद्धि नियामक, तो ग्रोथ रेगुलेटरों में दो ग्रोथ रेगुलेटर ऐसे हैं जिनको हम जो है इनके ऊपर स्प्रे करा सकते हैं। एक तो है थायो यूरिया, थायो यूरिया जो कि 1% का खड़ी फसल के ऊपर अगर आप स्प्रे करते हो, एक एक किलो थायो यूरिया और 1,000 लीटर पानी में उसका स्प्रे
1: अच्छा
0: अगर आप करते हो, तो निश्चित रूप से वो ग्रोथ रेगुलेटर जो है उसका काम करेंगे। क्योंकि फसल में जो हमने उर्वरक डाल रखे हैं बहुत सारे, वो किसी न किसी कंडीशन की वजह से, ज्यादा पानी की वजह से, कई बार पूरी रूप से पौधा जो है उनको अवशोषित नहीं कर पा रहा है। तो उस हिसाब से अगर ग्रोथ रेगुलेटर, इसके बाद में आप ये देखना कि इसके जब आप ग्रोथ रेगुलेटर छिड़क दो तो 10-12 दिन बाद आप यूरिया का स्प्रे भी जो है 2% तक के यूरिया का स्प्रे भी खड़ी फसल के ऊपर कर सकते हो अच्छी वृद्धि के लिए। ये दोनों
1: अच्छा जी,
0: चीज काम आप जो है अपनी खड़ी फसल के ऊपर करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी बढ़वार आएगी। अच्छा एक काम और आप कर सकते हो कि यूरिया है ना, जैसे
1: हाँ जी,
0: पांच करीब जो है ना, आपको 1:5 के रेशो में यूरिया और मिट्टी, नमी मिट्टी, यूरिया की जो एफिशिएंसी अगर हम लोग खड़ी फसल पे जैसे यूरिया देते हैं, तो एक तो सादा यूरिया छिड़क देते हैं, एक सादा यूरिया ना छिड़क के हम लोग एक जैसे 1 किलो यूरिया में 5 किलो गीली मिट्टी मिला के और 24 घंटे के लिए रख दें, और उसके बाद में उसमें करीब 20 किलोग्राम जो है हम आपके जो है नीम की खली मिला लें, और फिर उसको अगर हम छिड़केंगे तो निश्चित रूप से धान की फसल के अंदर अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी वृद्धि होगी और कलियां ज्यादा जो है निकलेंगी।
2: तो डॉक्टर
0: इस
2: साहब
0: चीज
2: ये
0: को आप कर सकते हो
2: तो, ये तो हमारे जो किसान
0: धान के
2: भैया,
0: लिए विशेष रूप से जो है, क्योंकि धान का
2: मैं
0: क्षेत्र है
2: कार्यक्रम क्षेत्र जो
0: तो।
2: अपनो नेहा को हमारा आकाशवाणी को जो नंबर है आज के,
0: हाँ
2: हेलो प्लस
0: जी
2: ग्रामीण के काज है
0: जी
2: वो है 0565-2530-135। तो जो भी किसान भैया खरीफ से खड़ी फसलन में अगर कोई समस्या
1: जी सर,
2: समझे
1: हेलो
2: तो या के काजे पूछ सके हैं।
1: हेलो
0: हाँ
1: जी सर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैं करना शुरू कर दूँ क्या स्प्रे?
2: कल स्प्रे कल कर दें।
0: नहीं खड़ी, देखो स्प्रे का एक ध्यान रखना कि कभी भी स्प्रे जो है गीली पत्ती पे मत नहीं होना चाहिए, है ना, और स्प्रे को हमेशा दोपहर के बाद करो, और विशेष रूप से अगर थोड़ा सा दोपहर तक साफ रह जाए मौसम और एक बार पत्ती कतई सूख जाए, और उसके करीब करीब 2-3 घंटे तक तो बरसात नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ये ध्यान रखियो, इस चीज का

0: जरा, क्योंकि जब तक अवशोषित होगा गीली पत्ती पे आप डालोगे तो वैसे ही जो है ना उसका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा।
1: हेलो।
2: वो
1: हाँ जी, राम राम साहब।
2: राम राम जी,
1: हाँ जी, कहाँ
2: नमस्कार।
1: से बोल रहे हैं साहब आप?
2: बोल रहे हैं साहब, दरवे से।
1: हाँ जी, प्रश्न पूछो अपना। क्या प्रश्न है डॉक्टर साहब, सुन रहे हैं आपके प्रश्न है।
2: बैंगन की पौध में कीड़ा लग रहा है।
1: बैंगन की पौध में कीड़ा लग रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बैंगन में
2: पौध लगाई है अभी कोई 15 दिन।
0: कीड़ा, कैसा कीड़ा है वो बताओ, चूस बेवार हो या काट बेवार हो है?
2: पत्ता
0: हैं?
2: में छेद
0: नहीं,
2: तो कर
0: जैसे
2: रहा है
0: पत्ती
2: क्या?
0: आपको एक तो कटी दिखे, या चूसवे वाला जो कीड़ा हो वो तना में जैसे घुसता है और वो उसको जो है उसको चूसता है, तो आप तो ये बताओ कि कैसा कैसा तरह का कीड़ा है वो?
2: वो कीड़ा एक नैनी काले काले से मुंह की गिरारती है और बात पत्ता
0: हाँ
2: भी
0: सही
2: एकदम
0: कह रहे हो आप, तो अब मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था आपसे, ये कीड़ा जो है चूसने वाला है, जो लंबी सी सूंड वाला
2: अच्छा।
0: जो कीड़ा होता है वो है चूसने वाला कीड़ा। इस चूसने वाले कीड़े के लिए आपको जो जो स्प्रे करना है इसके ऊपर, वो आप लिख लो कहीं, अगर आपके पास वो है ना कुछ लिखने के लिए हो तो लिख लो, और नहीं हो तो आप उस चीज को सुन लो कि ये जो जितना भी थ्रिप्स वगैरह जो आ रही है ना इस बार इसकी, इनके ऊपर जो है कीड़े के लिए हमको उसके लिए मोनोक्रोटोफॉस दवाई का 1.5% का स्प्रे उसके ऊपर करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी पौध कह देना की है कि आपकी
2: कोई 25 दिन की।
0: 25 दिन की। हाँ
2: हाँ
0: तो
2: जी,
0: ये इसके ऊपर आप करो, क्यों 25 दिन के बाद तो फिर हटानी पड़ेगी वो आपके, 1 महीना के बाद तो वैसी बात बुवाई में ले जाओगे ना, तो वहां तक वो कीड़ा नहीं जाना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि उसको किसी भी तरह से जितना हो सके उसको जो है ये छिड़काव करके, और ये जो है इसके अलावा जो है अगर दूसरा जो छिड़काव आपने वो नर्सरी में कुछ वो डाला था क्या, कार्बोफ्यूरोन वगैरह कुछ कीड़ों को रोकने के लिए नर्सरी जो बनाई थी ना,
2: हाँ जी,
0: उसमें 10-12 ग्राम के करीब कार्बोफ्यूरोन एक दवाई होती है 3G की, वो आपको जो है मिट्टी में मिलानी है, तो उससे क्या है बहुत सारे कीड़े वैसे ही नहीं आते, तो उसको जो है,
2: वो
0: और अब आपको जो है ना या
2: नहीं
0: तो ये लो या फिर एमेडा क्लोरोपिड भी ले सकते हो, अगर ज्यादा आप ये देख रहे हो कि ज्यादा चूस कर रही है तो एमेडा क्लोरोपिड भी आप जो है ले सकते हो, 1 मिलीलीटर पर जो है लीटर के हिसाब से उसका भी
2: अच्छा
0: स्प्रे आप कर सकते हो,
1: तो
0: इनसे आपकी बैंगन की जो पौध है वो
1: डॉक्टर
0: सुरक्षित रहेगी। जी
1: साहब, जो हमारे भैया कह रहे गए
0: जी
1: इनके काज है और भी हमारे किसान में इनके काज
0: जी
1: है, जो
0: जी
1: आपको जो मुख्य सुझाव है
0: जी
1: ब्रज
0: जी
1: क्षेत्र में क्या
0: जी
1: होना चाहिए?
0: देखो दो मैं इस आज के आज कार्यक्रम में
1: तो एक पहले किसान भैया को
0: जी
1: फोन आ रहा
0: जी
1: है। हेलो,
2: राम राम जी।
0: राम
1: राम,
0: साहब
1: बेड़म
0: कहाँ से बोल रहे
1: से
0: भैया?
1: बोल
0: बेड़म,
1: रहे, बेड़म डीग। हाँ जी पूछो।
2: हमने घिया की वो घिया की बेल वही वहां में
0: हाँ
2: किए रहे मतलब।
0: क्या क्या कह रहे हैं, घिया की
1: घिया की
0: बोल,
1: बेल में कीड़ा लग गया,
0: घिया
1: घिया
0: की
1: की
0: बेल
2: बेल
0: में
2: में
0: कीड़ा लग
2: कीड़ा
0: गया
2: लग गो, घिया
0: है?
2: की बेल में कीड़ा लग गो।
0: किस तरह का कीड़ा है वो बताओ फिर भाई। मैं अभी जो आप सुन रहे हो अगर रेडियो, तो अभी मैंने पूछा था कि भाई वो जो कीड़ा आपका जो है भ्रंग टाइप का, जैसे लाल लाल रंग का इस तरह का ये कीड़ा आता है, एक तो एक फल की मक्खी आती है, फले खा रही है कि पत्ता ने खा रही है कि वो कहीं कहाँ लग रही है,
2: लाल रंग को कीड़ा है।
0: लाल रंग को कीड़ा है ना, तो लाल जो भ्रंग है लाल, मैं इसीलिए पूछ रहा था, तो इसके नियंत्रण के लिए आप कहूँ लिख सको तो कुणाल फॉस है 1.5%, ये जो चूरन आता है एक अभी डीग से आप ले सकते हो किसी भी जो आदान विक्रेता के पास से, डीग में आप जाओ खाद बीज की दुकान पे, तो यूँ कहो मुझे जो है तू वो दे दे चूरन क्लोरोपायरीफॉस को, ठीक है, और या कुणाल फॉस को मिल जाए, कुणाल फॉस मिल जाए कुणाल फॉस ले लो, और ये कितने करीब एरिया में है घी आपकी, ये 2-4 बीघे में है क्या, तो इसको जो है ना आप स्प्रे कर सकते हो, और निश्चित रूप से किसान
1: हेलो
0: किसान भाई।
1: हेलो,
2: हाँ जी किसान वाड़ी, मैं
1: हाँ जी हेलो, ब्रज ग्रामीण बताओ।
2: तलवार सिंह चौधरी पिशावर से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी चौधरी साहब, राम राम, बताओ क्या
2: राम
1: समस्या
2: राम।
1: है
2: ये समस्या ये है कि हमारा बाजरा है
0: जी?
2: उसमें बाली निकल रही है।
1: कहाँ निकल रही है दोबारा बताओ।
2: बाली बाली
0: हाँ हाँ
2: निकल रही है
0: बिल्कुल
2: उसमें
0: सही है। हाँ जी
2: उसमें चिपचिपा सा ऊपर से आ रहा है।
0: हैं,
1: चितकबरा आ रहा हूँ मैं।
3: ऊपर से। हाँ।

0: खबरी रंको हमें वो आ रहा है
1: बाजरा के अंदर।
2: हाँ हाँ उसमें वो बाली के ऊपर,
1: बाली के ऊपर
2: हाँ जो बाली पे फूल आ रहा है उसपे।
1: नहीं वो ऐसा है, चितकबरा नहीं है, बाली के फूल के ऊपर गिड़ार तो नहीं है, वो देखो आप ये गिड़ार आ रही है जो उसके फूल को भी खा रही है साथ साथ में।
2: अच्छा
1: फूल को खा रही है और जो दाना भरता है ना उसको भी नुकसान पहुंचा रही है। तो ये तो थोड़ा सा कल जैसे आप देखो भाई, क्योंकि अभी इस समय क्या हो रहा है कि हमें जो थोड़े से टाइम से जो बोवे हुए हैं जून जून जून में जो बो दिए लास्ट सप्ताह तक, उनमें दाना भी भरने लग गया है। तो आप निश्चित रूप से उसके ऊपर, क्योंकि इस समय स्प्रे करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ मैं इसीलिए आपसे निवेदन यही किया था मैंने कि आप एक बार ये देखो तो जो भुरकने वाली दवाई है ना उसको थोड़ा सा अगर आप कर सको तो भुरकने वाला कोई भी पाउडर उससे लेके जो है कुनाल फोस का है, सल्पान का है, कोई भी लेके और आप उसको जो है भुरकाव कर देंगे हल्का सा, तो उससे वो जो है कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी। वो जो है बीटल है लाल रंग की।
3: हाँ जी बोलो। हेलो, तो डॉक्टर साहब जो मुख्य बात वही आ रही है बार बार जो हमारे
1: नहीं, आप जो
3: कीट प्रबंधन,
1: बिल्कुल देखो मैं यही कह रहा था शुरू में, मैंने कहा कि इस समय जो खरीफ फसलों में जो कार्यक्रम चल रहा है।
3: हेलो हेलो हेलो, हमारे किसान भैया से हमारा संपर्क टूट गया।
1: इस समय जो जो फसल है, का जो है उसमें रहे बचे हुए उर्वरक जो उस समय नाइट्रोजन के विशेष रूप से, वो ग्रोथ रेगुलेटर जो वृद्धि नियामक है वो, और दूसरा जो प्रबंधन है वो है कीटों का, पौध संरक्षण की जो बात है, पौध संरक्षण में आपकी दोनों चीज आ जाएंगी।
3: हेलो हेलो हेलो,
1: कई में बीमारी आ जाएंगी और कई जो है कीड़े आ जाएंगे।
3: हेलो किसान भैया की आवाज,
1: कीड़े हाँ। तो निश्चित रूप से जो किसान भाई इसको सुन रहे हैं आज के इस प्रोग्राम को, वो थोड़ा सा ध्यान दें कि इस समय आपको दो ही चीज़ों का रखना है, क्योंकि अगर पौधों में किसी तरह के रोग और कीड़ों के अगर प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है तो आपकी अब तक की जो कमाई की है वो निश्चित रूप से कम बर्बाद हो जाएगी और उसमें जो आपको पैदावार कम मिलेगी। और जो बचे हुए उर्वरक जो खड़ी फसल में जहां तक लगाने की बात आती है।
3: हेलो हाँ जी, राम राम साहब, कहाँ से बोल रहे हैं?
4: मैं मुकेश साहब भरतपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ।
3: हाँ जी प्रश्न पूछो।
4: प्रश्न ये है, बाजरे बाजरे में मतलब कोई ऐसी गिरा रहा है, पत्ता ने काट रही है
3: बाजरे में,
1: नीचे पत्ता ने काट रही है और अब वो गिरा रहा ऊपर, जैसे ही आपकी बाल आएगी ना बाल के ऊपर सरक जाएगी। एक बार आपने देखा हो कि ये गिड़ार इतनी खतरनाक है, कई बार कि जैसे ढेंचा वगैरह आ जाती है तो उसको भी खाती है। तो ये जो भुरकने वाले जो चूर्ण आते हैं ना वो आपको अगर जिस तरह से हो सके उन चूर्णों को कोई भी जो है कुनाल फोर्स का मिल जाए या तो है ना, इनको आप लेके नहीं और 2% का उसको आप भुड़काव करवाओगे तो ही उसका कंट्रोल जो है आपका हो सकेगा, कि स्प्रे इस बार ज़्यादा कोई संभव है नहीं। तो ये
3: तो मुख्यतः डॉक्टर साहब जो मुख्य बात आई है बार बार जो हमारे किसान भाइयों की समस्या है वो कीट प्रबंधन।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये अब किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा निश्चित रूप से, क्योंकि कुछ किसान भाई ऐसे भी हो सकते हैं जो कपास से संबंधित भी हो सकते हैं, उनको भी कपास हुई धान हुई इन लोगों को तो निश्चित रूप से कीड़े की जो दवाई है वो आपको कई बार एक नहीं एक से अति बार भी करनी पड़ेंगी, छिड़काव करने पड़ेंगे उनमें। आप कोई भी जो है ना किसी तरह की जो दवाइयाँ मिथाइल डिमेटोन है आपकी, कुनाल फोस है या साइपरमेथिन है, इन दवाइयों को लेके छिड़क सकते हो। और अगर कोई जैविक खेती कर रहा है, प्राकृतिक खेती कर रहा है, तो वो निवोली का जो सत है उसको भी वो छिड़काव कर सकता है।
5: तो भैयाओ अभी आप सुन रहे हेलो ब्रज ग्रामीण फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भैया ने अपनी समस्या भी रखी और डॉक्टर अमर सिंह जी ने खरीफ की खड़ी फसलन में का का परेशानी आए, उनकी कैसी सुरक्षा की जाए, इन सब विषय पर जानकारी दी। और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भैया भी लाभ जरूर उठाएंगे, लेकिन क्या करें भैया, वो समय भी देखना है,
3: आपे
5: भी आपे भी अपने काम करना है ना। तो भैया सभी भैया को राम राम, अगले फोन इन
1: बहुत बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत राम राम,
5: फिर उपस्थित होंगे
1: आप सबको।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो ब्रज ग्रामीण। आज का विषय था खरीफ की खड़ी फसलों में देखभाल। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अमर सिंह और इनसे बातचीत कर रहे थे मृणालिनी दीक्षित और दीपक गोस्वामी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, रक्षाबंधन पर 27 से 29 अगस्त तक महिलाएं सहयात्री के साथ कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के 150 केंद्रों समेत देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे खेलो इंडिया संवाद। खेल, युवा नेतृत्व, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण पर होगी चर्चा। धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व। जगह जगह निकाला गया मिलाद जुलूस। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और सिटी बसों में 27 से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि निगम की बसों में महिला यात्री एक सहयोगी के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारम्भ करते हुए विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को स्मार्ट कार्ड भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं, कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई।
1: वे सभी स्कीम है जिसमें बेटी के जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा तक, उसके रोजगार तक, उसकी उद्यमिता तक और जीवन के हर पड़ाव पर सुरक्षा, नारी की सम्मान और नारी के स्वावलंबन का की गारंटी। यानी हमारी हर योजना, सरकार का हर निर्णय, सरकार का हर बजट इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समर्पित है।
0: मुख्यमंत्री के लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम का प्रदेश के विभिन्न जिलों में सजीव प्रसारण देखा गया। मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी में, कपिल देव अग्रवाल हापुड़ में, अनिल राजभर कौशाम्बी में, सुनील शर्मा गौतमबुद्ध नगर में, राज्य मंत्री संजय गंगवार पीलीभीत में और कैलाश सिंह राजपूत कन्नौज जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं अम्बेडकर नगर, अयोध्या और फर्रुखाबाद सहित कई जिलों में बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं ने प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुआ क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सीमावर्ती

0: महराजगंज और कुशीनगर जिले में प्रशासनिक निगरानी बढ़ा दी गई है। कुशीनगर जिले में नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि की आशंका के मद्देनजर राज्य आपदा मोचन बल की टीम तैनात कर दी गई है। नेपाल में बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं, इनमें 105 भारतीय शामिल हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। पर्यटकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए नेपाल पर्यटन बोर्ड ने टोल फ्री नंबर 1234, हेल्पलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9815128944545 जारी किए हैं। बोर्ड ने प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद पर्यटकों से प्रशासन के सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के करीब 150 स्थानों समेत देश भर में 1500 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद के तहत युवाओं को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक गोपेश पांडे ने बताया कि राजधानी लखनऊ में ये आयोजन 7 विभिन्न स्थानों पर होगा। समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज मेरठ के पुलिस लाइन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर और मंडल आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री वाजपेयी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा स्क्रीनिंग सेंटर है जहां विभिन्न प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसका एम्स झज्जर से टेली कंसल्टेशन किया जाएगा। इससे जरूरतमंद मरीजों को स्क्रीनिंग और इलाज की सुविधा मिलेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा ए, H1N1 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की समय पर पहचान, आवश्यक जांच और उपचार के साथ गंभीर मरीजों के प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के संबंधित विभागों को सतर्क रहने तथा संक्रमण नियंत्रण के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEE PG और AICE PhD 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। रक्षाबंधन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने चंडीगढ़ लखनऊ और दिल्ली वाराणसी रूट पर विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार चंडीगढ़ लखनऊ चंडीगढ़ आरक्षित स्पेशल ट्रेन कल रात 7:40 पर चंडीगढ़ से रवाना होकर अगले दिन 9:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वहीं दिल्ली वाराणसी दिल्ली स्पेशल ट्रेन कल रात 8:10 पर दिल्ली से चलकर अगले दिन सुबह 6:30 बजे लखनऊ और 11:45 पर वाराणसी पहुंचेगी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किया गया। जगह जगह मिलाद जुलूस भी निकाले गए। इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। राजधानी लखनऊ में भी विभिन्न स्थानों पर जुलूसे मोहम्मदी और जुलूसे मदहे सहाबा निकाले गए। एक रिपोर्ट।
2: लखनऊ में मोहम्मदी मिशन द्वारा जुलूस ए मोहम्मदी का आयोजन किया गया, जो कि चौक स्थित ज्योतिबा फुले पार्क में पहुंचकर एक जलसे में परिवर्तित हो गया। वहीं जुलूस ए मदहे सहाबा अमीनाबाद के ऐतिहासिक झंडा वाला पार्क से शुरू होकर ऐशबाग ईदगाह तक गया। जुलूस में विभिन्न अंजुमन नात पढ़ते हुए चल रही थी। इससे

0: पहले कल रात भर शहर के विभिन्न स्थानों पर जलसों और मुशायरों का आयोजन किया गया, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। जुलूस के रास्तों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सबील और भंडारों का आयोजन भी किया गया। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद ए मिलादुन्नबी के मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। सुल्तानपुर, जौनपुर, बदायूं, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और अमरोहा में भी मिलादुन्नबी का पर्व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: ईद ए मिलादुन्नबी के मौके पर अमरोहा में भी आज जुलूस ए मोहम्मदी निकाले गए, जिसमें बड़ों के साथ बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और मोहम्मद साहब की शान में नात पड़ी गयी। जगह जगह विभिन्न समुदाय द्वारा जुलूस पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जुलूस के समापन अवसर पर मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी गयी। सुरक्षा के चलते जुलूस के साथ भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। मरगूब हुसैन, आकाशवाणी समाचार, अमरोहा।
1: प्रदेश भर में रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, रक्षाबंधन पर 27 से 29 अगस्त तक महिलाएं सहयात्री के साथ कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के 150 केंद्रों समेत देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे खेलो इंडिया संवाद। खेल, युवा नेतृत्व, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण पर होगी चर्चा। धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व। जगह जगह निकाला गया मिलाद जुलूस और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशें फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी।

सुरों की सरगम जब दिल की दहलीज पर दस्तक देती है तो खामोशियां भी गुनगुनाने लगती हैं। कुछ नगमे यादों की खुशबू लेकर आते हैं, कुछ रिश्तों की मिठास और कुछ दिल की अनकही बातों को आवाज दे जाते हैं। शाम की इस सुहानी बेला में आइए बांध ले संगीत से एक आत्मीय रिश्ता, जहां हर फरमाइश एक एहसास से, हर गीत एक कहानी और हर धुन आपके दिल से निकली हुई आवाज। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र, और इस केंद्र से प्रसारित अपना बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम शाम सुहानी, जिसमें शामिल हैं आपके व्हाट्सएप संदेश, आपकी पसंद और आपकी फरमाइश पर सजे कुछ चुनिंदा फिल्म गीत। तो थाम लीजिए इस शाम को, महसूस कीजिए सुरों की रवानी, क्योंकि शाम तभी सुहानी है जब उसमें आपकी पसंद का कोई नगमा शामिल हो।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में हिना फिल्म का गीत। गीतकार थे रविंद्र जैन और संगीत भी रविंद्र जैन का था। और इस गीत को सुनने के लिए हमें संदेश प्राप्त हुआ था पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवनकर, निर्मला विशाल नवनकर। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान और आशीष मुर्रेकर। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता रजत और मयंक भाटिया। सड़सठ मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर रमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। पंढरपुर सिटी से जाकिर मुलानी,

सुमैया बुलाड़ी, सुबान समीर, सलमा मुमताज, दिलशाद नसीर और इनके परिवारीजन, पैंथर से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया, जालना शहर महाराष्ट्र से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर, कुमकुम सुरलकर, दत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा का संदेश में प्राप्त हुआ है। गंज डंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से मैं सुन रहे हैं एम फारूक शेख, साइमा फारूक, सरफराज, गुलफराज और मुस्कान। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का संदेश में मिला है। पाटन गुजरात से धीरज बीरबारी। बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। इसी संदेश में दामणगांव महाराष्ट्र से भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी समर्थ दादा, सानिका देठे पाटिल। बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे का संदेश मिला है। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, योगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयोग विवेक और आयुषी श्रीवास। खंडवा मध्य प्रदेश से राजेश सिंह, सुरेखा, शुभम, अक्षय और इनके परिवारीजन। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। सहारनपुर से कुमार हैडा के संदेश श्रोतागण हैं। सैयद मसरूर, शाइना अक्सा, नाजिया, इब्राहिम, सद्दाम। सिद्धेश्वर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्रव्या रामटेके। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, समर्थ, सार्थक और शौर्य नामदेव। और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। श्रोतो, कभी किसी की जुल्फों की रवानी में शाम उतर आती है, कभी किसी की मुस्कान में पूरी कायनात सिमट आती है। मोहब्बत के ऐसे ही नर्म, खूबसूरत और दिलकश एहसासों को सुरों में पिरोता हुआ कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपनी मधुरता और रोमानी अंदाज में मन को छू जाता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये मीठा सा गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में, एक कली मुस्काई फिल्म का ये गीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में एक कली मस्काई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ यह गीत था जिसे सुरबद्ध किया था मदन मोहन ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें और फरमाइश प्राप्त हुई थी मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज।

रोहित राज और पीयूष कुमार का संदेश। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण और जयश्री। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता, लक्ष्मी, ध्रुव, वैदेही, हंसिका और जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप। राजकोट गुजरात से रश्मि, झरना और भरत कुमार। बोराला खुर्द महाराष्ट्र से आदिनाथ बाग, पाटिल, अमोल बाग, गुड़िया कृष्णाली और अशोक देशमुख। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अर्जन, अबान और इनके परिवारीजन। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, असिफा परवीन, अनस, अनेजा, आयजा और आल्फिया। मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, रानी, मेनका पासवान, श्वेता, स्वाति, सुशांत, गोदावरी और उनके ढेर सारे साथीगण इस संदेश में जुड़े हुए हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, द्विशानी और निमिता आहूजा। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, आम्रपाली, आविष्कार, अनामिका और प्रणिता गायकवाड़। श्री गांव बुलढाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले और लोकेश। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। आदर्शनगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजो श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलवंत कुलदीप कमल। कर्नाटका स्टेट से चिन्ना तिरुपति के श्रोते हैं श्यामला प्रकाश, अश्विनी आनंद और मनवीत। मध्य प्रदेश के श्रोते हैं छिदवाड़ा से नाना लामसे, मीना लामसे, तेजस लामसे, जय हर्षिता। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द कबीर धाम से गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज सूरज राजपूत। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में हमराही फिल्म का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में हमराही फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन ने।

पलसी बुजरुक महाराष्ट्र से संदेश आया है। रेणुका शेगोकार, विजय शेगोकार, ऋषिकेश जयश्री और देव शेगोकार का। उमाली से अनूप कुमार और उद्धव पाटिल जुड़े हुए हैं। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। गांव जाखोद राजस्थान से शंभूदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक और पूजा खटक। उगला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती, राघव, हरमन और इनके परिवारीजन। हर्ष रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और इनके परिवारीजन अमरावती महाराष्ट्र से। पलारी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, पूजा वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला विशाल और निशा राठौड़। कटनी मध्य प्रदेश से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जक रज्जक, लालू, सोना, मोना, हनी और यश। पंडर कावड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे और अनुश्री बुरांडे। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीब बेबम, आफिया खान और शुहेब खान। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, साई समर्थ और कार्तिकी।

उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद पाखुड़ झारखंड से, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत के नाम इसी संदेश में नाम। श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका, और हिसार हरियाणा से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, महाकौशल जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली दुबे, मोनिका और रानू तिवारी। श्रोताओ, बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं, लगातार श्रोतागण जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम से, लेकिन अब समय इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का है। फिलहाल इस कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे यानी अरविंद को अनुमति दीजिए। सुनते रहिए FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र।

हिमेश रेशमिया, जयेश गांधी, हाशिम और अल्ताफ की आवाज़ों में आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से आप सुन रहे थे इरशाद कामिल की लिखी ये कव्वाली हिमेश रेशम के संगीत निर्देशन में। फिल्म संगीत की अगली पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दबंग 3 से सलमान अली और मुस्कान की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे थे आवारा फिल्म का, क्षमा करें, दबंग 3 फिल्म का ये गीत सलमान अली और अनुष्का की मुस्कान की आवाज में। समीर रंजन का लिखा हुआ गीत था, साजिद वाजिद का संगीत निर्देशन था। और अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज में, डेली 6 फिल्म से ये कव्वाली।

ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे प्रसून जोशी की ये रचना। जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज़ों में फिल्म का नाम था डेली सिक्स। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम देशगान।

जगा धरा का लाल कि अब क्यों सोएगा। समवेत स्वरों में अभी आप सुन रहे थे चंद्रदत्त इंदु की ये देशभक्ति परक रचना। देशगान कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं समवेत स्वरों में। रचना है पुष्पा अवस्थी की।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में, ये देशभक्ति परक रचना पुष्पा अवस्थी की रचना थी। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, फिल्मी गीत केवल धुन और शब्दों का मेल नहीं होते, वे अपने साथ एक दौर, एक कहानी और कई अनकहे एहसास लेकर आते हैं। इसे खूबसूरत एहसास के साथ प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की हमारी फिल्म है वर्ष 1965 में आई फिल्म काजल। एक ऐसी भाव प्रधान फिल्म जिसमें रिश्तों की आत्मीयता, प्रेम, संदेह, त्याग और जीवन की विडंबनाएं एक दूसरे से जुड़ी चली जाती हैं। फिल्म का निर्देशन राम माहेश्वरी ने किया और कहानी प्रसिद्ध कथाकार गुलशन नंदा ने की। संगीतकार थे रवि और फिल्म के गीतों को अपने शब्दों से संवारा था साहिर लुधियानवी ने। श्रोताओं, कहानी की शुरुआत होती है माधवी से, जिसकी भूमिका निभाई है भावनाओं को पर्दे पर जीवंत कर देने वाली मीना कुमारी ने। माधवी और उसका भाई कौशल रानी माँ के संरक्षण में पलते हैं। रानी माँ का बेटा राजेश यानी धर्मेंद्र भी उनके साथ बड़ा होता है। माधवी और राजेश के बीच बचपन से ही गहरा आत्मीय संबंध है। समय बीतता है, राजेश का विवाह भानु से होता है, लेकिन भानु को माधवी और राजेश की निकटता खटकने लगती है। संदेह धीरे धीरे रिश्तों में दरार पैदा करता है और माधवी पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जिनका उसके निष्कलंक मन से कोई संबंध नहीं। जीवन की परिस्थितियां उसे इस कदर तोड़ देती हैं कि वो आत्महत्या तक करने का प्रयास करती है। तभी उसकी मुलाकात मोती से होती है, जिसकी भूमिका राजकुमार ने निभाई। राजेश माधवी का विवाह मोती से कराने के लिए तैयार होता है, लेकिन ये विवाह माधवी के जीवन में सुख नहीं बल्कि एक नया संघर्ष लेकर आता है। मोती के मन में माधवी को लेकर प्रेम नहीं बल्कि एक स्वार्थपूर्ण उद्देश्य छिपा हुआ है। यही है काजल की वो कहानी जिसमें रिश्तों की चमक के पीछे संदेह और स्वार्थ का अंधेरा दिखाई देता है। और अब जिस गीत का जिक्र हम करने जा रहे हैं, जिसमें प्रेम की नज़ाकत और रोमानी एहसास अपने बेहद खूबसूरत अंदाज में सामने आता है, मोहम्मद रफ़ी की मखमली आवाज़, रवि का मधुर संगीत और साहिर लुधियानवी के शब्द तीनों मिलकर इस गीत को यादगार बना लेते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
1: कुछ और नहीं है

श्रोताओं, काजल की खूबसूरती केवल इसकी कथा में नहीं बल्कि इसके संगीत में भी है। फिल्म के गीतों में प्रेम, विरह, भक्ति, पारिवारिक स्नेह और जीवन के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। इस फिल्म में गीत के संगीतकार रवि और गीतकार साहिर लुधियानवी की यह जोड़ी इस फिल्म में कई यादगार गीत लेकर आई। कहानी में आगे माधवी के जीवन में परिस्थितियां और कठिन होती जाती हैं। भानु के आरोपों और पारिवारिक दबाव के कारण माधवी बेहद आहत होती है। वो आत्महत्या तक का प्रयास करती है, लेकिन एक युवक मोती उसे बचा लेता है। आगे चलकर राजेश चाहता है कि मोती माधवी से विवाह कर ले। मोती इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके मन में इस विवाह को लेकर कुछ अलग उद्देश्य छिपा हुआ है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। माधवी एक रिश्ते से निकलकर दूसरे रिश्ते में प्रवेश करती है, लेकिन उसके सामने फिर वही सवाल खड़े होते हैं। क्या उसे सच्चा अपनापन मिलेगा? क्या उसके जीवन में स्थायित्व तो आएगा? इसे फिल्म का एक और गीत है जो पारिवारिक स्नेह की अत्यंत मार्मिकता अभिव्यक्ति बनकर सामने आती है। बहन और भाई के रिश्ते की मिठास से भरा आशा भोसले की आवाज़ में ये कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोतो, भाई बहन का रिश्ता भारतीय परिवार व्यवस्था में स्नेह और विश्वास का एक अनूठा संसार रचता है। फिल्म काजल के इस गीत ने उस आत्मीयता को इतने सहज ढंग से अभिव्यक्त किया कि आज भी भाई बहन के प्रेम से जुड़े लोकप्रिय गीतों में गिना जाता है। और अब बात करते हैं कहानी की। माधवी के जीवन में आए मोती का विवाह प्रस्ताव उसके लिए एक नई शुरुआत जैसा लगता है। वो अपने पुराने जीवन और संबंधों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती है, लेकिन मोती के वास्तविक इरादे सामने आने पर परिस्थितियां फिर बदल जाती हैं। फिल्म की कथा इस बात को रेखांकित करती है श्रोताओं कि किसी व्यक्ति के जीवन में बाहरी परिस्थितियों से अधिक कठिन कभी कभी वे रिश्ते हो जाते हैं जिन पर वो सबसे अधिक भरोसा करता है। फिल्म काजल के संगीत में एक और रंग है, नृत्य और उल्लास का, आशा भोसले की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत अपनी लयात्मकता और चंचलता के कारण कहानी के भाव को संसार में एक अलग रंग भरता है। आइए सुनते हैं।

0: एक ही फिल्म से आज हमने सुनी एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम है, पारिवारिक संबंध है, विश्वास है, अविश्वास है और जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझती एक स्त्री की संवेदनशील यात्रा है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से का ये सफर यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम में एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा आपसे कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद ए मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 977-98-51-31-6807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 977-9709-10-7500। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द से जल्द

0: जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
3: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया है।
1: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
4: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता

लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा।

0: इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
1: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
2: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विलवन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विलवन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो एनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोरदोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेइचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री

0: India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. And in men's cricket, India tighten grip on Colombo Test as host Sri Lanka struggle at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. That is all in the news at 9. Good night.
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म उजाला से। आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की हैं। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का है।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में आप सुन रहे थे उजाला फिल्म का गीत। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का था। सुहाने तराने कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म फागुन से। आवाज़ आशा भोसले की है, कमर जलालाबादी के बोल हैं, संगीत ओपी नैयर का।

अभी आप सुन रहे थे आशु भोसले की आवाज में फागुन फिल्म का गीत कमर जलालाबादी की बोल थी, ओपी नय्यर का संगीत निर्देशन था। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की हैं, फिल्म का नाम है अनीता।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज़ों में अनीता फिल्म का गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और इसी के साथ ही सुहाने तराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है परिचर्चा, भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: हिमालय की ऊंचाइयों पर खींची एक ऐसी रेखा जिसे दोनों देश अपने अपने नक्शों में अलग अलग तरह से देखते हैं, एक ऐसी सीमा जो सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है बल्कि सुरक्षा का सवाल है, संप्रभुता का सवाल है, विश्वास का सवाल है और शायद एशिया की भविष्य की राजनीति का भी सवाल है। भारत और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती हुई वैश्विक शक्तियां, लेकिन इनके रिश्तों का सबसे संवेदनशील बिंदु है सीमा। साल 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में पैदा हुआ तनाव, गलवान की हिंसक झड़प, भारी सैन्य तैनाती और कई वर्षों तक चला गतिरोध, इन सब ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति केवल सीमा तक सीमित मुद्दा नहीं है। सीमा पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर व्यापार पर पड़ता है, कूटनीति पर पड़ता है, राजनीतिक विश्वास पर पड़ता है और पूरे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा बदल जाती है। अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचौक सहित 2020 के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर समझौते के बाद दोनों देशों के बीच बीजिंग में हुई भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस मुलाकात का केंद्रीय बिंदु यही रहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों के विकास का मुख्य आधार है। आज की चर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या 25वें दौर की ये बातचीत सीमा विवाद के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस आधार तैयार कर पाई है या फिर ये प्रक्रिया केवल विश्वास की बहाली तक ही सीमित है। इस गंभीर और रणनीतिक मुद्दे पर गहन विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार सेवानिवृत्त और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल अशोक कुमार, आपके साथ शुरुआत करते हैं। देपसांग और डेमचोक जैसे फ्रिक्शन पॉइंट से पेट्रोलिंग और बफर जोन की व्यवस्था के संदर्भ में डोभाल और वांग ई की वार्ता को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हम केवल टैक्टिकल डिसएंगेजमेंट यानी रणनीतिक रूप से पीछे हटने की स्थिति में हैं, या स्ट्रैटेजिक डीएक्सेलेरेशन यानी सेनाओं की वापसी की दिशा में कोई वास्तविक प्रगति हो रही है? क्या लगता है आपको?
2: मेरे ख्याल से अगर आप इसका घटनाक्रम ध्यान से देखें तो अक्टूबर 24 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात के तहत एक स्ट्रेटजिक डायरेक्शन दोनों कंट्रीज के लोगों को, डिसीजन मेकर्स को दिया गया कि हमें इस मुद्दे को सुलझाना है। और उसके बाद पिछले जो 24वें मीटिंग हुई थी एसआर रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम पहले जो अर्ली हार्वेस्ट वाले ऑप्शंस हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो मुद्दों पर जहाँ पर ज्यादा विवाद है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि सिक्किम का इलाका और हिमाचल प्रदेश का इलाका और उत्तराखंड इलाका, ये तीन जगह ऐसे हैं जहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है भारत और चीन के अप्रोच में। इतना ही नहीं, यहाँ पर जहाँ विवाद है भी उस पर भी भारत अपने क्लेम के मुताबिक उन जगहों पर उसकी मौजूदगी है, जबकि चाइना का सिर्फ क्लेम है। और केवल उत्तराखंड में बाराहोती का मामला ऐसा है जहां पर उसमें ग्रेजिंग के दौरान में अक्सर हर साल आता है और फिर उसके बाद में वापस चला जाता है। इसके पहले दोनों देशों ने अपने नक्शे भी

0: चेंज किए थे दोनों को मिला करके, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिला करके मिडिल सेक्टर माना जाता है, उसके नक्शे एक्सचेंज हुए थे और दोनों ने अपनी पोजीशन डिलिनेट की थी। तो वहां पर एकदम से क्लैरिटी है कि हम क्या क्लेम कर रहे हैं और चाइना क्या क्लेम कर रहा है, और गैप बहुत थोड़ा है जो रिजॉल्व किया जा सकता है। पहली बातचीत में हम वहां तक पहुंच चुके हैं, उस बातचीत के बाद में बाकी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और इस बार चूंकि 12-13 सितंबर को इंडिया में ब्रिक्स की समिट होने वाली है, तो काफी कयास लगाए जा रहे थे कि इस 25वीं मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा जिससे इस दिशा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन में कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन जब बातचीत खत्म हुई कल बीजिंग में, तो वहां पर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो पहले लो हैंगिंग फ्रूट की बात हो रही थी उसको रिजॉल्व करने की, उसका भी जिक्र ना तो चाइनीज के स्टेटमेंट में आया ना भारतीय स्टेटमेंट में आया। हाँ, मोटे तौर पे ये कहा गया कि 24वीं मुलाकात के बाद में दोनों देशों के बीच में प्रगति हुई है। यह चीज तो स्पष्ट नहीं है कि प्रगति किस किस फील्ड में हुई है, लेकिन पूरा टोन आप देखेंगे उस भाषा का, जो बातचीत के जो अंश बाहर सामने आए हैं, उससे लगा है कि दोनों देशों में एक आंतरिक इच्छा है कि इस मामले को स्ट्रेटजिक लेवल पर सुलझाया जाए। भारत ने ये चीज स्पष्ट मेंटेन किया है कि जब तक सीमाओं पर शांति नहीं रहती है, ये चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कूटनीतिक क्षेत्र हो, या और भी कोई रिलेशनशिप का क्षेत्र हो, उसमें रिलेशंस स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और इसलिए उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम्स में जब WMCC की मीट होगी, तो शायद इस दिशा में और प्रगति हो। मेरा मानना यह है कि दोनों देशों की तरफ इसको रिजॉल्व करने की इच्छा है, लेकिन दोनों की अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं और इसलिए इसका रिजोल्यूशन होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो विश्व में मौजूदा परिस्थिति चल रही है, उसको देखते हुए मैं इस कदम को और जो स्टेटमेंट आए हैं उनको काफी पॉजिटिव तरीके से देखता हूं।
1: हर्षी, अगर आपसे समझना चाहें और अपने श्रोताओं को थोड़ा बैकग्राउंडर बताएं, तो 2020 में कन्फ्रंट्रेशन और गंभीर संकट रहा, 2024 में डिसएंगेजमेंट अरेंजमेंट्स की बात हुई, 2025 में डी एक्सकलेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अर्ली हार्वेस्ट जैसे विचारों पर संस्थागत चर्चा हुई, इस वर्ष यानी 2026 में बाउंड्री डिलिमिटेशन, राजनीतिक समाधान की दिशा में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत। क्या यह कहना सही होगा कि भारत चीन संबंध अब क्राइसिस मैनेजमेंट, स्टेबलाइजेशन, पॉसिबल रिजोल्यूशन की तीन स्तरीय प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, या जैसा कि अभी जनरल अशोक बता रहे थे कि रिजोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करना अभी जल्दीबाजी होगी? क्या कहेंगे आप?
2: मुझे भी ऐसा लगता है कि रेजोल्यूशन तो भी कुछ दूर दिख रहा है, रेजोल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो क्राइसिस में ये संबंध थे और जो बॉर्डर इश्यूज जिस तरह से सेंटर स्टेज पर आ गए थे 2020 के बाद, उसके बाद ये सतत प्रयास मुझे लग रहा है भारत की तरफ से और चीन की तरफ से कि कैसे डीएस्केलेशन हो और उससे ज्यादा एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दोनों साइड्स में बने, क्योंकि संबंध जो भारत ने एक अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया था कि जब तक बाउंड्री में LAC में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, तब तक ये मानना कि भारत और चीन के संबंध एक नॉर्मल दो देशों के जैसे संबंध होते हैं उस तरह से हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। भारत ने और लगातार इस बात पर जोर दिया था 2020 के बाद, और लगातार इस बात पर भारत अड़ा रहा कि जब तक हम बॉर्डर पर एक नॉर्मल सी नहीं देखेंगे, तब तक जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है ये नॉर्मल नहीं होगी। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए स्टेबलाइजेशन बॉर्डर पर हो गया है, उसको देखते हुए एक कॉन्फिडेंस दोनों देशों से निकल कर आ रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं, और टॉप लीडरशिप दोनों देशों की ये चाहती है कि जो मुद्दे हैं, खासकर बॉर्डर का जो मुद्दा है, उसको पॉजिटिवली डील किया जाए। लेकिन रेजोल्यूशन अभी भी काफी दूर नजर आता है, क्योंकि रेजोल्यूशन के लिए कुछ जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो होने पड़ेंगे। एक तो दोनों देशों को स्ट्रेटेजिकली वो रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजिकली कंपैटिबल होने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम चीन की विदेश नीति को इस समय समझें, जैसा दुनिया में बहुत बदलाव आ रहा है और अमेरिका जिस तरह से अपने पार्टनर्स और एलाइज के साथ डील कर रहा है, उसको देखते हुए कहीं पर चीन को ऐसा लगता है कि अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पर खड़ा नजर आएगा, तो उसके संबंध अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर हो पाएंगे। तो चीन

0: दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि वो उस तरह का एक एग्रेसिव प्लेयर नहीं है जिस तरह का वो कुछ सालों पहले नजर आता था, एटलीस्ट पॉलिसी वाइज। तो उसको देखते हुए वो ये चाहेगा कि भारत भी कुछ कदम बढ़ाए और भारत और चीन के बीच में कुछ सामंजस्य बने जो एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में ला पाए। अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि क्या ये चीन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है या एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखते हुए, और उस टैक्टिकल एडजस्टमेंट पर भारत कितना विश्वास कर सकता है, क्योंकि भारत के साथ और भारत चीन संबंधों में एक बात जो लगातार होती रही है कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल मिसिंग रहा है। भारत क्यों और किन मुद्दों को लेकर चीन के ऊपर ट्रस्ट करे, ये बहुत बड़ा विषय है भारत चीन संबंधों में, और अभी तक मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं जहां पर भारत की तरफ से ये 100% कहा जा सके कि हम चीन को एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का 25th राउंड हुआ है टॉक्स का, ये उसी दिशा में संकेत दे रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं कि बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, और इसी बात को कमेंट भी किया दोनों इंटरलॉक्यूटर्स ने, वांग यी ने और अजीत डोवल ने। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस बात के लिए एक दूसरे की तारीफ और प्रशंसा की कि दोनों देश कमिटेड हैं इस समय कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। यहां तक तो हम पहुंच गए हैं और ये मुझे लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है पीपल टू पीपल टाइज के परस्पेक्टिव से, लेकिन क्या ये हमको एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है, मुझे लगता है ये कहना भी जल्दबाजी।
1: जी हाँ, बिल्कुल जल्दीबाजी होगा ये कहना। मेजर जनरल, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम थोड़ी बात सीमा प्रबंधन की करें तो एलएसी की अस्पष्टता और विभिन्न अवधारणाओं के कारण अक्सर लोकल फ्लैश पॉइंट्स बनते हैं। इस बातचीत में बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर जो सहमति बनी है, क्या वो 1993, 1996 और 2013 के द्विपक्षीय समझौतों के ढांचे को पुनर्जीवित कर पाएगी, या आपको लगता है कि एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की आवश्यकता है?
2: हमारे पास में 1993, 1996, 2005 और 2013 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डिसाइड हुए थे, उन्होंने बहुत हद तक दोनों तरफ की सेनाओं को ग्राउंड पर भी आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने से बहुत हद तक रोका है। 2020 के गलवान क्लैश में, हालांकि ये बहुत दुखद घटना हुई है, बावजूद इसके दोनों तरफ से किसी ने भी आर्म्स का, शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। हम लोगों ने तो रायट कंट्रोल इक्विपमेंट होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया था, चीन ने उनका इस्तेमाल किया, पहले से तैयार हुए लेजर्स का इस्तेमाल किया, और इस तरह से हमको वहां पर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मोटे तौर पर जहां पर भी चाइनीज ट्रांसग्रेशन होता है या दोनों तरफ के पेट्रोलों में क्लैश होता है, मोटे तौर पर वो चीज ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती है, धक्का मुक्की होती है, पुश होता है, बट फायरिंग के जैसे केसेस जो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दें वो अभी तक सीमित रहा है। लेकिन गलवान वाला जो क्लैश था उसने इन आत्मविश्वास के पॉइंट्स पर एक नया मेजरमेंट लाने की कोशिश की है, और हमको जरूरत है कि हम अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और जो बॉर्डर पे क्लैश होते हैं उनको हैंडल करने के तरीकों में और पॉजिटिव डेवलपमेंट लाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे क्लैश होते हैं, अगर वहां पर कोई भी लोकल कमांडर बहुत मेच्योर नहीं है और अपने देश द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स को फुल्ली ऑनर नहीं करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को नहीं मानता है, और इनएडवर्टेंटली या थोड़े से उग्रवादिता की वजह से गोली चल जाती है, तो जाहिर है दूसरा पक्ष भी उसका रिस्पॉन्ड करेगा और वह मामला काफी तूल पकड़ सकता है। कभी कभी वो मामला टैक्टिकल लेवल से बढ़ करके स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट के लेवल तक जा सकता है। तो इसलिए अब जरूरत है कि हम इस चीज पर और संजीदगी से काम करें, और उस संजीदगी को ग्राउंड पर उतारने का मेरी समझ से सबसे बढ़िया मॉडल यह है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करें। बॉर्डर का जो रिजोल्यूशन है वो तो लॉन्ग टर्म इशू है, उसके अपने बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं, बट मेरा मानना यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अगर दोनों देशों में पॉलिटिकल विल हो तो उसको डिलिनिएट करना और ग्राउंड में आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं।
1: जी
2: लेकिन मुझे लगता है मौजूदा समय में दोनों देश के सबसे पावरफुल लीडर्स हिस्ट्री में एक साथ हैं, शी जिनपिंग का चाइना में कंट्रोल एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडिया में लोकप्रियता और जो पॉलिटिकल पावर है, अगर दोनों में एक पॉलिटिकल विल हो तो मेरे ख्याल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल

0: को डिलिनिएट करके, डिमार्केट करके आगे बढ़ना कोई असंभव सी चीज नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है। कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे दोनों देशों में, वो विश्वास की कमी है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था, उसमें चीन का कोई लेना देना नहीं था। बावजूद इसके चीन ने पूरा सेटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करना, सारा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, वहां पर कमांड कंट्रोल सेंटर एस्टैब्लिश करना, हर तरह की मदद पाकिस्तान को की। और इस समय ये माना जा सकता है कि जो वेपन सिस्टम चीन में है वो पाकिस्तान को भी अवेलेबल होंगे, सबमरीन्स मिल रहे हैं, ढेर सारी चीजें हो रही हैं। और ऐसे में भारत का चीन के इंटेंशन पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दोनों देश डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक इस मुद्दे पर पॉजिटिव सिग्नलिंग हो सकती है, पोस्टरिंग हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकी बदलाव होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक छोटी सी मुझे आशा इसलिए दिखती है
1: जी
0: कि इस समय जो विश्व में बदलाव हो रहे हैं, जो ग्रुपिंग्स बन रही हैं डिफरेंट कंट्रीज की रीजनल सिक्योरिटी में, जो यूएस का अप्रोच चल रहा है, और कभी कभी तो ब्रिक्स को नाटो के अगेंस्ट एक बुलवर्क भी माना जा रहा है, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया का एक साथ आना उसके विरोध में खड़ा हो सकता है। तो अगर एक इंटरनेशनल कंपल्शन हुआ और इस कंपल्शन को रशिया, चाइना और इंडिया तीनों के अपेक्स लीडर्स ने, यानी प्रेसिडेंट पुटिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समझा, आपसी विश्वास को बढ़ाया और एकजुट हुए, जो उसका स्पायरल बेनिफिट होगा वो आपसी संबंधों में भी होगा, वो रिश्ते को रिजॉल्व करेगा। इंडिया और चाइना के बढ़ते हुए रिश्ते इंडिया पाकिस्तान के बीच के डायलॉग को भी बेहतर कर सकते हैं। रशिया, चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप में अगर बेहतरी हुई तो उससे भी इंडिया चाइना के रिश्ते को फर्दर इम्पिटस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा समय में विश्वास की जो कमी है उस पर काम करना जरूरी है, साथ ही साथ एलएसी को डिलिनिएट करना, उस पर काम होना चाहिए। बॉर्डर रिजोल्यूशन वो तो थोड़ा सा बाद में ही रखना पड़ेगा।
1: प्रोफेसर पंत, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं, तब तक अन्य द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसके विपरीत, चीन व्यापार और कूटनीति को सीमा विवाद से अलग रखने की बात करता है। 25वें दौर की इस बातचीत के बाद आपको क्या लगता है कि भारत अपनी इस लिंकेज नीति पर अडिग रहने में सफल रहा है?
0: मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने ये तो कन्विंस चीन को कर दिया है कि जो संबंध है भारत चीन के, इनको टुकड़ों में नहीं देख सकते, इनको अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटीज के तौर पर नहीं देखा जा सकता। तो मुझे लगता है उसी का मतलब एक तरह से इस बात पर अग्री करने लगा है कि दोनों साइड्स को पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहिए और बाउंड्री का, और वो ही दूरगामी इंटरेस्ट है दोनों साइड्स के, वो पूरे कर सकता है। हमने ये भी सुना भारतीय एनएसए को, डोवल साहब को ये कहते हुए कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारत और चीन दोनों पार्टनर्स हैं, और जो एक प्रिडिक्टेबल फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया चाइना रिलेशनशिप है ये महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। और जिसका जिक्र अभी हुआ कि दुनिया बदल रही है, और उस बदलती हुई दुनिया में भारत और चीन अगर साथ काम करेंगे तो उससे बहुत कुछ बदल सकता है, और फेवरेबली जो बदल सकता है, क्योंकि दोनों का इंटेंट काफी हद तक ग्लोबली अगर हम देखें उसमें मिलता है कि हम दोनों देश ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, दोनों देश रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंस है एक दूसरे के कमिटमेंट को देखें, और खासकर 2005 का जो अग्रीमेंट था पॉलिटिकल पैरामीटर्स का, गाइडिंग प्रिंसिपल्स का, जिससे कि एक फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सोल्यूशन बनता, इसकी बात दोनों ने करी है। तो कहीं पर भारत अपनी इस बात से चीन को कन्विंस करने में सफल रहा है। पुराना जो ढर्रा है वो नहीं चल सकता कि हम बाउंड्री इशू है उस पर प्रोग्रेस ना दिखाएं, और दूसरी तरफ हम ट्रेड की और पीपल टू पीपल टाइज की और कल्चरल टाइज की, पोलिटिकल सिमेट्री की बात करें। तो मुझे लगता है वहां पर जरूर ये प्रोग्रेस हुई है, लेकिन वो प्रोग्रेस अभी भी आधी है, क्योंकि रिटोरिकली दोनों देश एक साथ भले ही हो लेकिन ऑन द ग्राउंड जो प्रपोजल्स हैं वो अभी भी अलग अलग तरीके से इवेल्युएट किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए बॉर्डर मैनेजमेंट की बात, इसीलिए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन की बात बढ़ चढ़ कर इस बार हुई, क्योंकि अगर बॉर्डर मैनेजमेंट इंप्रूव होता है तो उससे परसेप्शन भी इंप्रूव होता है कि दोनों देश कमिटेड हैं लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन अगर बॉर्डर मैनेजमेंट वीक होता है, अगर वहां पर

0: तनातनी बॉर्डर एरियाज पर चलती रहे और वो मीडिया कवर करता रहे, बार बार ये बताता रहे लोगों को कि कैसे सेनाएं हमारी आमने सामने खड़ी हैं, वो एक दूसरे के सामने लगातार आ रही हैं, तो उससे वो जो ऑलरेडी लो ट्रस्ट फैक्टर है, ऑलरेडी लो विश्वास है, वो और कम होता है। तो मुझे लगता है इस बात को एड्रेस करने की इस राउंड में जरूर कोशिश करी और एक बैलेंस आउटकम निकल कर आया। अब ये बैलेंस्ड आउटकम क्या हमको एक सीरियस नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर आगे ले जाने की क्षमता दोनों देश रखते हैं, ये मुझे लगता है आने वाला समय।
1: मेजर जनरल अशोक जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारी पर थोड़ी बातचीत अगर की जाए तो चीन द्वारा एलएसी के पार थिएटर कमांड स्तर पर बुनियादी ढांचे जिनमें एयरलिफ्ट्स है, हेलीपैड्स है और कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत ने जवाब नहीं दिया, भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी सीमाई कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया है। लेकिन एक रक्षा विश्लेषक के रूप में आपके अनुसार क्या सीमा पर यह ढांचागत संतुलन भारत को कूटनीतिक मेज पर अधिक बार्गेनिंग पावर यानी सौदा करने की शक्ति प्रदान कर रहा है? क्या लग रहा है आपको?
0: इसको अगर आप देखेंगे तो एक दोनों तरफ के टेरेन को देखना आपको बहुत आवश्यक है। जो चीन की तरफ का टेरेन है वो तिब्बतन प्लेट्यू है, और जबकि हमारे यहाँ बॉर्डर पे जाने के लिए हम ऊपर चढ़ाई करते करते जाते हैं। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि गलवान क्लैश के बाद में, या जब अक्टूबर 24 के बाद में फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट का एग्रीमेंट हुआ था, तो फोर्सेस को पीछे ले जाने वाली सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि जो चीन है उसका आर्गुमेंट था सेनाएं पीछे जाएं इक्वल डिस्टेंस में, जबकि अगर मान लो 20 किलोमीटर चीन की सेनाएं पीछे जाती हैं और 20 किलोमीटर हमारी पीछे जाते हैं, तो उसको 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे लगेंगे और हमको 2 दिन लग सकते हैं। और भारत का मानना यह था कि दोनों सेनाओं का विड्रॉल हो वो इक्वल रिस्पॉन्स टाइम के बेसिस पे हो, क्योंकि दोनों तरफ के टेरेन डिफरेंट है। तो एक तो वो रियलिटी होना जरूरी है। दूसरे क्या है कि चीन ने 2015 में थिएटर कमांड बनाया था, जो उसका वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कंप्लीट चाइना बॉर्डर जो इंडिया को देखता है उसमें बनाया गया है। इसमें कुछ एक खामियां भी हैं, बट बावजूद इसके उसके ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो सिंगल कमांडर के तहत सेंटर्ड हैं। हमारे पास उस समय एक समय ऐसा था कि जिसमें हमारा जो चाइना का बॉर्डर है उसमें नॉर्दर्न कमांड भी शामिल था, वेस्टर्न कमांड भी शामिल था, सेंट्रल कमांड भी शामिल था, ईस्टर्न कमांड भी शामिल था, और उसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट हुए जिससे थोड़ा सा वेस्टर्न कमांड को जो हिमाचल प्रदेश का इलाका था वहां से करके उसको सेंट्रल कमांड के अंदर लाया गया, बट अभी भी 3 कमांड्स में वो बाइफरकेटेड है। उसके अलावा उसमें एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एयरफोर्स एंड उनकी भी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन अब जो थिएटर कमांड की बात इंडिया में चल रही है, वहां पे कंप्लीट नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे एक सिंगल थिएटर होगा, तो वो भी फोर्सेस को ऑप्टिमाइज करेगा हमारे रिस्पांस मैकेनिज्म को बेहतर करने के लिए। दूसरा है कि हमने 2014 के बाद में पिछले 12 सालों में बॉर्डर्स में अभूतपूर्व सुधार किया है। अगर आप वहां पे जाए तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप उसी इलाके में आ रहे हैं जहां पर उसकी स्थिति 2013-14 में हुआ करती थी। चाहे वो अरुणाचल का इलाका हो, चाहे लद्दाख का इलाका हो, टनल्स बन गई हैं, रोड्स बन गए हैं, रोड्स चौड़े हो गए हैं, लेटरल कनेक्टिविटी बढ़ गई है, एयरफील्ड्स आ गई एकदम फॉरवर्ड एरियाज में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का भी बहुत जोर है। लेकिन यह है कि चूंकि हमने शुरुआत थोड़ी लेट की थी, और इसलिए अभी हमको अपना फुल पोटेंशियल पाने के लिए और भी मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। जोजीला का में सुरंग बन रही है, अभी जल्दी ही ऐसा होगा कि हमारा बॉर्डर का एरिया जो है और बॉर्डर के लोग जो हैं वो सब लैंड रूट से कनेक्टेड हो जाएंगे, कोई मौसम के मोहताज नहीं होंगे, और फोर्सेस को भी इस बेहतर कनेक्टिविटी से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूवमेंट करना इजी हो जाएगा। हमारा जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है फोर्सेस का, जैसे एयरफोर्स की लिफ्ट कैपेबिलिटी है, हम ओन एयरक्राफ्ट C-295 बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अगर लॉन्गर डिस्टेंस में भी फोर्सेस को शिफ्ट करना पड़ा तो वो सब भी संभव हुआ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट था जिसमें चीन को एडवांटेज मिला था, उसको गैप को खत्म करने के लिए इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपको याद होगा अगर आप वर्बेटिम पढ़े, 2005 का जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें यह भी कहा गया था दोनों देशों के बीच में कि किसी फ्यूचर बॉर्डर सेटलमेंट में वहां की जो सेटल्ड पॉपुलेशन है हम उसका ध्यान जरूर रखेंगे। और इसलिए भारत के बहुत जरूरी है कि वाइब्रेंट विलेजेस के माध्यम से अपने फॉरवर्ड एरियाज में, क्लेम एरियाज में लोगों को बसाए,

0: लेकिन लोग तभी बच सकते हैं जब वहाँ बुनियादी ढांचा, एजुकेशन की फैसिलिटीज, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज और वहाँ पर उनके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सेना को, सबको एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी काफी काम हो रहा है, उसको और भी ज्यादा तीव्र दिशा देने की आवश्यकता है।
1: प्रोफेसर पंत आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की वर्तमान आर्थिक चुनौतियां, अमेरिका चीन की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की मजबूत स्थिति, इन वैश्विक कारकों ने क्या बीजिंग को भारत के साथ वार्ता के लिए आने पर प्रेरित किया है? और साथ ही साथ क्या ये चीन का एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म रणनीतिक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम? क्या लगता है?
2: जो आपका दूसरा सवाल है कि ये टैक्टिकल एडजस्ट

0: जो आपका दूसरा सवाल है कि ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या स्ट्रेटेजिक रियलाइनमेंट है, मुझे लगता है इसका जवाब तो कुछ समय बाद ही मिल सकता है हमको, जब हमको ये समझ में आए कि ये एक क्लियर पता चले कि चीन क्या, जो उसने पॉलिसी अप्रोच अभी लिया है, क्या इस पर वो अडिग रहेगा, क्योंकि चीन में हमने देखा है बहुत चेंजेस बदलाव आते हैं और चीन की पॉलिसी से बदलाव आते हैं, और वो बदलाव ऐसे होते हैं कभी कभी कि वो जो, जैसा भारत ने कहा है कि जो अग्रीड होता है उसको वो ओवरटर्न कर देते हैं, और इसीलिए जब जो गलवान इतना बड़ा शॉक हुआ वो इसलिए हुआ कि ये तो एक अग्रीड था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर, जो अग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में था, उसको ओवरटर्न करके वहां पर जो गलवान वाला एपिसोड हुआ, तो उससे ट्रस्ट में बहुत बड़ी कमी आई। अब देखना पड़ेगा लगातार आगे आने वाले समय में कि किस तरह से चीन बिहेव करता है, क्या चीन अपनी पॉलिसीज पर अडिग रहता है, क्या चीन भारत के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ाने में कुछ गुड फेथ नेगोशिएट करता है। लेकिन मेरे ख्याल से जिसका जिक्र पहले भी हो चुका है, देखिए समस्याएं और भी हैं चीन के भारत संबंधों में, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय में हुआ, चीन और पाकिस्तान के संबंध जिस तरह के हैं, चीन जिस तरह से इंडियन ओशन में प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है, वो सारी जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह बनी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अपनी कोई रणनीतिक जो उसकी समझ है भारत के बारे में, भारत के बढ़ते हुए, जिसका आपने जिक्र किया, भारत का प्रभुत्व है, प्रभाव है दुनिया में, वो बढ़ रहा है, और चीन के लिए बिल्कुल एक परेशानी का सबब होगा कि चीन जो अपना प्रभुत्व चाहता है इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत में, उसमें भारत जैसा देश अगर उसको चैलेंज करता है, तो चीन साम दाम दंड भेद सब कुछ करके उसको कोशिश करेगा कि भारत एक सेकेंड टीयर पावर के तौर पर ही खड़ा रहे। तो
1: जी
0: मुझे लगता है इसीलिए ये बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि चीन दूरगामी पॉलिसी अप्रोच भारत के लिए ले रहा है, और वो अपने संबंधों को इस कदर ठीक करना चाहता है भारत के साथ कि बॉर्डर इशू जो भारत चीन संबंधों के कोर में है, उस पर वो उसको टारगेट करके उसको सॉल्व करे। तो मुझे लगता है कि जो बदलाव आ रहे हैं दुनिया भर में, वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, चीन के अंदर भी समस्याएं हैं, चीन बाहर से भी थोड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से टारगेट कर रहा है, और मुझे लगता है उसको देखते हुए चीन को भी लगता होगा कि एक अच्छा मौका है कि भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार कर ट्रस्ट डेफिसिट जो है भारत के साथ उसको कम किया जा सकता है। लेकिन क्या ये हो पाएगा चीन से, और क्या भारत चीन को इस नजरिए से और अपना नजरिया भारत बदल पाएगा पूरी तरह से, ये मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा आगे आने वाली जो पॉलिटिक्स।
1: श्रोताओं, शांति और समाधान में अंतर होता है। शांति का अर्थ है टकराव न होना, स्थिरता का अर्थ है टकराव की संभावना को कम करना, लेकिन समाधान का अर्थ होता है उस मूल समस्या को समाप्त करना जिससे टकराव बार बार जन्म ले सकता है। भारत और चीन के सामने आज शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वे सीमा विवाद को केवल मैनेज करेंगे, क्या वे इतिहास के इस लंबे अध्याय को धीरे धीरे समाधान की दिशा में लेकर आगे बढ़ाएंगे। इसका जवाब केवल बीजिंग या नई दिल्ली की एक बैठक में नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा सीमा पर ग्राउंड रियलिटी से, सैन्य तैनाती के फैसलों से, कूटनीतिक निरंतरता से और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति से। क्योंकि दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच शांति केवल द्विपक्षीय हित नहीं है, ये एशिया की स्थिरता से जुड़ा प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक सकारात्मक समाधान देखने को मिलेगा। मेजर जनरल अशोक कुमार जी और प्रोफेसर हर्ष वी पंत जी, चर्चा का विषय है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में जाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिर लुधियानवी की रचना थी, संगीत एस टी बर्मन का था। फिल्म संगीत की अगली पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में पाकीज़ा फिल्म से। गीतकार है मजरू, संगीत गुलाब मोहम्मद का है।

लता मंगेशकर की आवाज में पाकिजा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे मजरूह और संगीत गुलाम मोहम्मद का था। फिल्म संगीत की अगली पेशकश आप तक पहुंचा रहे हैं मन्ना डे की आवाज में। जाने अनजाने फिल्म के लिए गीतकार हैं SH बिहारी, संगीत शंकर जी किशन का है।

अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में जाने अनजाने फिल्म का गीत। गीतकार थे SH बिहारी और संगीत शंकर जयकिशन का था। आइए अब सुनते हैं उस्ताद बड़े अली खान की आवाज में शकील बदायूनी का लिखा गीत, नौशाद के संगीत निर्देशन में। फिल्म है मुगले आजम।

उस्ताद बरे अली खां की आवाज़ में मुगले आजम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं दिल की राह है फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की है, नक्श लालपुरी का गीत है, मदन मोहन का संगीत निर्देशन।

लता मंगेशकर की आवाज में दिल की राहें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नक्श लालपुरी की रचना थी, मदन मोहन का संगीत निर्देशन था। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं गीता दत्त की आवाज में प्यासा फिल्म के इस गीत के साथ ही, जिसे साहिर ने लिखा है और

0: संगीत सचिन देव बर्मन का है, आइए सुनते हैं ये आखिरी गीत।
1: जान जान।

गीता दत्त की आवाज़ में प्यासा फिल्म का गीत आपने सुना। गीतकार थे साहिर और संगीत सचिन देव बर्मन का था। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विदुषी कमल केलकर का ख्याल गायन। आज के राग हैं देव गंधार और धनश्री। तबले पर संगति की है कन्हैयालाल भट्ट ने और वायलन पर वसंत तिमोही ने।

कमल केलकर का ख्याल गायन राग था देव गंधार। आइए अब सुनते हैं कमल केलकर का राग धनश्री।

0: अभी आप सुन रहे थे कमल केलकर का ख्याल गायन, राग था धनश्री। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
2: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की।

0: समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851318077 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलवासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में PSA बुडापेस्ट स्वेश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकेल। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River this morning from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105